मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 30वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 20 मई सन 2026, सुबह के 5:57 होने वाले हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार होंगे जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3रे भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस

0: उम्मीद के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में वृक्षारोपण हेतु तैयारी, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम वृक्षारोपण की तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे। जिस जमीन में बाग लगाना हो उसे इसी समय जोत दें ताकि बाग से सारे खरपतवार नष्ट हो जाएं। बाग की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाना भी जरूरी है, या ऐसे वृक्षों को किनारे किनारे लगाना चाहिए जो कि फल वृक्षों पर छाया न डालते हों। अगर पेड़ वायु में रुकावट डालते हों तो ये फल वृक्षों से 5 से 8 मीटर दूर होना चाहिए। करौंदा, सफेदा, बांस, जामुन, कमरख आदि पौधों को बाग के किनारे किनारे लगा सकते हैं। इसी समय एक बात और ध्यान में रखना चाहिए कि बाग में अतिरिक्त पानी के निकास की उचित व्यवस्था हो। अगर काफ़ी बड़ी बाग लगा रहे हैं तो उसमें थोड़ा स्थान सड़कों, मेड़, घर, ट्यूबवेल आदि के लिए भी छोड़ देना चाहिए। इतना कर लेने के बाद फिर बाग का रेखांकन करते हैं। जो बड़े पेड़ हैं जैसे देशी आम, कटहल, इन्हें लगभग 12 मीटर की दूरी पर लगाते हैं, यानी लाइन से लाइन की दूरी 12 मीटर रखते हैं और पौधे से पौधे की दूरी भी इतना ही रखते हैं। कलमी आम, आंवला, बेल जैसे वृक्षों को लगभग 10 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। अमरूद, बेर को 6 से 8 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। नींबू, संतरा आदि को 4 से 6 मीटर की दूरी पर। अंगूर और करौंदा को 3 से 4 मीटर पर तथा केला और पपीता को 2 से 3 मीटर की दूरी पर रोपते हैं। यदि हम कलमी आम को 10 मीटर पर लगाने जा रहे हैं तो वृक्षों की पहली लाइन को मेड़ से 5 मीटर की दूरी पर बनाते हैं और बाकी लाइनें 10-10 मीटर की दूरी पर बनती है। इन लाइनों में जो पहला पेड़ लगाएंगे वो भी आधी दूरी पर ही होगा, यानी लाइन का पहला पेड़ 5 मीटर पर होगा तथा बाकी पेड़ 10-10 मीटर पर लगेंगे। इस प्रकार जो भी वृक्ष लगाना हो उसकी लाइन एवं पौधे से पौधे की दूरी के अनुसार रेखांकन करना चाहिए। रेखांकन कर लेने के बाद गड्ढे की खुदाई करने का नंबर आता है। अगर देसी आम या कटहल के वृक्ष लगाते हैं तो 1.25 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 1.25 मीटर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए। अगर कलमी आम या आंवला लगाते हैं तो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा तथा 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए। अमरूद या बेर लगाते हैं तो 75 सेंटीमीटर लंबा, 75 सेंटीमीटर चौड़ा और 75 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए। अगर नींबू या संतरा लगाते हैं तो 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए। गड्ढों की खुदाई का कार्य मई जून में ही कर लेना चाहिए। गड्ढा खोदते समय ऊपर की आधी मिट्टी एक तरफ तथा नीचे की आधी मिट्टी दूसरी तरफ रख देते हैं और गड्ढों को 15 से 20 दिन तक खुला छोड़ देते हैं। इसके बाद गड्ढों की भराई करते हैं। गड्ढे की ऊपर वाली मिट्टी चूंकि ज़्यादा उर्वर होती है अतः इस मिट्टी को लेते हैं। इसमें 4-5 टोकरी सड़ी हुई गोबर की खाद मिला करके गड्ढे भराई करते हैं। किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में दीमक की समस्या भी होती है जो कि जड़ों को काट देते हैं और सारी मेहनत बेकार हो जाती है। ऐसे स्थानों पर दीमक से बचाव के लिए लिंडेन चूर्ण का प्रयोग करते हैं। इसकी 50 से

0: 100 ग्राम मात्रा पेड़ के आकार के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। गड्ढे को 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरते हैं। इसके बाद फिर रोपाई का कार्य किया जाता है। रोपाई का समय सभी वृक्षों का अलग अलग होता है, लेकिन सामान्य रूप से जब बारिश शुरू हो जाती है तो फिर रोपाई का कार्य करना चाहिए। वृक्षारोपण हेतु यह ध्यान देना जरूरी है कि पौधा किसी विश्वसनीय जगह या सरकारी विभाग से ही खरीदें तथा वह पौधा कलम या चश्मा के बाद कम से कम 9 माह तक नर्सरी में होना चाहिए। पौधा खोदते समय उसकी जड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए तथा गोले सहित खोदने के बाद उसे बोरे या अल्काथीन से बांध देना चाहिए। इसकी खुदाई का कार्य बरसात में किया जाता है, जब जमीन एवं वातावरण में नमी रहती है। जब इसे लगाएं तो अच्छी तरह से पिंडी के आकार का गड्ढा खोदकर पौधे को रोपकर उसकी मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देना चाहिए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर वृक्षारोपण के लिए तैयारी करना चाहिए और फिर वृक्षारोपण का कार्य करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें वृक्षारोपण हेतु तैयारी इस विषय पर जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। आइए आराधना का आरंभ विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य भगवान गणेश की आराधना से करते हैं।

मोर मुकुट कटिकाछ नहीं, कर मुरली उरमाल, यह बानिक मुन मन बस्यो सदा बिहारी लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। आज की कलाकार थी अनुराधा पौडवाल, जगजीत सिंह और प्रीति सागर। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए विचार बिंदु में स्वामी राम तीर्थ के विचार।
1: शब्दों की ताकत के साथ भाषा का अभ्यास करते समय कहन में रस झरने लगता है। वह रस कहाँ से आता है? वह प्रसाद कहाँ से बिखरने लगता है? अभिव्यक्ति तो मानो कला की ससुराल है, जहां यदि कला न जाए तो वह गोद भरी या मोद भरी नहीं हो सकती। जो दोहन क्रिया नहीं जानता, वह दूध दही और घी से उत्पन्न संगोपन क्रिया को कैसे जान सकेगा? निर्जीव लगने वाले चंद्रमा और समुद्र में प्रभाव की जो होड़ा होड़ी पूर्णिमा के दिन होती है, उसे देखकर प्राणधारी कवि कैसे चुप बैठ सकता है? स्वामी रामतीर्थ की कहानी लिखते हुए सरदार पूरन सिंह ने एक जगह लिखा है कि उनका, यानी स्वामी रामतीर्थ का, बार बार का मंत्रों का उच्चारण करना ऐसा गूंजता था मानो उनमें से गीत की सरिता बह उठी हो। उनका वह सुमिरन निश्चय ही उनकी अंतः प्रेरणा का चिन्ह है। वह मानो प्रभु का उनके साथ पक्षपात है। वे ही यह भी कहते हैं कि वे, यानी स्वामी राम तीर्थ, अपनी व्यग वाणी से अपने आसपास के वातावरण पर तोना सा कर देते थे, जो कि संपूर्ण काव्य और संपूर्ण संगीत बन बन जाती थी। अपनी भक्ति की मस्ती का नशा उन पर ऐसा चढ़ जाता था कि वे अपने आप का सहस्र सहस्र तरीकों से प्रतिवाद किया करते थे। यही उनका धर्म था, यही उनकी धारणाओं का केंद्र बिंदु था और यही उनका पंथ था। स्वामी राम तीर्थ यूं पंजाब विश्वविद्यालय में गणित के प्राध्यापक थे। उनके संन्यास लेने पर स्वर्गीय पंडित माधव प्रसाद जी मिश्र ने एक हिंदी कविता में लिखा था, चिर सहचरी रयाजी छोड़ी, रम्य तटी रावी छोड़ी, शिखा सूत्र के साथ आज उन बोली पंजाबी छोड़ी। उस दिन रामतीर्थ की नोटबुक में ये पंक्तियां लिखी हुई थी, आंखों के अंधे वे मुझे देखें और अपना इलाज करें, सपनों में मौन की चुपचाप की लहर चलने दो, जागृति में लहर बढ़े बढ़ती चली जाए। कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जब वह लहर समझबूझ के और सांसारिकता के किनारों का अतिक्रमण कर देती है। उसे जगत में फैलते देर कहाँ लगती, समस्त बीहड़ को वह डुबा डुबा डालती। लगता है इन्हीं लहरों को देखने और देखते रहने के लिए सूरज उगा करता है, इन्हें ही देखने के लिए पृथ्वी चक्कर काट रही है। जो मरण है यह है, जो जीवन है यह है। उसी समय अचंभा आता है, कितना खेलता, कितना चक्कर काटता, कितना घूमता सा, यही तो आनंद है, अथक अपरिमित आनंद। मौन और खिलखिलाहट इसी के दरवाजे आकर धन्य होते हैं। स्वामी रामतीर्थ के इन शब्दों को पढ़कर किसे नहीं सूझ जाता कि अभिव्यक्ति का राजकुमार बड़ी शान से व्यक्ति की जबान या कलम की जमीन पर उतरा करता है। माना वह अपनी रचनाओं के मोड़ों को बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, किंतु जिस तरह नदी के अनेक मोड़ लेने पर भी उसके पानी के स्वाद में मोड़ नहीं आते, उसी तरह रचना के परिवर्तनों से रस में शैथिल नहीं आ पाता। अभिव्यक्ति ही ऐसी वस्तु है जिसके निकट हर्ष मीठा लगता है, उन्माद मिठास लेकर आता है, किंतु संघर्ष भी मिठास की

0: सीढ़ी बन जाता है और शोक में भी सिंहासनासीन आनंद सब झरता रहता है। संभव है कि अभिव्यक्ति का वह देवता आँखों से अंधा हो, कानों से बहरा हो, किंतु उसके व्यक्त करने या व्यक्त होने की कोमलता या प्रखरता अंधी और बहरी नहीं होती। ऐसा ही व्यक्ति व्यक्त कर सकता है कि वह विश्व के अव्यक्त का गुणगान कर रहा है। उसी के मुंह से संतवर कबीरदास की तरह निकल सकता है कि पड़ोसिन मांगे कंत हमारा, बावरी पीऊ न मिलत उधारा।
1: अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु में स्वामी राम तीर्थ के विचार। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में

0: प्रस्तुत है स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में दांतों का प्रत्यारोपण कब और कैसे विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ठाकुर प्रसाद चतुर्वेदी।
1: नमस्कार श्रोताओं, हम लोग अभी पिछले अंक में बात किए थे कि हम लोग दांत डेंटल इम्प्लांट क्या होता है। देखिए, डेंटल इम्प्लांट एक दांतों की संरचना जो दांतों के हड्डी में उसको इंसर्ट कर देते हैं। टाइटेनियम का मेटल होता है और इसी के ऊपर हम लोग दांत लगाते हैं, उसको फिक्स करते हैं। मान लीजिए कि पूरा कई लोगों के पूरे जबड़े में दांत नहीं है या एक या दो दांत नहीं है, तो जनरली क्या होता है, अगल बगल के दांत के सपोर्ट से हम ब्रिज लगाते हैं। लेकिन अगर अगल बगल के सपोर्टिंग नहीं है और अच्छी सपोर्ट नहीं करते हैं ब्रिज लगा के या फिक्स वाले दांत, तो फिर हम ये मेटल वाले दांत लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं, और इसी को डेंटल इम्प्लांट या दांतों का प्रत्यारोपण कहते हैं। और डेंटल इम्प्लांट लगाने के लिए ऐसा नहीं कि आप आए हैं दंत चिकित्सक के पास और तुरंत वो लगा देगा। ऐसे में हम लोग देखते हैं कि उसकी क्या हड्डी कैसी है, हेल्दी है या नहीं। जनरली ये देखा जाता है लोअर जॉ का या नीचे वाले जबड़े की हड्डी थोड़ा सा मजबूत होती है, अपर वाले जबड़े की हड्डी थोड़ा सा उतनी मजबूत नहीं होती है। तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि हड्डी की मजबूती क्या है। एक तो पहला ये देखते हैं हड्डी की मजबूती, दूसरा ये देखते हैं कि उसको कोई और आदत नहीं है, जैसे जो स्मोकिंग करता हो या टोबैको खाते हो, टोबैको का कोई किसी भी फॉर्म में उपयोग करते हैं। ऐसे में देखिए डेंटल इम्प्लांट लगाना या दांतों का प्रत्यारोपण में बड़ी सफलता हम लोगों को नहीं मिलती है। या उसको हो, अगर उसको शुगर हो गया, शुगर की बीमारी, डायबिटीज जो कहते हैं, इसमें शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो हम लोग लगा तो देते हैं लेकिन उसको शुगर को बड़ा ध्यान देना पड़ता है। अगर लोग तंबाकू वगैरह खाते हैं तो उसके मुंह में कभी कभी छाला या सफेद दाग हो जाती है, ऐसे चीजों में हम लोग लगाने को दिक्कत होती है। हम लोगों को डेंटल इम्प्लांट वो बड़ा सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों के ओरल कंडीशन जो मुंह के अंदर वाले स्वस्थ एकदम मसूड़ा चाहिए, तभी हम डेंटल इम्प्लांट लगा सकते हैं। एकदम क्लियर बात होनी चाहिए कि अगर आपके स्वस्थ मसूड़े हैं, कोई आदत आपको नहीं है जो खराब, जो दांतों और मुंह के स्वास्थ्य को खराब करती हो, तब हम लोग डेंटल इम्प्लांट की तरफ बढ़ते हैं। और कोई और बीमारी ना हो, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हार्ट की बीमारी या हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारी हो, तो ऐसे में लगाया तो जा सकता है डेंटल इम्प्लांट, लेकिन बहुत ज्यादा प्रिकॉशन करते हैं। कभी कभी लोग हम लोगों के पास आते हैं, जैसे 80 साल या 85 साल के लोग हैं, उनको डेंटल इम्प्लांट लगवाने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग उस उम्र में भी लगा सकते हैं, लेकिन बस और कोई बीमारी नहीं हो। लेकिन ज्यादातर उस उम्र में कोई ना कोई बीमारी होती है जिससे उनमें दिक्कत होती है। तो डेंटल इम्प्लांट लगाने के लिए हम लोगों को एक्सरे करना पड़ता है, तो एक्सरे से देखते हैं हम लोग की बोन की कंडीशन कैसी है। फिर अब जैसे डेंटल इम्प्लांट ऊपर नीचे जबड़ों में लगाते हैं, तो वो देखते हैं कि दो या चार नीचे लगा देते हैं, उस पर पूरा एक डेंचर बना देते हैं जिसमें 16 दांत नीचे होते हैं, 16 के बजाय 14 दांत नीचे होते हैं और 14 दांत ऊपर होते हैं, अगर पूरे मसूड़ों में कोई दांत नहीं है तो हम लोग ऊपर नीचे का जबड़े लगा के, तो जैसे 2 या 4 ऐसा लगा देते हैं, उसके ऊपर एक अबेटमेंट होता है, अबेटमेंट के ऊपर हम लोग दांत चिपकाते हैं, दांत नॉर्मल होता है। ऐसे में ऊपर नीचे का दांत पूरा फंक्शन करता है। कभी कभी क्या होता है, आगे के केवल सब मान लीजिए एक दांत नहीं है, एक दांत नहीं है तो उसके 2 ऑप्शन होते या 3 ऑप्शन फिर हम कहते हैं। एक ऑप्शन क्या हुआ कि अगर हम दांत एक निकाल दिए तो फिर उसमें हम लोग एक दांत या ये दांत निकला हुआ है तो उसमें एक रिमूवल निकालने लगाने वाला, जो कि अच्छा नहीं मानते हैं आगे वाले दांतों के लिए स्पेशली, या तो उसमें हम फिक्स वाले लगा दें, अगल बगल के दांतों को घिस के लगाना सकता है, या तीसरा एक ऑप्शन होता है कि हम लोग डेंटल इम्प्लांट। तो कभी कभी एक दांतों में भी इम्प्लांट, एक दांत के लिए भी लगाते हैं, 2-4 दांतों के लिए भी इम्प्लांट लगाते हैं, और कई दांतों के जो जगह होती है, कई मुंह में सारे दांत नहीं है तो उनके जगह पे कई इम्प्लांट ऊपर और नीचे लगाते हैं। कभी कभी 2-2 ऊपर 2 नीचे पे पूरे डेंचर आ जाता है, नहीं तो कभी कभी 4-2 जैसी जरूरत होती है, दंत चिकित्सक डिसाइड कर लेता है कि कहाँ से कैसे हम लोग को सपोर्ट मिले। और दांत निकालते हैं तो उसमें जो दांत मतलब जो इम्प्लांट लगाते हैं, इम्प्लांट अपने आप जो मेटेरियल होता है टाइटेनियम का इम्प्लांट, वो हड्डी में ऐसा टाइटेनियम ऐसा मेटेरियल होता है कि जो हड्डी में प्रॉपर ढंग से एडजस्ट कर लेता है। तो उसकी वजह से लोग सोचते हैं कुछ ऐसा तो नहीं हो जा रहा है कि हम इम्प्लांट लगाएं, सर्जरी करवाएं, कुछ हमारे हड्डी में तो नहीं हो जाएगा। नहीं, ये सब नहीं होता और ये पूरी तरह से सुरक्षित होता है।
0: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में दांतों का प्रत्यारोपण कब और कैसे विषय पर जानकारी। विशेषज्ञ थे डॉक्टर ठाकुर प्रसाद चतुर्वेदी। हम

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। गायक कलाकार हैं सुरेश वाडेकर।

राजा जनक की यज्ञशाला जानकी के स्वयंवर के अनुरूप सजाई गई है। शुभ घड़ी जानकर राजा जनक ने सीता को यज्ञस्थल पर बुला भेजा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज की गायक कलाकार थी सुरेश वाडेकर। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर, दोपहर 12:45 पर और सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे पंडित रविंद्र नारायण गोस्वामी का सितार वादन। कानून और हम, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 10:00। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा गैर फिल्मी गीत और गजलें, कार्यक्रम अंजुमन में। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8:00 और दोपहर 12:30 पर सुनिएगा भजन, कलाकार होंगे

0: सुबह 9:50 पर और दिन 1:45 पर हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार होंगे शिव प्रसाद पाल और साथी। इनके गाए लोकगीत आप कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर भी सुन सकते हैं। कृषि जगत कार्यक्रम में डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे से दिनेश कुमार सिंह की बातचीत आप सुनेंगे। विषय होगा जौ का आयुर्वेदिक महत्व। युवा साथी अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी सुनेंगे शाम 5:15 पर, जिसमें युवा सुनेंगे आज की बात, मार्गदर्शन, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, जिसमें चर्चा के साथ होगी स्मिता केसरी की वार्ता। विषय होगा डिजिटल संतुलन है जरूरी, और बहनें गीत संगीत का भी आनंद लेंगी। दिन 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। व्हाट्सएप पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का समय होगा दिन 11 बजे। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 10 बजे झंकार में, शाम 5 बजे, शाम 6:10 पर, शाम 7 बजे, शाम 7:31 पर रस रंग में, और रात्रि 8:15 पर रस माधुरी में। कार्यक्रम मधुरिमा का समय होगा सुबह 8:45। और अब से थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये थी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो।

0: तो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: अथ वार्ताः। भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय सम्बन्धं, हरित प्रौद्योगिकीं, नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः। प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले 1 दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति। अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विक व्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः। प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्। भारतस्य समृद्ध कला परम्परायाः उत्सवे भव्य सांस्कृतिक संध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोपतः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्। लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्। लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्तः वर्तते। समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉ निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति। भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 370+870,000 किलोमीटरतः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति। अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्ण विद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रस्थितं वर्तते। मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्य सर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघा परम्पराणि प्रवर्तयितुं अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।

बनारस, गुड वाला मॉर्निंग। क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और ट्यून किया है आपने अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी 100.6 FM पर। बनारस, आज हम बात करेंगे कि जेब में प्याज रखने से क्या सच में लू से बचाव होता है। तो एक एक्सपर्ट से मुझे इसका जवाब मिला कि भीषण गर्मी और लू के कहर से बचने के लिए कुछ लोग जेब में प्याज रखते हैं। और लोगों का मानना है कि प्याज वास्तव में गर्मी को सोखता है। गर्मी का आतंक कम करने के लिए हम ऐसे और भी कई तरीके आजमाते हैं। कहीं आप भी तो लू से बचने के लिए जेब में प्याज रखने पर विश्वास नहीं करते? क्योंकि भाई, अपने यूपी समेत देश के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। गर्मी की वजह से शरीर से पसीना निकलता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीने की सलाह दी जाती है। अब सवाल है कि क्या वाकई में जेब या बगल में प्याज रख कर बाहर निकलने से लू के कहर से हम बच पाते हैं, या ये सिर्फ एक मिथ है? तो आज हम आपको एक्सपर्ट की राय के जरिए बताएंगे कि ऐसा करना सही है या गलत। तो एक्सपर्ट के कहने के मुताबिक जेब में प्याज रखने से लू यानी कि हीट स्ट्रोक से बचाव होता है। ये एक पुरानी दादी नानी की मान्यता जरूर है, लेकिन इसका कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं मिलता। प्याज में एंटीऑक्सीडेंट और कुछ लाभकारी तत्व होते हैं जो खाने पर शरीर को फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन सिर्फ जेब में रखने से ये शरीर को ठंडक देने या लू से बचाने में मदद नहीं करता। एक प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त डॉक्टर के अनुसार लू तब लगती है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और इलेक्ट्रोलाइट यानी के पानी और नमक की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में शरीर का तापमान नियंत्रित करने का सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता। अगर किसी इलाके में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा है और वहां गर्म हवाएं चल रही हैं, तो ये लू कहलाती हैं। लू से बचने के लिए सही तरीका ये है कि गर्मी में भरपूर पानी पिए, धूप में निकलते समय सिर को ढककर रखें और हल्के और ढीले कपड़े पहने और तेज धूप से बचें। नींबू पानी, छाछ और ORS जैसे पेय पानी की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। प्याज को डाइट में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन उसे जेब में रखने से लू से बचाव नहीं होता। इसलिए ऐसे घरेलू नुस्खों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय वैज्ञानिक और सही तरीकों को अपनाना ज्यादा सुरक्षित होगा। अगर किसी को चक्कर आना, कमजोरी या तेज बुखार जैसे लक्षण दिखे तो तुरंत ठंडी जगह पर ले जाएं, पानी पिलाएं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। और बच्चों को भीषण गर्मी के मौसम में स्कूल भेज रहे हैं तो उनके बैग में ऐसी चीजें जरूर रखें जो बॉडी को हाइड्रेटेड रखती है। साथ ही बच्चों को दिन के 12 से 4 बजे तक बाहर खेलने से रोकें। इस दौरान गर्मी काफी ज्यादा होती है और लू लगने का चांस अधिक होता है। तो इस तपती गर्मी में अपना ख्याल रखिए और साथ ही सुनिए ये ब्यूटीफुल ट्रैक। आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक बनारस। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी। बनारस आज है 20 मई और दिन है बुधवार। तो आइए जानते हैं क्या हो रहा है अपने शहर बनारस में। खास वाराणसी में श्रद्धालुओं, पर्यटकों और आम जन की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने शहर के प्रमुख घाट क्षेत्रों का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दशाश्वमेध घाट, गुदौलिया, नमो घाट और 80 घाट क्षेत्रों में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की। निरीक्षण के दौरान अवैध अतिक्रमण कर आवागमन और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए। पुलिस आयुक्त ने कहा कि वाराणसी के घाटों पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा कमिश्नरेट पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि घाट क्षेत्रों में सतत पैदल गश्त, संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि सुरक्षा तंत्र और अधिक मजबूत बनाया जा सके। निरीक्षण के दौरान पुलिस आयुक्त ने गंगा नदी की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि गंगा केवल एक जलधारा नहीं बल्कि भारतीय आस्था और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि घाटों और गंगा नदी क्षेत्र में नशीले पदार्थों का सेवन और शिष्ट फेंकना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसे मामलों में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त ने घाट क्षेत्र में स्टंट और खतरनाक करतबबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही गंगा में जल विहार करने वाले सभी लोगों के लिए लाइफ जैकेट अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया। नाविकों को निर्धारित सुरक्षा मानकों का 100% पालन सुनिश्चित करने के लिए भी चेतावनी दी गई। श्रद्धालुओं को डूबने जैसी घटनाओं से सुरक्षित रखने के लिए घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीमों को लगातार सतर्क और सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जल पुलिस द्वारा चलाए गए सघन जांच अभियानों में 31 अभियोग पंजीकृत किए गए और 58 नावों को सीज किया गया। शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के तहत विशेष कार्रवाई भी की गई। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए कुल 22 वाहनों को सीज किया गया।

वहीं 529 वाहनों के चालान कर कुल 10,62,500 रुपए का शमन शुल्क अधिरोपित किया गया। भीड़भाड़ वाले बाजारों और प्रमुख क्षेत्रों में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान आमजन और वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा, अनुशासित आवागमन और यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक भी किया गया। भीषण गर्मी और हीट वेव के बीच भी बाबा श्री काशी विश्वनाथ के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। इन दिनों वाराणसी सहित आसपास के क्षेत्रों में तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच रहा है। इसके बावजूद प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा धाम परिसर में व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास की ओर से गर्मी से राहत के लिए धाम परिसर के विभिन्न स्थानों पर शुद्ध आरओ वाटर कूलर लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को ठंडा पेयजल आसानी से मिल सके। जिन स्थानों पर वाटर कूलर उपलब्ध नहीं है वहां बड़े मटकों में ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। मंदिर कर्मचारी लगातार श्रद्धालुओं को ग्लास के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अलावा कई जगहों पर ORS घोल और ग्लूकोज की भी व्यवस्था की गई है जिससे दर्शनार्थियों को लू और डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। श्रद्धालुओं को गर्म फर्श से राहत देने के लिए पूरे धाम परिसर में उच्च गुणवत्ता वाली जूट मैट बिछाई गई है। वहीं दर्शन मार्ग पर पर्याप्त छाया उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जर्मन हैंगर और टेंसाइल स्ट्रक्चर लगाए गए हैं। गर्म वातावरण को ठंडा रखने और श्रद्धालुओं को राहत पहुंचाने के लिए मिस्ट फैन भी लगाए गए हैं जो लगातार शीतल फुहार छोड़ रहे हैं। मंदिर न्यास ने आपात स्थिति से निपटने के लिए आरोग्य केंद्र, एम्बुलेंस और प्रशिक्षित कर्मचारियों की भी व्यवस्था की है। किसी भी श्रद्धालु की तबीयत खराब होने पर तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो अत्यधिक गर्मी वाले दोपहर के समय दर्शन के लिए आने से बचें और घर से पर्याप्त पानी और भोजन ग्रहण करके ही यात्रा शुरू करें। वृद्ध, अस्वस्थ और कमजोर लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वाराणसी इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग भले तापमान 45 डिग्री के आसपास बता रहा हो लेकिन बनारस वासियों को ये तपिश 50 डिग्री जैसी महसूस हो रही है। दिन में सड़कें आग उगल रही हैं तो रात में उमस और गर्म हवाएं लोगों की बेचैनी बढ़ा रही है। हालात ऐसे हैं कि पंखे और कूलर भी राहत देने के बजाय गर्म हवा फेंकते नजर आ रहे हैं। कभी पेड़ों की घनी छांव और ठंडी हवाओं के लिए पहचाने जाने वाला हमारा बनारस अब तेजी से कंक्रीट के जंगल में बदलता जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण, मॉल, अपार्टमेंट और व्यावसायिक निर्माणों के बीच शहर की हरियाली लगातार कम होती गई। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 2 दशकों में हजारों पेड़ कटने से शहर का प्राकृतिक तापमान संतुलन बिगड़ गया। शहर के लंका, रविंद्रपुरी, कैंट, गोदौलिया और चौक जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में हालत ज्यादा खराब है। यहाँ कंक्रीट की इमारतें और डामर की सड़कें दिन भर गर्मी सोखती हैं और रात में उसे बाहर छोड़ती रहती हैं। यही वजह है कि रात का तापमान भी सामान्य से कई डिग्री अधिक बना हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक बनारस में अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। सक्रिय गलियां, ऊंची इमारतें और हवा के रास्तों का बंद होना गर्मी को शहर के भीतर कैद कर देता है। पहले बांस और खपरेल की छतें प्राकृतिक ठंडक देती थीं, लेकिन अब सीमेंट, कंक्रीट की छतें घरों को भट्टी में बदल रही हैं। भीषण गर्मी का असर स्वास्थ्य पर भी साफ दिखाई दे रहा है। डॉक्टरों के अनुसार हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और त्वचा संबंधी बीमारियों के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में गर्मी से प्रभावित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से हर साल बड़े पैमाने पर पौधरोपण के दावे किए जाते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर तस्वीर अलग दिखाई देती है। लगाए गए कई पौधे देखभाल के अभाव में सूख जाते हैं जिससे हरियाली बढ़ाने की योजनाएं असरदार साबित नहीं हो पा रही। बनारस की ये तपिश सिर्फ एक शहर की समस्या नहीं बल्कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण और पर्यावरणीय असंतुलन पर बड़ा सवाल है। यदि विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई और कंक्रीट का विस्तार इसी तरीके से जारी रहा तो आने वाले वर्षों में हालात और भयावह हो सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण, पुराने पेड़ों के संरक्षण और हरित

शहरी नियोजन पर गंभीरता से काम किया जाए तो बनारस को फिर से ठंडी हवाओं और हरियाली वाली नगरी बनाया जा सकता है, वरना आने वाली पीढ़ियों को और ज्यादा तपते शहर में जीने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो ये था अपने शहर बनारस का हाल समाचार, और अब इसी के साथ बनारस मेरे भी जाने का वक्त हो चला है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और इस प्रचंड गर्मी में अपने साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी पीने के पानी की व्यवस्था अपने घर के बाहर अपनी छतों पर जरूर करिए। ये करके ना आपको जरूर अच्छा लगेगा। और अब थोड़ी जा रही हूँ आपको इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के साथ, दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त स्नेहा को। गुड मॉर्निंग बनारस से, टाटा।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: ये आकाशवाणी वाराणसी केंद्र है। अब से कुछ ही देर में यानी कि 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए। आकाश

0: गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा ये मंच। कल से करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के दाम। तेल विपणन कंपनियों ने राज्य में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बताते हुए लोगों से अनावश्यक अतिरिक्त खरीदारी न करने की अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की दी अनुमति। लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जनकल्याण, सुशासन और क्षेत्रीय विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष तौर से चर्चा की गई। बैठक से संबंधित एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने इसे सहकारी संघवाद, समन्वित विकास और राज्यों के मध्य बेहतर तालमेल को नई दिशा देने वाला मंच बताया। श्री योगी ने कहा कि ये मंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कल से लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमत 98.40 रुपये प्रति लीटर से लेकर 98.91 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 98.73 रुपये से लेकर 92.21 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। एक रिपोर्ट।
1: यह बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। इस बीच प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार की घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी की जरूरत नहीं है। एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति भी सामान्य बनी हुई है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: प्रदेश सरकार ने कहा है कि प्रदेश में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। इस समय राज्य में 13.28 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.23 लाख मीट्रिक टन डीएपी सहित कुल 27.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए अनुदान पर सभी प्रकार के उर्वरकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदानित उर्वरक का दुरुपयोग रोकने के लिए शासन ने किसान पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाले किसानों को उनके अभिलेखों के आधार पर ही उर्वरक देने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि उर्वरकों की अत्यधिक खरीद और अनावश्यक प्रयोग से बचें। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ओडिशा के भुवनेश्वर में हुए एक कार्यक्रम में कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार देश में किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। श्री चौहान ने कहा कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दे दी है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति NV अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने और नसबंदी करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कल 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। उन्होंने बछरावा में सांसद निधि से बने बारात घर का उद्घाटन किया। श्री गांधी ने रायबरेली में PSC के 25वीं बटालियन के सामने 66 फीट रोड का भी उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद आज भी अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल लखनऊ में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सही समय पर और उचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि हर हाल में 31 मई तक सभी विक्रय केंद्रों तक बीज पहुंच जाने चाहिए। सभी प्रमाणित बीज किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वो अनुदान पर बीज प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें, जिससे बुआई का कार्य सुगमता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो सके। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में क्रमिक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। प्रदेश के कई कई जिलों में पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार तीसरे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। रातें भी असामान्य रूप से गर्म हो गई हैं और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दिन चढ़ते ही सड़कें सूनी हो जा रही हैं और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी।
0: भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और संबंधित सभी राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। IPL क्रिकेट में जयपुर में हुए मुकाबले में कल राजस्थान रॉयल्स की टीम ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। कल शाम को हुए मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। इसके बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 220 रन बनाए। जवाबी बल्लेबाजी में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 19 ओवर और एक गेंद पर 3 विकेट खोकर 225 रन हासिल कर अपनी जीत दर्ज कर ली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सामूहिक संकल्प को और अधिक सशक्त करेगा ये मंच। कल से करीब 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए पेट्रोल और डीजल के दाम। तेल विपणन कंपनियों ने राज्य में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बताते हुए लोगों से अनावश्यक अतिरिक्त खरीदारी न करने की अपील की। सर्वोच्च न्यायालय ने खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की दी अनुमति। लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार और

0: प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, मौसम विभाग ने जारी किया भीषण लू का रेड अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन। कलाकार हैं पंडित रविंद्र नारायण गोस्वामी। राग है भूपाल तोड़ी। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा।

शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे सितार वादन। कलाकार थे पंडित रविंद्र नारायण गोस्वामी। राग था भूपाल तोड़ी। तबले पर संगति थी डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत, पश्चिम एशिया, यूरोप, आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
2: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
4: India is accelerating towards universal health coverage.

0: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध
1: हैं।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
0: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
2: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
6: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है, मैं सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
2: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
7: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच

0: चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष, हेल्थ, डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
1: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneously.

बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है। नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।

0: डबल स्टैंडर्ड।
1: पेश है वजीर आजम के नॉर्वे के दौरे के बारे में एक रिपोर्ट।
2: तीसरी भारत नॉर्डिक समिट के बाद जारी किए गए एक मुश्तरका बयान में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के मुश्तरका मकासद और तसव्वुर का खाका पेश किया गया है। दोनों फरीकों ने भारत नॉर्डिक ताल्लुकात को माहौल के लिए साजगार टेक्नोलॉजी और इख्तराई दिफाई शराकतदारी तक के ले जाने का फैसला किया है। वजीर आजम ने ओस्लो के अपने दौरे में कसीर मुल्की और दो तरफा सरगर्मियों के तहत माहौल के लिए साजगार राहदारी समुद्री मईशत जहाजों की तामीर सेहत दिफा जैसे मैदानों में नॉर्डिक सरमायाकारी को दावत दी है। भारत EU आजाद तजारती समझौते और टेपा मुआहिदे के रोशनी में उन्होंने नॉर्डिक खित्ते के साथ मजबूत तर इक्तसादी और तजारती ताल्लुकात की भारत की दिलचस्पी का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले समेत हर तरह की दहशतगर्दी की एक आवाज में सख्त मजम्मत की। वजीर आजम ने भारत नॉर्डिक तआवुन को मजीद गहरा करने के अज्म को दोहराया। अब अगली भारत नॉर्डिक समिट फिनलैंड के शहर हेलसिंकी में मुनाकिद होगी। ओस्लो से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: मगरबी बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा योजना का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका मकसद खवातीन को उनकी समाजी व इकतसादी बेहतरी के लिए 3,000 रुपये की यकीनी माहाना माली इमदाद फराहम करना है। ये स्कीम खवातीन और बच्चों की तरक्की और समाजी बहबूद के महकमे ने शुरू की है, जिस पर अगले महीने की पहली तारीख से अमल शुरू हो जाएगा। स्कीम के तहत ये माली इमदाद फायदे की रास्त मुंतकली के तहत अहल खवातीन के आधार से मरबूत बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल कर दी जाएगी। स्कीम के लिए अहल होने की शराइत ये है कि उनकी उम्र 25 से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए, वो इनकम टैक्स अदा ना करते हों, वो किसी मुस्तकिल सरकारी मुलाजमत में ना हों, या उन्हें रियासत या मरकजी कानूनी पंचायती बल्दियाती मकामी इदारे या सरकार की मदद वाले तालीमी इदारे की तरफ से कोई लगातार तनख्वाह या पेंशन न मिलती हो। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासती सरकार के तहत खिदमात और ओहदों में रिजर्वेशन के लिए OBC के 66 दर्जात की एक फेरिस्त जारी की है। ये फेरिस्त कोलकाता हाईकोर्ट के हुक्म के बाद जारी की गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने OBC ए के लिए 10% और OBC बी के लिए 7% रिजर्वेशन मनसूख कर दी है। मगरबी बंगाल सरकार के पसमानदा तबकों के बहबूद के महकमे की तरफ से जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में 7% रिजर्वेशन के लिए OBC के 66 तबकों की फेरिस्त शाई की है। मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी JPC, जिसे एक मुल्क एक चुनाव के मकसद से तश्कील दिया गया है, इसके अरकान कल से गुजरात के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे। गांधीनगर के गिफ्ट सिटी सेंटर में PP चौधरी की क्यादत में JPC के अरकान ने चीफ सेक्रेटरी MK दास, DGP डॉक्टर KLN राव और दीगर सीनियर अफसरान के साथ बातचीत की। गांधीनगर में कल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए JPC के चेयरमैन PP चौधरी ने कहा कि हर एक ने इस नजरिए का इजहार किया कि सभी इंतखाबात एक साथ कराए जाने चाहिए। उन्होंने एक मुल्क एक चुनाव को कौमी मफाद के तहत एक अहम कदम करार दिया। JPC में चेयरमैन के अलावा 39 अरकान हैं, जिनमें 27 अरकान पार्लियामेंट लोकसभा और 12 राज्यसभा के हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 69वीं आलमी सेहत असेंबली में सबके लिए सेहत बीमा, डिजिटल सेहत इख्तरा और आलमी सेहत यगानगत के तई भारत के अज़्म को एक बार फिर दोहराया है। उत्तर प्रदेश शदीद गर्मी की गिरफ्त में है और हर गुजरने वाले दिन के साथ वहां रिकॉर्ड तोड़ दर्ज हरारत देखने में आ रहा है। रियासत के बुंदेलखंड खित्ते में बांदा जिला लगातार तीसरे दिन मुल्क में सबसे गर्म मकाम रहा और वहां पारा 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: रियासत के दीगर हिस्सों में भी शदीद गर्मी से कोई राहत नहीं मिली है और दिन का टेम्परेचर कई मकाम पर 44 से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान चल रहा है। हत्ता के रात में भी मौसम गर्म है और कई शहरों में कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: मध्य प्रदेश में भी शदीद गर्मी का जोर जारी है। रियासत में पहली मरतबा दर्ज हरारत 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कौमी राजधानी दिल्ली में इस महीने की 25

0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें
2: 0542227658
3: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम मधुरिमा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त दीप्ति श्रीवास्तव। दोस्तों, हिंदी सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं, ये जिंदगी का वो आईना है। आज हम बात करेंगे उन फिल्मी गीतों की जो महज गाने नहीं बल्कि ऊंचे और गहरे दर्शन की मुकम्मल किताब है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर गाइड फिल्म के इस गाने के साथ। आवाज है सचिन देव बर्मन की, इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

दोस्तों, जब दर्शन की बात आती है तो साहिर लुधियानवी का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने अपने गीतों में जीवन की सच्चाई को बिना किसी दिखावे के पेश किया। फिल्म जमाना, प्यासा और धुंध जैसी फिल्मों में उनके लिखे गीत अमर हैं। लेकिन फिल्म कभी कभी का ये गीत जिंदगी के फलसफे को पूरी तरह बयां करता है। ये गीत जीवन की क्षणभंगुरता को दर्शाता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं,

अब बात करते हैं गीतकार शैलेंद्र के। शैलेंद्र के गीतों में कबीर जैसी सादगी और गहरा वेदांत दर्शन मिलता है। फिल्म तीसरी कसम का हर गीत दर्शन की पराकाष्ठा है। पर ये गीत जो मैं अभी आपको सुनवाऊंगी, वो गीता के कर्म सिद्धांत और मृत्यु के बाद के सत्य को दर्शाता है और यह याद दिलाता है कि अंत में भौतिक सुख सुविधाएं यहीं रह जाएंगी। तो आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में तीसरी कसम का ये खूबसूरत गाना।

0: मधुरिमा में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
1: मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी।
2: हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में।
3: रोमांस तो हमारे जमाने में होता था।

0: पेमेंट भी उसी जमाने का है।
1: अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने का,
0: इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि
2: डिजिटल पेमेंट अपनाओ
3: औरों को भी सिखाओ।
4: कार्यक्रम मधुरमा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब बातें गीतकार आनंद बख्शी की। उन गीतकार आनंद बख्शी के गीतों की खासियत यह है कि उन्होंने आम बोलचाल की भाषा में वो बातें कह दी जिन्हें समझने के लिए लोग सालों उपनिषद पढ़ते हैं। फिल्म अमर प्रेम का ये अमर गीत समाज की परवाह किए बिना अपनी आत्मा की आवाज सुनने का संदेश देता है।

अब बातें करते हैं शब्दों के जादूगर गुलजार साहब के गीतों की। गुलजार साहब के गीतों में अमूर्त दर्शन मिलता है जो सीधे रूह को छूता है। फिल्म गोलमाल का ये गाना समय की गतिशीलता और वर्तमान में जीने के महत्व को समझाता है, यानी जो है वो यही पल है।

नए दौर के सिनेमा में भी बहुत से गाने ऐसे हैं जो जीवन के दर्शन को बखूबी बयां करते हैं। इरशाद कामिल का लिखा फिल्म रॉक स्टार का ये गीत अद्वैत के दर्शन पर आधारित है कि जब कुछ भी नहीं था तब भी ईश्वर था।

तो दोस्तों, आज हमने सुना कि कैसे हमारे महान शायरों ने संगीत के साथ सुरों में जिंदगी के सबसे मुश्किल दर्शन को पिरो दिया। अगली बार जब आप इन गीतों को सुने तो सिर्फ झूमिएगा नहीं, बल्कि इनके पीछे छुपे सच को महसूस कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए विचारों और नए गानों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे यानी अपनी दोस्त दीप्ति को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मधुरिमा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और मुजफ्फरनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतिये का।
1: महोबा जिलाधिकारी गजल भरद्वाज की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की प्रगति, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता तथा आगामी कार्य योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना, आयुष्मान कार्ड, मातृ शिशु स्वास्थ्य, संक्रामक रोग नियंत्रण एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। डीएम ने अस्पतालों में साफ सफाई, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति तथा मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की भी गहन समीक्षा की। महोबा में सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी और गाली देने के मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने सांसद और उनके अज्ञात समर्थकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता

0: कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध प्रदर्शन कर सांसद का पुतला फूंका था और जिला मीडिया प्रभारी की तहरीर के बाद यह कार्रवाई हुई। शापा सांसद का वीडियो वायरल होने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए सांसद ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने दावा किया कि वायरल वीडियो पूरी तरह से फर्जी है और AI तकनीक के जरिए उनके शब्दों से छेड़छाड़ कर उन्हें बदनाम करने की साजिश रची गई है। महोबा जनपद के प्रसिद्ध देसावरी पान को नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिलाधिकारी गजल भरद्वाज ने राठ रोड स्थित FPO जैविक बाजार का फीता काटकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विशेष रूप से देसावरी पान से जुड़े नवाचारों को सराहा और पान उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने पर जोर दिया। DM ने मयंकता चौरसिया द्वारा स्थापित अच्युतम ऑर्गेनिक एंड हर्बल्स पान प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। इस प्रतिष्ठान में देसावरी पान से निर्मित मुखवाश, पान लड्डू, पान शरबत, पान चॉकलेट सहित कई आकर्षक उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। DM ने नवचारों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को ब्रांडिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए बाजार में नई पहचान दी जा सकती है। उन्होंने जैविक सब्जियों एवं अन्य उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि सभी FPO एवं स्वयं सहायता समूह अपने उत्पाद यहां विक्रय करेंगे तथा जिनके उत्पादों का जैविक प्रमाणीकरण नहीं हुआ है वे शीघ्र प्रक्रिया पूर्ण करा लें। महोबा के इस जैविक बाजार में अब तक कुल 12 FPO एवं स्वयं सहायता समूहों को दुकानें आवंटित की जा चुकी हैं। यह बाजार नगर पालिका परिषद महोबा द्वारा जिलाधिकारी के नेतृत्व में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में उद्यान विभाग द्वारा स्थापित हाईटेक नर्सरी किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। लगभग 125 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस आधुनिक नर्सरी में तैयार किए गए उच्च गुणवत्ता वाले तरबूज और खरबूज के पौधे लगाकर किसान भारी मुनाफा कमा रहे हैं। महोबा के जैतपुर में स्थापित यह हाईटेक नर्सरी किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यहाँ की प्रमुख विशेषताएं और किसानों को होने वाले फायदे इस प्रकार है। जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि पारंपरिक खेती के मुकाबले तरबूज और खरबूज की बागवानी में कम समय में प्रति एकड़ लाखों रुपए तक का मुनाफा कमाया जा सकता है। हमारे यहाँ ऑटोमेटिक मशीनों और आधुनिक तापमान नियंत्रण प्रणाली से यहाँ हाईब्रिड और रोग मुक्त पौधे तैयार किए गए थे जिससे किसानों को अब अच्छा मुनाफा हुआ है। उन्होंने कहा
1: तरबूज की और खरबूजा की खेती लगभग 1400 हेक्टेयर की जाती है। एक हेक्टेयर में आराम से 3-4 लाख रुपए किसानों को 3-4 महीने मिल जाती है। कुछ किसान ने बताया कि 8-8, 10-10 किलो के तरबूज तैयार है और किसान बड़े खुश हैं कि यहाँ का जो पौधा है अच्छा है और उत्पादन अच्छा हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना देश के करोड़ों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। महोबा जिले में कुल 4,25,310 आयुष्मान लाभार्थियों के सापेक्ष अब तक 2,79,612 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। जिलाधिकारी गजल भरद्वाज ने शेष पात्र लाभार्थियों से जल्द अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पात्र लोग जिला अस्पताल के महिला एवं पुरुष आयुष्मान कक्ष सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचकर आयुष्मान मित्र की सहायता से निशुल्क कार्ड बनवा सकते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में CHO, ANM एवं आशा संगिनी द्वारा भी यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन का कहना है कि आयुष्मान कार्ड बन जाने से जरूरतमंद परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता मिलेगी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।
2: महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मुजफ्फरनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रणवीर सिंह सैनी का।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर में इसी महान नुमाइश ग्राउंड के मैदान में एक रोजगार मेले का उद्घाटन किया जिसमें लगभग 200 कंपनियों ने भाग लिया और भारी संख्या में युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। सांकेतिक रूप से लगभग 10 युवक युवतियों को मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिए। कार्यक्रम में केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी शामिल रहे। श्री चौधरी ने मंच से बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कराए जा रहे देश हित और प्रदेश हित के विकास कार्यों की जमकर सराहना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर को नगर निगम का दर्जा दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने गन्ना किसान, गन्ने का भुगतान, सुगर मिल के साथ साथ किसानों की जमकर तारीफ की। चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने किसानों के लिए काम किया, मजदूरों के लिए काम किया। श्री योगी ने कहा कि वह कभी जातिवाद के पक्षधर नहीं रहे। मुजफ्फरनगर जिले में बीते एक माह से लगातार आंधी तूफान और ओलावृष्टि के कारण कई पेड़ उखड़ कर गिर गए। वहीं ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी भारी नुकसान हुआ है। विद्युत आपूर्ति भी जनपद में आंधी तूफान से लगातार बाधित रही। उत्तर भारत की पौराणिक तीर्थस्थली मुजफ्फरनगर के सुखतीर्थ स्थित हनुमत धाम के पीठाधीश्वर स्वामी केशवानंद जी महाराज का बीमारी के चलते निधन हो गया। वह 80 वर्ष के थे। उनके

0: निधन से तीर्थ के साधु संतों में शोक की लहर दौड़ गई। स्वामी केशवानंद जी महाराज को हनुमत धाम के प्रांगण में भू समाधि दी गई। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में सामाजिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी मौजूद रहे और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा मुजफ्फरनगर में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भाजपा शासित सभी राज्यों में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। रेलवे के दोहरीकरण, रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यकरण और विद्युत आपूर्ति में बड़े स्तर पर सुधार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। श्री शर्मा ने कहा कि वर्ष 2029 में भाजपा की सरकार बनने के बाद महिलाओं की राजनीति में अधिक भागीदारी देने के लिए महिला आरक्षण से जुड़े बड़े कदम उठाए जाएंगे, जिससे महिलाओं को 50% से अधिक प्रतिनिधित्व मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे बड़े प्रोजेक्ट विकास की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 22,000 से अधिक वाद प्रकरणों को निस्तारण किया गया। इस दौरान जिला जज ने कहा कि लोक अदालत विवादों को सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित करने का बड़ा माध्यम है। यह त्वरित न्याय को अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। इस दौरान मोटर दुर्घटना के 56 वादों का निस्तारण कर 6,11,00,000 रूपए प्रतिकर प्रदान किया गया। विभिन्न न्यायालयों के 6,190 सामान्य फौजदारी वादों का निस्तारण कर 7,27,000 रूपए का अर्थदंड वसूला गया। 33 दीवानी वादों का निस्तारण किया गया। 138 NIA एक्ट के 31 वादों के निस्तारण में 2,97,00,000 रूपए का अर्थदंड वसूला गया। राजस्व के 15,876 मामलों का निस्तारण कर 4,54,00,000 रूपए का राजस्व वसूला गया। विभिन्न बैंकों के द्वारा 384 बैंक ऋण मसलों का निस्तारण कराकर लगभग 5,62,00,000 रूपए का सेटलमेंट किया गया। पारिवारिक न्यायालयों के द्वारा 64 मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया। लोक अदालत के नोडल अधिकारी अपर जिला जज रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों को सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित कराने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। मुजफ्फरनगर जिले में इस समय स्व जनगणना का कार्य चल रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि 7 मई से प्रारंभ होकर 21 मई 2026 तक होने वाली स्व जनगणना में जनपद के सभी नागरिक स्वयं की जनगणना पोर्टल पर अपनी सूचनाएं दर्ज कराने का कार्य करें। मुजफ्फरनगर में महिला आरक्षण बिल पास न होने पर विशाल शक्ति प्रदर्शन किया गया। हिंद मजदूर किसान समिति के बैनर तले जुटी हजारों महिलाओं ने पैदल मार्च निकालकर संदेश दे दिया कि अब देश की आधी आबादी अपने हक के लिए जाग चुकी है। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर नारे लगाती ये महिलाएं प्रकाश चौक पहुंची, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा एवं राष्ट्र हित में किए गए आह्वान के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अपने निजी गाड़ी के स्थान पर मेट्रो का उपयोग किया। कपिल देव ने गोरखपुर से लौटते समय निजी वाहन का उपयोग न करते हुए दिल्ली हवाई अड्डे से मोदीपुरम तक मेट्रो एवं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS के माध्यम से यात्रा कर जनमानस को ऊर्जा संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा का प्रेरणादायी संदेश दिया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है खोई व्यक्तियों के संबंध में सूचना। थाना अलीनगर कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार जया शर्मा पुत्री दिनेश शर्मा चांदपुर थाना अलीनगर जनपद चंदौली की निवासी हैं। जया शर्मा की उम्र 22 वर्ष, लंबाई 4 फुट 10 इंच एवं रंग गोरा है। ये दिनांक 11 अप्रैल 2026 दोपहर 2 बजे बाजार के लिए गईं और लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने पीले रंग का फ्रॉक सूट पहना था। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाना अथवा थाना अलीनगर जनपद चंदौली को सूचित करें।

थाना मुगलसराय, कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार सुधा मसीह पुत्री राम प्यारे, साई धाम कॉलोनी लखीमपुर थाना मुगलसराय जनपद चंदौली की निवासी हैं। सुधा मसीह की उम्र 23 वर्ष, लंबाई 5 फुट 5 इंच, रंग सांवला एवं चेहरा लंबा है। ये दिनांक 27 अप्रैल 2026 सुबह 10 बजे से SS पब्लिक स्कूल ओडवारे मुगलसराय से लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने नीली साड़ी और हरा ब्लाउज एवं पैर में सैंडल पहना था। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नजदीकी थाना अथवा थाना मुगलसराय जनपद चंदौली को सूचित करें। थाना मुगलसराय, कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार अभिषेक साहनी पुत्र रमाकांत, ग्राम एवं पोस्ट कांटा, थाना सैयद राजा, जनपद चंदौली के निवासी हैं। अभिषेक साहनी की उम्र 24 वर्ष, लंबाई 5 फुट 6 इंच, रंग सांवला एवं चेहरा गोल है। ये दिनांक 3 मई 2026 नगर पालिका इंटर कॉलेज मुगलसराय में नीट की परीक्षा देने आए थे और लापता हैं। लापता होने के समय इन्होंने हरे रंग का टी शर्ट एवं खाकी रंग का ट्राउजर पहना था। यदि इनके संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो कृपया अपने नज़दीकी थाना अथवा थाना मुगलसराय जनपद चंदौली को सूचित करें। खोए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: Akashvani at 90.
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: आकाशवाणी प्रयागराज की प्रस्तुति।
1: पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। सामईन हजरात आदाब, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर जावेद अहसन आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ उर्दू प्रोग्राम। हजरात, जब भी उर्दू अदब में इनकलाब, रूमानियत और इंसानी दोस्ती का जिक्र आएगा, एक नाम उफुक पर सबसे ज़्यादा रोशन नज़र आएगा और वो नाम है अली सरदार जाफरी। वो सिर्फ किताबों और मुशायरों के ही बेताज बादशाह नहीं थे, बल्कि उन्होंने फिल्मी दुनिया की चमक दमक में भी अपने कलम का तकद्दस बरकरार रखा। उन्होंने नगमों को सिर्फ तफरी का जरिया नहीं बनाया, बल्कि इनमें समाजी शुरूर और गहरे जज्बात की रूह फूंकी। आइए, आज के इस खास प्रोग्राम में हम सफर बनते हैं अली सरदार जाफरी के इस फनी सफर के, जहां अदब और बॉलीवुड की मौसीकी गले मिलती दिखाई देती है। आज उर्दू बज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं तकरीर, मौजू है अली सरदार जाफरी बतौर नगमा निगार। इसके अलावा डॉक्टर तालिब इकराम

ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म अनहोनी के लिए नगमे लिखे जिनमें से दर्द ज़ेल नगमा बहुत मशहूर हुआ था। इस दिल की हालत क्या कहिए, जो शाद भी है नाशाद भी है, कुछ खो भी दिया कुछ पा भी लिया, एक राग खुशी ने गा भी लिया और होंठों पे फरियाद भी है। दिल शाद भी है नाशाद भी है, इस दिल की हालत क्या कहिए, जो शाद भी है नाशाद भी है। इस नगमे को लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ दी थी।

0: के लिए अली सरदार जाफरी और मजरू सुल्तानपुरी ने मुश्तरका तौर पर दो नगमे लिखे जिनके बोल ये हैं। पहला, शामे गम की कसम आज गमगी हैं हम। दूसरा, ठंडी पवन चले सांझ ढले। इसके अलावा 1954 ईस्वी में आई फिल्म धोबी डॉक्टर के लिए अली सरदार जाफरी और मजरू सुल्तानपुरी ने एक नगमा लिखा था जिसका मुखड़ा था, झिलमिल झिलमिल तारे नील गगन में। 1957 ईस्वी में फिल्म परदेसी के लिए उन्होंने प्रेम धवन के साथ मिलकर नगमे लिखे थे। इसमें एक नगमा इनफरादी तौर पर अली सरदार जाफरी ने लिखा था जो बहुत मशहूर हुआ था। इसके बोल थे, जाओ सिधारो फिर मिलेंगे जाने वाले। 1963 ईस्वी में ख्वाजा अहमद अब्बास की हिदायत में बनी फिल्म शहर और सपना ने सदर जमहूरिया हिंद से गोल्ड मेडल हासिल किया। इस फिल्म में सिर्फ एक ही नगमा शामिल था जिसे अली सरदार जाफरी ने लिखा था। मौसीकार जेपी कौशिक थे और इसके गुलकार अदाकार मनमोहन कृष्ण थे। ये एक तवील नगमा था जिसके चार हिस्से थे। पहला, ये शाम भी कहाँ हुई। दूसरा, पत्थर का भगवान यहाँ है पत्थर का शैतान। तीसरा, पत्थर को आज नई तरह निभाना होगा। चौथा, हजार दर ये सब अजनबी हैं मगर। 1964 ईस्वी में मौसीकार जेपी कौशिक के लिए एक मरतबा फिर अली सरदार जाफरी ने फिल्म हमारा घर के लिए नगमे लिखे जिसमें चले हवा पुरवाई उषा जगमग जगमग आई बहुत मकबूल हुआ। और बाद अजां 1965 ईस्वी में आसमां महल के लिए तीन नगमे लिखे जिसके मुखड़े ये हैं। पहला, तूने समझा ही नहीं क्या है हकीकत मेरी। दूसरा, खूबसूरत है तेरी तरह शिकायत मेरी। तीसरा, लाओ पिलाओ मैं शराबी हूँ। 1980 में ख्वाजा अहमद अब्बास की हिदायत में बनी फिल्म नेक्सलाइट के लिए भी अली सरदार जाफरी ने नगमे लिखे। इसके मौसीकार प्रेम धवन थे। इसका एक नगमा उन दिनों बहुत मकबूल हुआ था, आज अपने लहू में नहाने चले देख लो अपना वादा निभाने चले। इन नगमों के अलावा सरदार जाफरी की कई गजलें भी फिल्मों में शामिल हैं। ज़बानो बयान के एतबार से देखा जाए तो उनकी बेशतर नगमों पर उनकी शायरी की ही तरह इंकलाब एहतजाज का लहजा गालिब है। बेशक ये नगमे मनाजिर के मुताबिक लिखे गए हैं, लेकिन अली सरदार जाफरी ने फिल्म की सिचुएशन का ख्याल रखते हुए नाजरीन और सामईन के साथ अपने लिए भी उनके जरिए ज़हनी तमानियत का सामान फराहम किया है। इसके अलावा उनके नगमों में फिल्मी तकाजों के पेश नज़र वो तमाम चीज़ें बतमामो कमाल मौजूद हैं जो एक नगमा और फिल्म की मकबूलियत का सबब बनती हैं। साथ ही उनकी अदबी अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उनके नगमों में इंकलाब के साथ साथ रूमान नगमगी और जबान का हुस्न देखते ही बनता है। इनके नगमों के चंद टुकड़े मुलायजा हूँ। तूने समझा ही नहीं क्या है हकीकत मेरी। इतनी आसा नहीं है दोस्त मोहब्बत मेरी। जामो मीना के सिवा और भी पैमाने हैं। दर्द दिल दर्द मोहब्बत भी तो मैं खाने हैं। तू न समझा है न समझेगा शिकायत मेरी। इतनी आसा नहीं है दोस्त मोहब्बत मेरी। मुझे वो देख कर जब मुस्कुराएंगे तो क्या होगा। मेरी दुनिया पे बिजली सी गिराएंगे तो क्या होगा। मैं उनके सामने आई तो हूँ जी को कड़ा करके। इशारों से जो पास अपने बुलाएंगे तो क्या होगा। मेरी नजरों से घबरा कर वो नजरें खुद झुका लेंगे। झुका कर अपनी नजरें फिर उठाएंगे तो क्या होगा। मुख्तसर ये कि हिंदुस्तानी सिनेमा को हुस्न ज़बान नाजो अदा गमज़ा ओशवा इश्क व वारफ्तगी उर्दू ही का अतिया है। हिंदुस्तानी फिल्मों का अहद जर्री उर्दू का मरहून मिन्नत है। ये एक मुसलमा हकीकत है कि उर्दू के फनकारों अदीबों और शायरों ने हिंदुस्तानी फिल्मों के फिक्रोफन की आबियारी अपने खून जिगर से की है और इसे बुलंदियों तक पहुँचाया है। बॉलीवुड से वाबस्ता कोई भी फनकार इसकी तरक्की में उर्दू की अहमियत किरदार से रूगर्दानी नहीं कर सकता। नगमा निगारों की एक तवील फहरिस्त है जिसमें अख्तरुल ईमान जानिसार अख्तर मोहिन हसन जज्बी हसद जयपुरी साहिल लुधियानवी शकील बदायूनी शहरियार खतीर शिफाई कैफी आजमी मजू सुल्तानपुरी निदा फाजली गुलजार और जावेद अख्तर वगैरह के नाम काबिल जिक्र हैं। इन शोरा ने अपने फिक्रोफन से अदब और फिल्म दोनों को बुलंदी अता की। अली सरदार जाफरी भी इनमें से एक हैं। फिल्मों में उनके नगमों की तादाद जरूर कम है लेकिन जितनी भी है उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता।
1: अली सरदार जाफरी बतौर नगमा निगार, अभी आपने इस मौजू पर डॉक्टर मोहम्मद अफजल की तकरीर सुनी और अब कलाम शायर के तहत समात फरमाइए डॉक्टर तालिब इकराम से उनका कलाम।
2: गजल के चंद अशार पेश खिदमत है, मुलाजा फरमाए। सबब यही है रगे जाम इनकलाब नहीं। सबब यही है रगे जाम इनकलाब नहीं। हमारे पेश नज़र अब कोई किताब नहीं। हमारे पेश नज़र अब कोई किताब नहीं। चमन में खुशबुए तहजीब का गुलाब नहीं। چمن میں خوش

अभी आपने सुना शिव प्रसाद पाल और साथी के स्वर में देवी गीत। अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए इन्हीं का गाया विरह गीत।

0: शिव प्रसाद पाल और साथी के स्वर में गाए इस विरह गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। झंकार में सबसे पहले सुनिए केसरी फिल्म का ये गाना। आवाजें हैं ब्रिजेश और रोमी की, गीतकार हैं कुमार और संगीतकार हैं तनिष्क बागची।
1: लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट परे थम जवान पीछे से गाना गाएगा।

झंकार में अब अगला गीत सुनिए श्रेया घोषाल, अगला गाना सुनिए श्रेया घोषाल की आवाज़ में, रांझड़ा फिल्म का। गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत है ए आर रहमान का।

झंकार में अगला गाना हमने लिया है फिल्म टू इट्स स्टेट से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा ने, बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

अभी आपने सुना फिल्म अतरंगी रे से ये गाना। आवाजें थीं श्रेया घोषाल और हरिचरण शेषाद्री की। गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीतकार थे यार रहमान। झंकार में अगला गीत हमने लिया है फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से, जिसे गाया है सुखविंदर ने, बोल हैं जयदीप साहनी के और सुरों से सजाया है सलीम सुलेमान ने।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार। झंकार में अब सुनिए फिल्म वंस अपॉन अ टाइम का ये गाना। आवाजें हैं राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार की। गीतकार हैं एक बार फिर से इरशाद कामिल और सुनो से सजाया है प्रीतम ने।

झंकार में अगला गाना हमने लिया है फिल्म कुर्बान से। आवाजें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, बोल हैं निरंजन अयंगर के और संगीतकार हैं सलीम सुलेमान।

अभी आपने सुना फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से ये गाना। आवाज़ थी आतिफ असलम की, गीतकार थे इरशाद कामिल और संगीतकार थे प्रीतम। झंकार में यह बगला गीत हमने लिया है फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और कुमार सानू की, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं जतिन ललित।

अभी आपने सुना अरमान फिल्म का ये गाना। आवाज़ें थीं सोनू निगम और सुनिधि चौहान की, शब्द रचना थी जावेद अख्तर की और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। अब सुनिए अलका याग्निक की आवाज़ में जख्म फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं MM करीम।

झंकार का ये आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म गुरु से। आवाज़ें हैं ए हरिहरन और अलका याग्निक की, और संगीत है ए आर रहमान का, और गीतकार हैं गुलजार।

गुरु फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के ईमेल संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।

फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुनने वाले सभी साथियों को स्वस्ति श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम हाजिर हैं आपके आज फरमाइशी गीतों के साथ, जिसके लिए आपने हमें पहले से ही ईमेल भेजा हुआ है। और गीत संगीत का ये सुरीला सफर हम शुरू कर रहे हैं इंतकाम फिल्म के इस गाने से। और इस गाने के लिए हमें किन श्रोताओं के ईमेल संदेश प्राप्त हुए, हम आपको बताएंगे इस गाने के बाद। आइए पहले सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीत राजेंद्र कृष्ण का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे इंतकाम फिल्म से। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस गीत के लिए हमें ईमेल भेजा आप सभी श्रोताओं ने। जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल और अभिनव जायसवाल। इसी गाने को सुनना चाहते थे आप सभी श्रोता। अडार नाथघाट छत्तीसगढ़ से माखनलाल वर्मा, चांदनी भूपेश दीपेश वर्मा, इसी गाने को पसंद किया। दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता और पिहरा बाजार झुमरी तिलैया, गिरिडीह से अभय कुमार सनातनी, शिवम शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, गुड्डू कुमार, रिया जिया, तूसी आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, मुन्नी देवी शाह और जयप्रकाश साहू, आप सभी ने इस गाने को सुनना चाहा। इसी गाने के लिए हमें मेल प्राप्त हुआ जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना उमा राज और दिव्या भारती, और गौरैया जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर ने इस गाने के लिए फरमाइश भेजी। पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से इस गाने को सुनना चाहते थे एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, इजाद कुरैशी और बेबी अरीबा हबीबा। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से इस गाने को सुनना चाहा अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष राजभर ने। मलियान सरदाना मेरठ से इस गाने को सुनना चाहते थे अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन। साउथ दिल्ली से इस गाने को सुनना चाहते थे गुरमीत सिंह मीता। पटेल नगर मुगलसराय से इस गाने को पसंद किया सुनील कुमार सिंह ने।

किशनगंज बिहार से इस गाने के लिए मेल भेजा रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार और भानु प्रिया ने। इसी गाने को सुनना चाहते थे पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू ने। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना। फिल्म का नाम है प्रेम रोग। आवाजें हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की, गीत नरेंद्र शर्मा का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

प्रेम रोग फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की, गीत नरेंद्र शर्मा का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और इस गाने के लिए हमें फरमाइश भेजी आप सभी श्रोताओं ने। उगापुर भदोही से इस गाने को पसंद किया बबलू यादव, पप्पी यादव, सुनील यादव, रोहित यादव, रजईपुर पोस्ट उगापुर भदोही से आप सबने हमें ये मेल भेजा। इसी गाने को सुनना चाहते थे कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष। इसी गाने के लिए हमें मेल भेजा जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेष मूषा भाईजान, राजकुमार बुडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, आप सभी का संदेश हमें प्राप्त हुआ। इसी गाने को सुनना चाहते थे पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। आर्यनगर कोहका भिलाई से हमें संदेश भेजा उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल। इसी गाने के लिए हमें मेल प्राप्त हुआ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि अंशिका और आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल का। पानीपत हरियाणा से इस गाने के लिए हमें मेल भेजा अनिल कटारिया, मंजू कटारिया, नरेश मल्होत्रा और ज्ञान भूषण शर्मा।

राहुल नगर अमरावती से इस गाने के लिए मेल भेजा सिद्धार्थ गोडाने, अर्चना ताई गोडाने, हिरामण शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोडाने ने। इसी गाने को सुनना चाहते थे बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुनील रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोना मदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य, सारीमपुर बक्सर से इस गाने को सुनना चाहते थे राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी।

सी गाने के लिए मेल भेजा पंढरपुर तालुका से जाकिर मुलानी, सुमैया, सुबान, समीर, सलमा, मुमताज, दिलशाद, नसीर और पूरा मल्लाड़ी परिवार। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हमें मेल भेजा टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज।

केदारनाथ घाट छत्तीसगढ़ से माखनलाल वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा। इसी गाने के लिए हमें मेल भेजा था राज पैलेस मऊ नाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक, आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, आप सभी ने हमें मेल भेजा, आप सभी का शुक्रिया। और अब आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में, अगला गाना सुनते हैं, फिल्म का नाम है दो रास्ते।

दो रास्ते फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस गाने के लिए हमें फरमाइश मिली आप सभी श्रोताओं की। गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबूरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल और देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल ने इस गाने को पसंद किया था। इसी गाने को सुनना चाहते थे करौता वाराणसी से अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिवप्रकाश प्रजापति और मोनी प्रजापति और राहुल प्रजापति। चंदौली ग्राम पट्टी पोस्ट सकरडीहा चंदौली से इस गाने को सुनना चाहती थी इमरती देवी।

राजकोट से इस गाने के लिए हमें मेल भेजा आप सभी श्रोताओं ने, प्रेमा रानी जाटौर डॉली और सुरेश डोकर, गंज डुंडवारा से मास्टर फरहत शेख, चमनपुरा मोरबी से प्रमिला जेटली, दीपक और आशु जेटली।

जालंधर से इस गाने को सुनना चाहते थे संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटेलिया। डांडिया खेड़ा से आप सभी ने हमें संदेश भेजा। फजल का पंजाब भूषण खेड़ा से विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा,

हरियाणा से इस गाने को सुनना चाहते थे अंकित कांगड़ा, सोनी कांगड़ा, प्रिंस बोध सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से इस गाने को पसंद किया नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, देविका चौधरी और आप सभी ने हमें मेल भेजा इस गाने के लिए, शुक्रिया। चौटाला हरियाणा से इस गाने को पसंद किया दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा ने।

बुजुर्ग महाराष्ट्र से इस गाने को सुनना चाहा किशोर किशोर वडलकर, शुभम वडलकर और पुन्नू वडलकर ने। श्रोताओं अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है काला पत्थर। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की हैं, गीत साहिर का, संगीत राजेश रोशन का।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे काला पत्थर फिल्म का ये प्यारा सा गीत, जिसे लिखा था साहिर लुधियानवी ने, संगीत से सवारा था राजेश रोशन ने, और इस गाने को पसंद किया आप सभी श्रोताओं ने। चरडोगरी पिपरिया जिला कबीर धाम छत्तीसगढ़ से इस गाने के लिए हमें मेल भेजा दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू, आप सभी ने इस गाने के लिए हमें मेल भेजा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी गाने को सुनना चाहते थे ददरेगी भाटा पारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, आपका संदेश हमें प्राप्त हुआ। जिला जालौन उत्तर प्रदेश से इस गाने को सुनना चाहते थे सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया।

इसी गाने के लिए हमें मेल भेजा। बबलू यादव, पप्पी यादव, सुनील यादव, रोहित यादव, आप सभी का मेल हमें प्राप्त हुआ रजईपुर पोस्ट उगापुर भदोही से।

नागर कोहरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से इस गाने को पसंद किया बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने।

इसी गाने को सुनना चाहते थे ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंद शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, आयान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।

और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम में अगला गाना। फिल्म का नाम है कामचोर। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के, गीत इंदिवर का, संगीत राजेश रोशन का। आइए सुने ये प्यारा सा गीत।

कामचोर फिल्म का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत इंदिवर का था, संगीत से सवारा था राजेश रोशन ने और इस गाने को पसंद किया आप सभी श्रोताओं ने। मुजफ्फरपुर से राजू कुमार ने इस गाने के लिए हमें मेल भेजा, इसी गाने को सुनना चाहते थे। पटियाली रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाज कुरैशी और बेबी अरीबा हबीबा, इसी गाने के लिए मेल भेजा। शाहकोटी मुगल सराय से सोनू जायसवाल और मंजू जायसवाल, सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा जायसवाल और पूनम जायसवाल, हनुमानपुर मुगल सराय से डब्लू जायसवाल और माया जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से विनोद जायसवाल और पिंकी जायसवाल का मेल हमें प्राप्त हुआ।

इसी गाने के लिए मेल भेजा गढ़नोखा लालगंज रोहतास से राजकिशोर चौहान बड़क चौहान बड़क सिंह चौहान ने और ग्राम खरवत गढ़नोखा से मोती माला जी विजेंद्र पासवान और लाल बिहारी सिंह आप सभी का मेल प्राप्त हुआ। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से इस गाने के लिए मेल भेजा अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब अब्दुल हक डावर जियाउल हक डावर मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारा ने। भाटापारा छत्तीसगढ़ से मेल भेजा सोहन जोशी और पायल जोशी ने। पाहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से हमें मेल भेजा नीतीश कुमार तनुजा देवांगन ईशांत देवांगन लखन लाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन ने।

महाराष्ट्र से इस गाने के लिए मेल भेजा रंजीत, कंचन, सृष्टि और समरजीत करगांवकर। आप सभी का संदेश हमें प्राप्त हुआ।

पिंगा वाला चौक गोरैया जालंधर से हमें मेल भेजा, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी का संदेश हमें प्राप्त हुआ और साथ ही संदीप मक्कड़ ने भी हमें जालंधर से ही मेल भेजा।

मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशुल कुमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन, तूबा आफरीन, शमीम अख्तर अंसारी, आप सभी का मेल प्राप्त हुआ। इसी गाने के लिए मेल भेजा संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से इस गाने को पसंद किया रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, आप सभी ने। और अब कार्यक्रम में अगला और अंतिम गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ ये गीत जिसकी तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है मन की आंखें।

मन की आंखें, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिर लुधियानवी का लिखा यह गीत था, जिसकी तर्ज बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गाने के लिए हमें मेल भेजा आप सभी श्रोताओं ने, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, आप सभी का मेल प्राप्त हुआ।

गोविंद वैष्णव का मेल हमें प्राप्त हुआ, कहाँ से ये आपने नहीं लिखा है। इसी गाने के लिए मेल भेजा हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण और जेहानुल होदा, आप सभी का संदेश मिला। रुहासी छत्तीसगढ़ से इस गाने को सुनना चाहते थे मुकेश साहू, नंदिनी साहू, मनीष साहू, मयंक साहू और जानकी साहू।

लैटर लवन से इस गाने को पसंद किया था संजय साहू और दिव्या साहू ने। इसी गाने को सुनना चाहते थे मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान। गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से इस गाने को पसंद किया जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। आप सभी का मेल हमें प्राप्त हुआ।

जैन मंदिर वाले गली गुरावली से इस गाने को पसंद किया आप सभी श्रोताओं ने। राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसमा अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी ने। और इसके साथ ही दीजिए इजाज़त, फरमाइशी गीत एक्सप्रेस समाप्त करने की। स्वस्ति श्रीवास्तव को नमस्कार, अगले कार्यक्रम में होगी फिर मुलाकात। अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के ईमेल संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: आप कौन हैं, आपकी क्षमताएं क्या हैं और आपके संस्कार क्या हैं? इन सब का निर्धारण आपके द्वारा किए गए कार्यों के संचय से होता है। आपकी सफलता, आपका व्यवहार और आपके कार्यों का समाज पर प्रभाव ही वो स्वर है जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी पहचान की घोषणा करता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं,
2: 14 अप्रैल 2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया, जिसमें आपने हाथ से लिखने की आदत के बारे में बताया। ये सही है कि इस डिजिटल युग में हाथ से लिखना बहुत कम हो गया है। ऐसे तो हाथ से लिखने से बहुत से फायदे हैं, जैसे कि याददाश्त तेज होती है, दिमाग शांत होता है, रचनात्मकता बढ़ती है, एकाग्रता सुधरती है, समझ गहरी होती है और हाथ की कसरत भी होती है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। संदेश भेजने वाले हैं बबलू साहू, जामुन देवी साहू, पूजा, प्रेम, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी।
1: और चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से याकूब आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर और अक्रम आसमा फकीर।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं इस श्रृंखला की अगली कड़ी। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट की।
2: जी,
1: तो विमलेश जी अब श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी जी जी श्रोताओं, कल हमने ली थी वर्षा वन की सामान्य जानकारी। आगे हम आज चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया के प्रमुख वर्षा वनों की। तो करते हैं शुरुआत अमेजन वर्षा वन से।
1: जी जरूर श्रोताओं, आपने टीवी चैनलों में अमेजन वर्षा वन के रोमांचकारी दृश्यों को जरूर देखा होगा। समाचार पत्रों या अन्य संचार माध्यमों के द्वारा भी इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी तो अवश्य प्राप्त की होगी।
2: जी
1: आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं।

0: श्रोताओं, अमेजन वर्षावन दुनिया का सबसे बड़ा वनस्पति और जीव समृद्ध वर्षावन है। ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और हाँ, इसे समुद्र के बाद पृथ्वी का सबसे बड़ा फेफड़ा भी कहा गया है।
1: ऐसा इसलिए कहा गया है श्रोताओं कि धरती की कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% ऑक्सीजन हमें इसी वर्षावन से मिलता है।
0: जी,
1: जहाँ तक इसके स्थान की बात है तो यह दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका में फैला हुआ है, मुख्य रूप से ब्राजील में,
0: लेकिन इसके कुछ भाग पेरू और कोलंबिया में भी फैले हुए हैं। यहाँ भारी वर्षा होती है, लगभग 2000 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक।
1: और श्रोताओं, जहाँ तक इसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की बात है, यहाँ उनकी लाखों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। जानते हैं कुछ दुर्लभ और रोचक जीवों के नाम। तो सबसे पहला जीव है जगुआर। जी हाँ, अमेजन वन का सबसे बड़ा शिकारी, पानी में तैरने और शिकार करने में माहिर।
0: दूसरा है गोल्डन मंकी, बिल्कुल सोने के सुनहरे रंग का दिखाई पड़ता है, केवल अमेजन के जंगलों में ही मिलता है। एक और विशेष मेंढक यहाँ मिलता है, उसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। ये बेहद चमकीले रंग वाला मेंढक होता है। इसकी त्वचा में जहरीला पदार्थ होता है जिसे छूते ही तबीयत बिगड़ सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। पुराने समय में यहाँ के आदिवासी लोग युद्धों में इस जहर का इस्तेमाल तीरों पर करते थे।
1: और आपने श्रोताओं, एनाकोंडा सांप के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। ये दुनिया का सबसे लंबा और भारी सांप है जो पानी में रहता है और बड़े जानवरों का शिकार करता है।
0: एक और चींटी की अनोखी प्रजाति यहाँ पाई जाती है जिसे बुलेट एंट कहते हैं। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक डंक वाली चींटी है। कहते हैं इसके डंक मारने पर भाला मारने या तीर लगने जैसा दर्द होता है।
1: तो ये थी कुछ रोचक वन्य जीवों की जानकारी। श्रोताओं, अमेज़न का जंगल यह औषधीय वनस्पतियों का बहुत बड़ा भंडार है।
0: जी
1: आइए अब जानते हैं कुछ रोचक तथ्य अमेज़न वर्षा वन के बारे में। तो विमलेश जी,
0: जी, एक सबसे रोचक तथ्य ये है कि अमेज़न वर्षा वन ज्यादातर अमेज़न नदी के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। मालूम है श्रोताओं, वैसे दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, लेकिन जल की मात्रा के दृष्टिकोण से दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न है। एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि अमेज़न नदी में पुल नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि भारी वर्षा के कारण अमेज़न नदी उफान से भरी रहती है।
0: जी,
1: इसका कोई निश्चित तटबंध नहीं है। कभी कभी
0: इसकी धारा पतली हो जाती है तो कभी कभी बहुत चौड़ी, कभी 2 किलोमीटर ही रहती है तो कभी कभी 10 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है। इसलिए यदि यहाँ पुल भी बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक नहीं टिकते, क्योंकि दुविधा ये रहती है कि पुल की लंबाई या चौड़ाई कितनी रखनी है।
1: इसलिए यह तय पाया गया श्रोताओं कि अमेज़न नदी में पुलों से बेहतर नौकायन ही है, और नौकायन कब हो इसका निर्णय नदी के उफान या पानी के कम होने पर किया जाता है।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी अमेज़न वर्षा वन के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: अमेज़न नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं।
1: 8800044559 यानी हमारे IVRS नंबर पर, और audio@cieet.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओ, अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम द क्रो।
0: एक प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित है, जिसके द्वारा ये संदेश दिया गया है कि हमें तुरंत किसी की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होना चाहिए, लेकिन तथ्यों की जांच कर लेनी चाहिए और प्रशंसा सच में की जा रही है या नहीं ये भी जांच लेना चाहिए।
2: CIET NCERT presents the series Singing the Poem. Under this series, let us listen to the program The Crow.
3: Hello, children.
4: Hello, ma'am.
5: Hello, ma'am.
3: Hello, hello. How are you all?
4: We are fine, ma'am.
6: I am fine, ma'am.
7: How are you, ma'am?
3: I am good. Thank you so much, Vanya. All right. So, children, today I am going to share something with you. Are you ready?
4: Yes, ma'am.
6: Okay, ma'am.
3: All right. You all know that pets are special members of our family, isn't it?
4: Yes, ma'am.
6: Pets are so lovely.
3: Right, Soham.
8: Ma'am, I have a dog. It loves me so much.
3: Riddhi, that's very good. But how do you know that your dog loves you?
8: Ma'am, when I come back home, it leaps and jumps around me with happiness.
3: Wow, that's good. And what about you, Navya?
9: Ma'am, my dog shakes its tail at me.

0: और एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो
1: दीदी
2: दीदी
1: अरे राजू स्कूल से आ गए तुम।
0: हाँ दीदी।
1: अरे ये तुम्हारे हाथ में इतने सारे फूल कहाँ से आए?
0: दीदी सामने के बगीचे में कुछ फूल लगे थे, मुझे अच्छे लगे तो मैंने तोड़ लिए।
1: ये क्या राजू, कल पड़ोस के माली काका भी तुम्हारी शिकायत कर रहे थे, कह रहे थे कि तुमने उनके बगीचे में लगे पौधे उखाड़ दिए। क्या ये सच है राजू?
0: दीदी वो तो मैंने।
1: राजू पौधों में भी जान होती है, पता है ना तुम्हें?
0: हाँ दीदी ये तो मैंने पढ़ा है, मगर
1: मगर क्या? अच्छा अब इधर आओ, ये देखो दीवार पर लटकी ये तस्वीर, ये तुम्हारे बचपन की है ना?
0: हाँ दीदी ये तस्वीर तब की है जब मैं बहुत छोटा सा था, अब तो मैं कितना बड़ा हो गया हूँ।
1: बिल्कुल ठीक, उसी तरह पौधे भी बढ़ते हैं, हमारी तरह पौधों को भी भोजन और पानी की जरूरत होती है।
0: भोजन और पानी?
1: हाँ राजू। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, एक पौधा लगाओ।
0: हाँ दीदी ये तो बहुत अच्छा रहेगा, कल मैं एक पौधा लगाऊंगा।
1: अरे कल क्यों, आज शाम को जब दादाजी बगीचे में घूमने जाएंगे तो तुम भी उनके साथ जाना पौधा लगाने।
0: ये ठीक है दीदी।

0: अच्छा तो राजू बेटा तुम पौधा लगाना चाहते हो?
1: जी दादाजी।
0: देखो बेटा उसके लिए ये जगह ठीक है, यहाँ अच्छी धूप भी आएगी। चलो बेटा पहले ये कंकड़ पत्थर हटाकर ये जगह साफ कर देते हैं।
1: अब ठीक हो गया।
0: राजू बेटा ये लो खुरपी और इस जगह पर एक छोटा सा गड्ढा खोदो, पर ध्यान रखना कहीं खुरपी हाथ में ना लग जाए।
1: अच्छा दादाजी अभी खोदता हूँ, लाइए खुरपी दीजिए।
0: हाँ ये लो बेटा, इतनी देर में मैं तुम्हारे लिए माली काका से पौधा ले आता हूँ।
1: जी।

0: वाह, ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है।
1: देखा बेटा, ये पौधा माली काका तुम्हारे लिए खुद लेकर आए हैं। क्यों माली काका, मैं सच कह रहा हूँ ना?
2: हाँ राजू बेटा, इस पौधे को गड्ढे में रखकर इसकी जड़ों को मिट्टी से ढक दो और उसमें पानी डाल दो।

0: शाबाश राजू बेटा, शाबाश।
1: मगर ये तो बताओ माली काका, ये कौन सा पौधा है?
2: बेटा ये गेंदे का पौधा है।
1: गेंदे का पौधा?
2: जी।
1: गेंदे का पौधा तो सामने वाले बगीचे में भी है, पर उस पर तो कितने सारे फूल लगे हैं।
2: फूल तो बेटा एक दिन इस पौधे पर भी आएंगे।
0: हाँ राजू बेटा, पर उसके लिए तुम्हें बहुत लगन और मेहनत से इसकी देखभाल करनी होगी।
2: हाँ।
1: देखभाल? वो कैसे?
2: देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें रोज पौधे को पानी देना होगा और कभी कभी खाद भी डालनी होगी।
1: अच्छा।
2: और पौधे के आसपास की उगी हुई जो घास होती है ना, उसको हटाना होगा।
1: ये तो मैं जरूर करूँगा।
2: हाँ तो ठीक है बेटे। अच्छा आज तो अब बस।
0: राजू बेटा
1: जी?
0: अच्छा अब घर चलें?
1: जी धन्यवाद माली काका।
2: अरे बेटा
0: चलो बेटा।
2: जी दे।
1: चलिए दादाजी।

0: जी सुनते हो?
1: हाँ बोलो जी।
0: राजू कहाँ चला गया?
1: राजू कहाँ चला गया?
2: रात को तो यहीं सोया था।
1: अरे हाँ, लगता है बागीचे में गया होगा।
0: पता नहीं लड़के को क्या हो गया है, जब से इसने पौधा लगाया न खाने की चिंता न खेलने की।
1: जब देखो बागीचे में जाकर पौधे की देखभाल में लगा रहता है।
3: देखो दीदी, उस पौधे में कितने सारे फूल लगे हैं।
4: हाँ, कितने सुंदर लग रहे हैं। अच्छा राजू, क्या मैं एक फूल तोड़ लूं?
3: नहीं दीदी, मैंने इतनी मुश्किल से गड्ढा खोदा, पौधा लगाया, खाद डाली और रोज पानी से सींचा, और अब ये फूल आ गए हैं तो आप इसे तोड़ना चाहती हैं? दीदी कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल, आप क्यों तोड़ोगी भला?
4: शाबाश राजू, लगता है तुम समझ गए।
3: हाँ दीदी,
4: मेहनत से लगाए हुए पौधे से अगर कोई एक भी फूल तोड़ ले तो कैसा लगेगा?
3: दीदी ये तो बहुत ही गलत काम है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम एक पौधा राजू का, और अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और

0: राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार हैं व्यास जी मौर्य। आइए इनकी आवाज में सुनते हैं ये भजन, रचना सूरदास की।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं व्यास जी मौर्या के गाए भजन। आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज में आए इनका गाया अगला भजन, रचना कबीर दास की है।

व्यास जी मौर्या के गाए इस भजन के साथ ही लोक संगीत सुगम संगीत का हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सितार वादन। कलाकार हैं पंडित रविंद्र नारायण गोस्वामी। राग मधुवंती। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित रविंद्र नारायण गोस्वामी का सितार पर बजाया राग मधुवंती। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का हमारे ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने वाला है, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन क्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

0: पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमरीका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमरीका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए पहले खोई हुई व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं, उसके बाद हम आपको बताएंगे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। पहले आइए सुन लेते हैं खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं। थाना लालपुर पांडेपुर जनपद कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार शिवा कश्यप, जिनके पिता का नाम है आशीष कश्यप और जो निवासी हैं ग्राम गोईठाहा थाना लालपुर पांडेपुर जनपद कमिश्नरेट वाराणसी के, ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। इनकी आयु है 15 वर्ष, लंबाई 5 फीट 6 इंच, रंग सांवला है। घटना के समय इन्होंने नीला फुल टी शर्ट और नेवी ब्लू पैंट पहना हुआ है। इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें, थाना लालपुर पांडेपुर जनपद कमिश्नरेट वाराणसी। थाना अलीनगर जनपद चंदौली से प्राप्त सूचना के अनुसार जया शर्मा, जिनके पिता का नाम है दिनेश शर्मा, पता है चांदपुर थाना अलीनगर जनपद चंदौली, ये पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। इनकी आयु है 22 वर्ष, लंबाई 4 फुट 10 इंच, रंग गोरा है। घटना के समय इन्होंने पीले रंग का फ्रॉक सूट पहना हुआ है। इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस पते पर सूचित करें, थाना अलीनगर जनपद चंदौली। मोबाइल नंबर 9454401618 और 9454400262। एक और मोबाइल नंबर है 9454403178। तो इनके विषय में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर हमें इन नंबरों पर सूचित करें या थाना अलीनगर जनपद चंदौली से को सूचित करें। इसके साथ ही खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित रविन्द्र नारायण गोस्वामी का सितार वादन। कानून और हम, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10 बजे। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन सुनिएगा रात 9:30 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8 बजे आज के कलाकार होंगे व्यास जी मौर्य। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे और दिनेश कुमार सिंह की बातचीत। विषय होगा जौ का आयुर्वेदिक महत्व। साथ ही किसान भाई आनंद उठा सकेंगे शिव प्रसाद पाल और साथियों के गाए लोकगीत का। इन्हीं के गाए लोकगीत आप दिन में 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुनेंगे।

साथ ही अपने कार्यक्रम युववाणी में शाम 5:15 पर गीत संगीत के साथ ही सुनेंगे आज की बात, मार्गदर्शन यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत सुनिएगा दिन में 2:30 पर। दिन में 1:15 पर बहने अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी में गीत संगीत जाएगा और सेहत ज्ञान के साथ ही सुनेंगे स्मिता केसरी की वार्ता, जिसका विषय होगा डिजिटल संतुलन है जरूरी। श्रोता फिल्म संगीत का आनंद उठा सकेंगे शाम 5:00, शाम 6:10 पर, शाम 7:31 पर रसरंग कार्यक्रम में और रात 8:15 पर रसमाधुरी कार्यक्रम में। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 होने वाले हैं, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: दर्जा 8वीं तक के सभी स्कूलों में फौरी निफास से 31 मई तक गर्मी की तातील का ऐलान किया है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग में नीट यूजी के दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। इम्तिहान के इनेकाद में पूरी ईमानदारी और शफाफियत की जरूरत पर जोर देते हुए जनाब प्रधान ने अहकाम दिए कि गुज़िश्ता इम्तिहान के अमल में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। जनाब प्रधान ने कहा कि दोबारा इम्तिहान सख्त हिफाजती कवानीन के तहत महफूज बगैर किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से मुनक़िद किया जाना चाहिए। मरकजी सानवी तालीमी बोर्ड CBSE ने दर्जा 12वीं बोर्ड इम्तिहान 2026 की जांचशुदा कॉपियों की स्कैन की गई कॉपियों के लिए दरख्वास्त करने की आखिरी तारीख एक दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक अपनी दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। और अमरोहा में गुज़िश्ता रात गजरौला थाना हल्के में दिल्ली लखनऊ शाहराह 9 पर तेज रफ्तार कार को नामालूम गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे हादसे में कार में सवार 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए। मरने वालों में 3 अफराद मगरबी बंगाल के बाशिंदे बताए जा रहे हैं, जबकि एक शख्स बरेली का रहने वाला था। हादसे में जख्मी दोनों अफराद को हायर सेंटर में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। दरियासना एक दीगर हादसे में आज अलग सुबह आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हादसे में एक मुसाफिर जहां भाग हो गया, जबकि 20 दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा तब पेश आया जब रोडवेज बस आगे चल रहे ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश में पीछे से उससे टकरा गई। सभी जख्मियों को सैफई PGI में दाखिल करा दिया गया है। मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। मैंने अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी सुनेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सुनो ना।
8: हाँ?
7: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
8: तो रोका किसने है? हाँ?
7: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
8: मुझसे?
7: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
8: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
7: पर उससे मेरा क्या फायदा?
8: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
7: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
8: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
9: 0542227658।
10: 0542227658।
7: लो अभी फोन लगाता हूँ।
10: 0542227658।
11: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
12: सखियों के साथ,
13: सखियों की बात,
12: सखियों के जज्बात,
14: गृह लक्ष्मी।
15: मौसम गर्म है, मिजाज ठंडा रखिए, ना असर हो हम पर धूप का, संग छाता रखिए।
16: वो छाता सम्मान, बात और व्यवहार का, अरे हमसे भी कुछ राबता रखिए।
15: सखियों, आ गया है समय आपके अपने प्रोग्राम गृहलक्ष्मी का, गीतों गजलों और बातों का सिलसिला रखिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी

0: मी में मैं हूँ कंचन।
1: और मैं हूँ संध्या। नमस्कार
0: नमस्कार,
1: सखियों।
0: कैसी हैं संध्या जी?
1: मैं तो अच्छी हूँ, और आप बताइए कंचन जी कैसी
0: भाई मैं
1: हैं?
0: भी ठीक हूँ। धूप बहुत तेज हो रही है ना?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। और बाहर निकलने से पहले ना अपने वो कवर जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये धूप ना बहुत तेज लग रही है, इससे बचना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल, मैंने कहा ना छाता रखिए और साथ में पानी भी रखिए। खूब पानी पीजिए और पानी वाले फल यानी कि जिसमें खूब रसीले फल, तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, इसका सेवन करिए, है ना?
1: बिल्कुल सही।
0: संध्या जी, शहद जैसी मीठी मीठी बातें तो हम खूब करते हैं, पर क्या आपको पता है मधुमक्खियां यदि ना हों तो हम शहद कहाँ से पाएंगे?
1: बिल्कुल सही कहा। और जानती हैं गंजन, आज विश्व मधुमक्खी दिवस यानी 20 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मूल उद्देश्य जो है ना, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में मधुमक्खियों और अन्य परागकणों के महत्वपूर्ण योगदान, उनके संरक्षण और सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
0: और इस वर्ष का जो विषय है वो ये है कि प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खियां हम सभी का पोषण करती हैं। सखियों, सदियों से मधुमक्खियां जो पृथ्वी पर सबसे मेहनती जीव मानी जाती हैं, मनुष्य, पौधों और पर्यावरण के लाभ के लिए, मतलब इनको लाभ भी पहुंचाती हैं, और पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाकर मधुमक्खियां व अन्य परागणकर्ता न केवल प्रचुर मात्रा में फल, मेवा और बीज पैदा करते हैं, बल्कि उनकी विविधता और गुणवत्ता में भी सुधार लाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और इसीलिए कहते हैं ना पर्यावरण में इसका महत्व भी बहुत है ना, तो हमारे सखियों से यही कहना है कि जो मधुमक्खियाँ लगाती हैं छत्ते ना, इसको हमें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जो होते हैं ना, तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब मधुमक्खियाँ अपना छत्ता छोड़ के चली जाएँ तभी हमें उसके रस को निकालना चाहिए, जिससे उन्हें किसी तरह की भी कोई हानि ना पहुँचे।
0: और बहुत सारे जो मधुमक्खी पालन जहाँ पर होता है, जहाँ पर उनके अन्य लाभ के बारे में लोगों को बताया जाए ताकि अन्य लोग भी, एक तरह का ये व्यवसाय है, तो इससे जुड़ें और अधिक मात्रा में मधुमक्खी पालन व अन्य जो परागकर्ता, जो इस तरह के कीट हैं, उनका भी संवर्धन हो सके, और जिस तरह से इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है, इसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए और लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। अधिकतर संध्या जी देखा जाता है कि कृषि से जुड़े हुए लोग इसके महत्व के बारे में अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह से उनकी खेती विकसित हो सकती है और किस तरह से वो इनसे जुड़े हुए व्यवसाय को अच्छी तरह से कर सकते हैं, है ना?
1: ना बिल्कुल सही है। और वैसे शहरों में भी आजकल जो है मधुमक्खी पालन का जो है बहुत अच्छा चल गया है, लोग जो है उस सिस्टम को समझ रहे हैं और अपने छोटी सी जगह में मधुमक्खी पालन का जो है व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। एक तो उन्हें रोजगार भी मिल रहा है, और इसके साथ साथ जो हमें शहद की आवश्यकता पड़ती है आयुर्वेदिक दवाइयों वगैरह के लिए, इसमें भी पूरा हमारा सहयोग हो रहा है।
0: भाई शहद तो एक तरह से एक आयुर्वेदिक औषधि भी है, और आज के समय में हमारे स्वाद में भी पूरी तरह से अपना योगदान दे रही है। लोग चीनी को एक तरह से थोड़ा सा दूर कर रहे हैं और शहद को अपना रहे हैं, चाहे वो उनका सुबह सुबह का पानी हो या अन्य खाने पीने की चीज़ें हों, उसमें भी वो शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई शहद की महत्ता के लिए आपको मधुमक्खी की महत्ता को भी समझना होगा। और सखियों, अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो थोड़ी सी जानकारी अच्छे से इकट्ठा करें और इससे जुड़े हुए व्यवसाय भी कर सकते हैं और लोगों को इससे जोड़ भी सकते हैं, है ना संध्या जी?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा।
0: अभी फिलहाल सखियां इंतजार कर रही हैं हमारे गीत का, तो चलिए सखियों को सुनवाते हैं ये गीत।

0: मक्खियां तो बहुत सारी बातें करती हैं, पलकों के पीछे हो पलकों के सामने हो, भाई मक्खियां बातें तो करती ही हैं, लेकिन आज के युग में सब कुछ देखा जाए तो डिजिटल हो गया है ना संध्या जी?
1: बिल्कुल सही कहा।
0: चाहे हमारी खरीदारी हो, हमारी बातें हो, मुलाकातें हो, ये सब कुछ। तो आइए सुनवाते हैं आपको इसी से संबंधित एक वार्ता। वार्ता का विषय है डिजिटल संतुलन है जरूरी। वार्ताकार हैं स्मिता केशरी।
2: आज का युग डिजिटल का है। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन क्या हम इन्हें चला रहे हैं या ये हमें? नमस्कार दोस्तों, मैं स्मिता केशरी चर्चा करूंगी आज के हमारे विषय पे, जिसका नाम है डिजिटल संतुलन है जरूरी। आज के समय में सुबह आंख खुलते ही लोग पहले सूरज नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन देखते हैं। मैंने तो यह भी देखा है कि कुछ लोग आंख खोलने पर समय भी घड़ी ना देखकर मोबाइल में देखते हैं, और कुछ लोग मोबाइल के अलार्म से ही जगते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि अगर 5 मिनट भी मोबाइल ना मिले तो पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं।

यह अब लोगों की आदत बन चुका है। बच्चे हो या बड़े, सबके हाथ में मोबाइल फोन ही दिखाई देता है। पहले के लोग खाली समय में किताबें पढ़ते थे, परिवार से बातें करते थे, साथ खेलते थे, गाते थे, सिलाई कढ़ाई बुनाई सीखते थे। पर अब लोग साथ बैठते तो हैं, पर सबके हाथ में फोन होता है और सभी स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं। डिजिटल तकनीक ने हमारे जीवन को आसान तो बनाया है, पर कठिनाई भी लाई है। जहां इसके कई फायदे हैं, वहीं इसके नुकसान भी कम नहीं हैं। इसलिए डिजिटल संतुलन यानी इस तकनीक का सही और सीमित उपयोग बहुत ज़रूरी है। डिजिटल दुनिया का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि पढ़ाई हो चाहे नौकरी, खरीदारी हो या बैंकिंग या कोई मनोरंजन, सब कुछ मोबाइल और इंटरनेट के ज़रिए होता है। अगर किसी को भूख लगी हो तो ऐप से ऑर्डर कर दो, अगर कहीं जाना हो तो ऑनलाइन टिकट बुक कर दो, अगर पैसे भेजने हो तो UPI कर दो। आजकल बिजली का बिल जमा करने से लेकर स्कूल की फीस तक सब कुछ ऑनलाइन भुगतान होता है। तो हालत यह हो गई है कि लोग पड़ोसी का नाम भूल भी जाएं, पर अपनी मोबाइल का पासवर्ड और वाईफाई का पासवर्ड कभी नहीं भूलते। डिजिटल दुनिया ने इंसान को बहुत तेज बना दिया है। अब घंटों का काम मिनटों में हो जाता है, पर साथ साथ लोगों का धैर्य भी खत्म हो गया है। अगर इंटरनेट 2 सेकंड धीरे से चले तो लोग गुस्सा होने लगते हैं। कुछ लोग तो गुस्से में मोबाइल तक पटक देते हैं। हालांकि इसके कई फायदे भी हैं। डिजिटल तकनीक से पढ़ाई आसान हो गई है। पहले छात्रों को किसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लाइब्रेरी जाकर घंटों बुक में लगे रहना पड़ता था, पर अब मोबाइल पर ही मिल जाता है। ऑनलाइन क्लास और वीडियो लेक्चर से पढ़ाई बहुत ही आसान हो गई है। सभी स्कूल छुट्टियों में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करते हैं। पहले दूर रहने वाले रिश्तेदारों से हम चिट्ठियों से बात करते थे, जब आने में कई दिन लग जाते थे, पर अब हम वीडियो कॉल से उनसे आसानी से बात भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। इससे उनका हालचाल भी मिलता है और समय की भी बचत होती है। मेडिकल और वैज्ञानिक क्षेत्र में भी यह अनेकों काम करता है। देश की तरक्की में डिजिटल युग का, डिजिटल टूल का बहुत बड़ा योगदान है। किंतु समस्या तब शुरू होती है जब हम इसका दुरुपयोग शुरू कर देते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट, आज बैंक जाने की ज़रूरत कम हो गई है। लोग घर बैठे कहीं भी पैसे भेज सकते हैं। UPI ने हमारी ज़िंदगी आसान कर दी है। आज चाहे सब्जी वाला हो या चाय वाला हो, यहाँ तक कि गोलगप्पे वाला भी कहता है, भैया QR स्कैन कर लो। अब तो लोग पूजा की दक्षिणा हो या मंदिर में चढ़ावा, सब कुछ ऑनलाइन ही देते हैं। हाँ, मोबाइल से हमारा मनोरंजन भी बहुत आसान हो गया है। मोबाइल ने मनोरंजन को बहुत आसान बना दिया है। लोग अब चाहे जहाँ भी हो, अगर वहाँ इंटरनेट है तो वो गाने भी सुन सकते हैं, फिल्म भी देख सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं। डिजिटल तकनीक के फायदों के साथ इसके नुकसान भी बहुत हैं। जहाँ डिजिटल तकनीक से हमें फायदे हैं, वहीं नुकसान भी कम नहीं हैं। समय की बर्बादी, मोबाइल का सबसे बड़ा नुकसान समय की बर्बादी है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ 5 मिनट में मोबाइल चलाएंगे, लेकिन देखते ही देखते घंटों निकल जाते हैं।
रील्स की दुनिया

और भी खतरनाक है। एक वीडियो खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। इससे रात में नींद भी कम आती है और आंखों पर भी जोर पड़ता है। स्क्रीन स्क्रॉल करते करते पूरी रात निकल जाती है। इसका हमारी स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। कई लोगों को सुबह उठते ही सिर दर्द की भी शिकायत होने लगती है। हर वक्त मैसेज और नोटिफिकेशन चेक करने की आदत से दिमागी स्ट्रेस बढ़ता है। इतना ही नहीं, धीरे धीरे लोग समाज से भी कटने लगते हैं। पहले परिवार साथ बैठकर बातें करता था, आज लोग या परिवार साथ बैठते तो हैं पर अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इससे रिश्तों में दूरी साफ दिखता है, एक दूसरे के प्रति स्नेह नहीं दिखता। इस मोबाइल से आजकल ज्यादातर प्रभावित हमारे छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं। आजकल के माता पिता अपना समय बचाने के लिए और अपनी खुद की सुविधा के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। यहाँ तक कि गृह कार्य भी माता पिता बच्चों को फोन से करने को कहते हैं। उनके खुद के पास बच्चों के लिए समय नहीं होता। पहले बच्चों को भोजन, कहानियां सुनाकर या प्राकृतिक चीजें दिखाकर खिलाई जाती थी और अब बच्चे मुंह में निवाला भी तभी डालते हैं जब मोबाइल देखते हैं। बड़ों में हर समय सोशल मीडिया की चाह बनी रहती है। लोग हर वक्त दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को दुखी समझने लगते हैं। हर किसी की फोटो परफेक्ट दिखती है, हर कोई खुश दिखाई देता है। उन्हें हर चीज चाहिए और परफेक्ट चाहिए, जिससे लोगों के अंदर नकारात्मक विचार भी जन्म लेता है। आजकल लोग लाइक और फॉलोअर्स को ही खुशी समझने लगे हैं। अगर किसी पोस्ट पर कम लाइक आए तो ऐसे दुखी हो जाते हैं जैसे परीक्षा में फेल हो गए हों। सोशल मीडिया लोगों को जोड़ता भी है और रिश्तों को तोड़ता भी है। आजकल की दोस्ती भी लाइक और शेयर से ही बनती है। इसलिए डिजिटल संतुलन बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब है तकनीक का सीमित एवं सही उपयोग। मानते हैं आज के युग में मोबाइल जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी हमारी असल जिंदगी है। अगर इंसान पूरे दिन स्क्रीन में लगा रहेगा तो वह जीवन के बहुत सारे अच्छे पल गवा देगा। परिवार हो चाहे सच्चे दोस्त, हंसी खुशी बच्चे, ये सब ऐप पर नहीं मिलता। डिजिटल संतुलन कैसे बनाएं? पहला, सबसे पहले स्क्रीन टाइम कम कर दें। मोबाइल का उपयोग सीमित कर दें। परिवार को समय दें। परिवार के साथ बैठें, बातें करें, जिससे भावात्मक लगाव बढ़े। सोने से पहले मोबाइल न चलाएं, इससे नींद अच्छी आएगी। खेल कूद करें, घर के बाहर या अंदर नए नए खेल खेलें। इससे शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहेगा। किताबें पढ़ें, इससे आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा और ज्ञान भी प्राप्त होगा। कभी कभी मोबाइल से ब्रेक लें, जिसे हम डिजिटल डिटॉक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें हम एक पूरा दिन बिना सोशल मीडिया के बिताते हैं। शुरुआत में थोड़ी कठिनाई जरूर होगी, पर धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। डिजिटल दुनिया ने जीवन आसान जरूर बना दिया है, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा उपयोग नुकसानदायक है। हमें इसका उपयोग समझदारी से करना चाहिए। हमें बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि मोबाइल जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी स्वास्थ्य और परिवार की खुशी है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि तकनीक का प्रयोग कीजिए, लेकिन खुद को इसका गुलाम मत बनाइए, क्योंकि

0: असली जिंदगी और खुशी मोबाइल के स्क्रीन में नहीं बल्कि अपने लोगों के साथ बिताए पलों में होती है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे वार्ता, विषय था डिजिटल संतुलन है जरूरी। वार्ताकार थी स्मिता केसरी। तो कंचन देखिए कितना अच्छा इन्होंने बताया हम लोगों को ना, हमारी सखियों को डिजिटल के विषय में ना।
2: बिल्कुल भाई, आजकल हर कोई जो है वो अपना ज़्यादातर समय मोबाइल में और स्मार्टफोन में और टीवी में बिता रहा है। परिवार के लिए तो उनके पास समय ही नहीं है। तो सखियों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने परिवार को और प्रकृति को भी समय दें, क्योंकि अगर हम प्रकृति को समय देंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे और उन्हें समय समय पर पानी देंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तभी प्रकृति हमारा भी ध्यान रखेगी। और

0: उनका ध्यान रखेंगे तभी प्रकृति हमारा भी ध्यान रखेगी। और इसी तरह परिवार के साथ भी है, हम अगर परिवार में समय देते हैं तो परिवार भी हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा।
1: बिल्कुल सही कहा। और बात जब कंचन दिवस की हो रही हो ना, और वो भी प्रकृति से जुड़ी हुई हो, तो जानते हैं आज प्रकृति से जुड़े हुए हमारे सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म दिवस भी है।
0: बिल्कुल
1: और हिंदी साहित्य के छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत जी को माना जाता है। इनका जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कौसानी में हुआ था। और इनके बचपन का नाम जो है ना, गोसाई दत्त था। पंत जी प्रकृति प्रेमी रहे और इन्होंने प्रकृति का अत्यंत जो है ना सुंदर और जीवंत वर्णन किया है। इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है ना, वीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या और चिदंबरा प्रमुख रचनाएं रही हैं। उन्हें साहित्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
0: बिल्कुल
1: इनकी जयंती पर आज भी उत्तराखंड के कौसानी और अल्मोड़ा में उनके पैतृक घर और पार्कों में विशेष कार्यक्रम और काव्य गोष्ठी आयोजित की जाती है। इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी माना जाता है।
0: हाँ, आपने तो बहुत सारी बातें बताई, लेकिन एक चीज़ और भी है। जब ये इन्होंने कविता शुरू की थी करना, तो शुरुआती दौर में उन्होंने बागेश्वर के मेले में वकीलों के धन लोलुप स्वभाव व तंबाकुओं का धुंध जैसे छुटपुट कविताएं लिखीं। और शुरुआत में जब ये वहाँ पर इसको बोलने लगे तो कुछ कम लोगों ने ही इन्हें सुनने की चाह रखी, लेकिन धीरे धीरे जब जैसे जैसे इनका जो स्वर है वो उच्च होता गया और बहुत ही शुद्ध करण के साथ और विश्वास के साथ ही अपनी कविताएं कहने लगे, तो एक तरफा भीड़ इकट्ठा होने लगी और लोग बहुत ज्यादा रुचि दिखाने लगे, इनकी कविताओं को सुनने लगे। और जैसे ही एक कविता खत्म होती, लोगों का उत्साह इतना था कि लोग बार बार उनसे दूसरी कविता के लिए कहते कि आप दूसरी कविता सुनाइए, या उसी को रिपीट सुनाने के लिए लोगों का प्रस्ताव आते जा रहा था।
1: जी, बिल्कुल सही।
0: तो जैसा आपने बताया कि इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और साथ ही पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, तो ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे इनकी अथाह जो मेहनत है, जो लगन है, वो दिखाई देती है ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: और जब ये पहाड़ पे ये रहे हैं, जैसा
1: जी
0: कि जहाँ पे इनका घर था, तो वो जो जीवन यापन उन्होंने वहाँ पे किया वो भी इनके लिए बहुत अच्छा रहा है। वहाँ पे भी बिल्कुल रम से गए थे और वहाँ की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनसे इतना प्रेम था कि उसी के विषय में उन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया और बहुत सारी कविताएं इनकी प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, है ना?
1: बिल्कुल सही है। अल्मोड़ा में रहे और उनकी जो है पढ़ाई हमारे वाराणसी में भी हुई है, क्वींस
0: हाँ
1: कॉलेज में उन्होंने यहाँ भी शिक्षा ली थी। और ये दोनों ही चीज़ें मिला के उन्होंने जो कविताएं लिखी ना, उनका बहुत ही सुंदर स्वरूप था।
0: तो भाई आज इनकी जयंती पर इन्हें शत शत नमन है। और संध्या जी, आज कुछ विशेष भी है ना हमारी सखियों के लिए, यानी कि मैं जायके की बात कर रही हूँ भाई।
1: बिल्कुल सही कहा कंचन जी आपने। और आज हम अपनी सखियों को बताते हैं ना कि अफगानी सोया चाप कैसे बनाया जाता है। इसके लिए जो है सबसे पहले हम लोग सोया बड़ी, मैदा, आरा रोट, तलने के लिए तेल, नमक, प्याज, शिमला मिर्च, दही और लहसुन, अदरक, मिर्च का पेस्ट, काजू का पेस्ट और फ्रेश क्रीम, नींबू का रस, जीरा, काला नमक और चाट मसाला, साथ में कसूरी मेथी भी लेते हैं।
0: तो भाई ये सारी चीज़ें तो हम इसके ग्रेवी के लिए ले सकते हैं, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा।
0: आजकल बाजार में बहुत तरह के सोया चाप उपलब्ध हैं, रेडीमेड उपलब्ध हैं। अगर आप इसे घर पे बनाना चाहती हैं तो आप सोयाबीन घर में ला करके, यानी कि जो सोयाबीन वाले बीज वाले होते हैं उसको ला करके, उसको सफाई से धुल करके, और मुझे लगता है कि एक बार ही गर्म पानी में डाल करके हल्का बॉयल करते हैं और उसके बाद सूखने के बाद उसे पीस लेते हैं, है ना?
1: बिल्कुल सही बताया आपने।
0: हाँ,
1: उसमें
0: तो
1: हल्का सा नमक डाल देते हैं ना, जिससे वो मुलायम हो जाता है। और उसके बाद वो ठंडा करके फिर उसको एकदम हम लोग कस के गार लेते हैं, जिससे उसका सारा पानी निकल जाए। उसके बाद मिक्सी में जो है हम उसको पीस लेते हैं। पीस के जो है उसका पाउडर जैसा बन जाता है थोड़ा सा, और उसी में फिर हम आरा रोट या मैदा जो भी आपके पास उपलब्ध हो ना उसको मिला लेते हैं। और इसमें पानी नहीं डालते, इसको ऐसे ही सूखा सूखा ही मलते हैं, क्योंकि उसमें नमी रहती है ना
0: हाँ, वो
1: सोयाबीन
0: गुथ
1: में। जाता है। हाँ, तो वो गुथ जाता है, और गुथने के बाद उसको जो है हम बेलन से बेल लेते हैं आसानी से, और फिर
0: स्टिक्स में कट कर लेंगे।
1: हाँ, स्टिक में कट के और लकड़ी वाले चम्मच में ना हम लोग एक के ऊपर एक जो है ना थोड़ा सा ओवरलैप करते हुए एक दूसरे पर उसको जो है उसी में लपेट देते हैं, और उसके बाद उसको

0: 3-4 घंटे के लिए हम लोग फ्रिज में रख देते हैं। इस तरह से जो है ना हमारा चाप तैयार हो जाता है। और फिर ग्रेवी के लिए जो है ना हम दही और उसमें सारे मसाले डालकर उसको तेल में फ्राई कर देते हैं, और थोड़ा सा प्याज और शिमला मिर्च है ना इसको भी फ्राई करके उसमें हम लोग मिला लेते
1: और हमने जो ग्रेवी रेडी की
0: हैं।
1: है उसमें हम उसको
0: हाँ
1: कट
0: बिल्कुल,
1: करके पीसेस में डाल
0: हाँ
1: देते हैं,
0: हाँ
1: ये टेस्ट भी बहुत अच्छा करता है।
0: हाँ
1: और भाई नमक डालना तो बहुत जरूरी है,
0: बहुत
1: स्वाद
0: जरूरी
1: अनुसार
0: है।
1: नमक डालिए और गर्मा गर्म बनाइए और अपने परिवार में सबको खिलाइए,
0: हाँ
1: है ना।
0: बिल्कुल सही कहा। और देख रही है ना आजकल जो स्मार्ट जमाना चल गया है ना, तो इसमें जो हम लोगों को सारी चीजें मिल जाती हैं उपलब्ध, लेकिन हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए ना, क्योंकि स्मार्ट शॉपिंग भी बहुत जरूरी है ना,
1: हाँ,
0: तो
1: हम कोई
0: ऐसा
1: भी
0: ना हो कि
1: चीज
0: हम लोग
1: अगर
0: कुछ हो जाए।
1: खरीद रहे हैं तो हमें ये कंपेयर कर लेना है कि और जगहों पर वो कितने का मिल रहा है और अच्छा है या नहीं। इन सब चीजों के बारे में सोच समझ करके ही शॉपिंग करना बहुत जरूरी है, और अपने पैसों के बारे में विशेष रूप से सोचें कि हमारे पैसे कहीं फंसे ना, है ना संध्या जी।
0: बिल्कुल सही।
1: अभी तो फिलहाल घड़ी हमसे ये कह रही है कि हमें अपनी सखियों से अनुमति लेनी चाहिए और उन्हें कहना चाहिए नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: सखियों के साथ,
3: सखियों के बाद,
2: सखियों के जज्बात,
3: गृह लक्ष्मी।
4: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रही हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार हैं शिव प्रसाद पाल और साथी। तो सबसे पहले इनके स्वर में आइए सुनते हैं खेमटा।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं शिव प्रसाद पाल और साथियों के स्वर में गाए लोकगीत। इनके स्वर में अभी आप सुन रहे थे खेमटा। अब आइए सुनते हैं इनका गाया पचरा गीत।

0: Defense Minister terms it a strategic milestone. Supreme Court rejects petition challenging center's decision to undertake caste enumeration. Severe heatwave grips north and central India. Temperature breaches 44 degree mark at several places. And in IPL cricket, host Kolkata Knight Riders to take on Mumbai Indians at Eden Gardens. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम MP3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा, राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया

0: रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास डीआरडीओ की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तरकन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद GDP में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है।

0: दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के सातवें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा 42 से 46 डिग्री वहीं रात का तापमान 46 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित रखने, जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ छाया और पेयजल का प्रबंध करने को कहा गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24 अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण

0: रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यूएलपीजीएम V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।
2: दोस्ती जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता। परिवार तो हम खुद नहीं चुनते और जीवन साथी के लिए भी कई बार हमने सुना है कि जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं। बचा एक रिश्ता दोस्ती का, जो हम खुद चुनते हैं। तो इसी दोस्ती के रिश्ते पर आज हम करेंगे कुछ बातें और सुनेंगे कुछ गीत भी, हमारे कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में, जिसे लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त स्नेहा सिंह।

पता है, जरूरी है कि हम ऐसे दोस्त चुनें जो हमारे लिए सही हो। हमारे दोस्त कितने हैं वो मायने नहीं रखता, पर कैसे हैं ये जरूर मायने रखता है। एक पुरानी कहावत सुनी होगी आपने कि नकली दोस्त से दुश्मन बेहतर होता है। तो पता करिए कि कौन हमारे सच्चे और कौन सिर्फ दिखावे के दोस्त हैं।

दोस्ती का मतलब ना ये नहीं होता कि आप कितना घूमते फिरते हैं, कितना मौज मस्ती करते हैं, पर सच्चे दोस्त ना वो होते हैं जो भले ही आपसे ज्यादा मिल नहीं पाते पर फिर भी सबसे ज्यादा आपको समझते हैं, जो हर वक्त आपका साथ देते हैं और जिनसे कितना भी समय गुजर जाए बात किए बिना पर आपके रिश्ते की मजबूती कभी नहीं बदलती।

आपके सामने आपकी तारीफ करने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर आपके पीठ पीछे तारीफ करने वाले सिर्फ आपके सच्चे दोस्त होते हैं। लेकिन सच्चे दोस्त आपके महत्वाकांक्षा को, आपके काम को, आपके हालात को इज्जत देते हैं और अलग होने के बावजूद भी आपको अपना सा महसूस करवाते हैं। वही नकली दोस्त आपसे इसलिए अलग हो जाते हैं क्योंकि आप उनको उनके जैसे नहीं लगते।

कहते हैं दोस्त ऐसा हो जो हर वक्त आपका साथ दे। आप अच्छे काम करें या बुरे, वो आपका पूरा साथ दे। पर क्या सच्ची में ये सच्ची दोस्ती है? क्या आप अपने दोस्त का साथ देंगे ये जानते हुए कि वो गलत है? क्या ये दोस्ती सच में सच्ची कहलाएगी? नहीं, जो आपके सच्चे दोस्त होते हैं ना, वो आपको कभी गलत करने नहीं देते। तो ध्यान रखें और इन बातों से समझें कि कौन है आपके सच्चे दोस्त।

और कौन है आपके नकली दोस्त। देखिए अब बातें तो हमारी खत्म होती नहीं है, लेकिन कुछ बातें कुछ गीत का ये संगीतमय सफर हमें यही समाप्त करना होगा इस अंतिम गीत के साथ। तो दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त स्नेहा सिंह को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप

डीटीएच और वेव्स ओटीटी पर यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। दिन के 3 बज चुके हैं। आज की ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। सायंकालीन सभा के साथ शाम 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, वेव्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गाना है फिल्म दिल का रिश्ता से। इस गीत को गाया है कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण ने। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत है नदीम श्रवण का।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिल से, इस फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने, संगीत है ए आर रहमान का।

इसी गीत के साथ हमारा फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। हमारे युवा साथी अपना कार्यक्रम सुने युववाणी।

0: दोस्तों, कभी कभी प्रकृति हमें बिना कुछ कहे और बिना कुछ बताए बहुत कुछ सिखा भी जाती है और बहुत सारे संकेत हमें दे जाती है।
1: बिल्कुल, प्रकृति का हर हिस्सा अपने भीतर एक संदेश समेटे होता है, चाहे वह पेड़ों की हरियाली हो, पक्षियों की चहचहाहट या फिर मधुमक्खियों की निरंतर मेहनत।
0: और जब हम इन छोटी छोटी बातों को महसूस करते हैं तो जीवन और प्रकृति के बीच का संबंध और भी गहरा हमें लगने लगता है।
1: और इन्हीं सुंदर विचारों के साथ आप सभी को मेरा यानी स्मृति का
0: और मेरा यानी नेहा का
1: नमस्कार।
0: आप सुन रहे हैं आप सभी का मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। और चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी वही सुकून वाली वाइब म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज
1: तो दोस्तों चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि आज के दिन में विशेष क्या है। तो दोस्तों आज के दिन को अगर मैं हम लेकर के चले तो भाई आज का दिन वाकई हनी बीज यानी कि मधुमक्खियों के लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज मनाया जाता है वर्ल्ड बी डे यानी विश्व मधुमक्खी दिवस। यह दिन मधुमक्खियों और पर्यावरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है।
2: मधुमक्खियां केवल शहद बनाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे फसलों के परागण और जैव विविधता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
1: दोस्तों

0: विशेषज्ञों के अनुसार प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मधुमक्खियों की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। इसलिए हमें पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहते हुए इन मधुमक्खियों की अहमियत को समझना चाहिए।
1: हाँ, और दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के उस महान कवि की जिन्होंने अपनी लेखनी से शब्दों को भावनाओं की एक नई पहचान दी।
0: तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में, जिनकी आज जयंती है। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में माने जाते हैं।
1: उनकी रचनाएं केवल साहित्य तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि उन्होंने पाठकों को सोचने, महसूस करने और जीवन को सुंदर दृष्टि से देखने की प्रेरणा भी दी।
0: दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में प्रकृति का बहुत सुंदर और गहरा चित्रण मिलता है। उन्हें हिंदी साहित्य में प्रकृति प्रेमी कवियों में भी गिना जाता है। उन्होंने पहाड़, पेड़, फूल, बादल, हवा और प्रकृति की सुंदरता को अपनी कविताओं में बहुत भावपूर्ण तरीके से लिखा है। उनकी रचनाओं में प्रकृति केवल दृश्य नहीं होती, बल्कि भावनाओं और जीवन से जुड़ी हुई दिखाई देती है।
1: इसी कारण हिंदी साहित्य में उनका योगदान आज भी अत्यंत सम्मान और आदर के साथ याद किया जाता है। तो दोस्तों
0: अब हम आपको बता दें कि जैसा कि हमारे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने वाले हैं, और ये वाकई अपने में बहुत ही विशेष बात है और बहुत ही खास बात है, और इसे वाकई एक पर्व की तरह हम मना रहे हैं। और इसी उपलक्ष्य में हमने अपने बनारस में BHU के छात्रों से कुछ बातचीत की है। अब चलिए जान लेते हैं कि वो बातचीत हमने क्या की है और हमारे साथियों ने क्या बातचीत कर हमें सुनाने के लिए यहाँ पर लाया है।
2: एक आवाज जो बिना स्क्रीन के, बिना नोटिफिकेशन के, बिना एल्गोरिदम के, इसने पूरे देश को एक साथ जोड़ा। आज उस आवाज को 90 साल होने को है। 90 बरस का ये सफर आसान नहीं रहा, लेकिन ये आवाज आज भी इस बदलते दौर में अपना अस्तित्व बरकरार रखे हुए है।
3: और उस आवाज की कहानी जो आज भी जीती है, जो आज भी गूंजती है, यानी आकाशवाणी।

0: तो 90 वर्षों को समर्पित हमारी आज की इस खास पेशकश का हिस्सा आप भी बनिए हमारे साथ। आपके साथ मैं हूँ मोनिशा
1: और मैं देवा मारू।
0: नमस्कार। तारीख थी 23 जुलाई 1927 जब हमारे देश में पहली बार एक रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से।
1: उस वक्त न स्मार्टफोन था और न ही टेलीविजन, बस एक अखबार था लेकिन वो भी अगले दिन आता था, लेकिन रेडियो वो था जो अभी भी बोलता था इसी लम्हे में।
0: फिर 1936 में नाम बदला ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में मिली एक नई पहचान आकाशवाणी,
1: यानी आकाश की वाणी, आसमान से उतरती आवाज, जो सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक वादा था देश की आजादी की लड़ाई में, बाढ़ में, अकाल में, युद्ध में रेडियो ने सबसे पहले खबर पहुंचाई।
0: घर घर में एक छोटा सा काला डिब्बा रखा होता था और पूरा परिवार उसके सामने बैठता था, जैसे आज हम फोन लेकर बैठते हैं। तो साथियों, आगामी 8 जून 2026 को हमारी आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि तब से अब तक क्या बदला और क्या नहीं बदला।
1: लेकिन सवाल है तो यकीनन जवाब भी होंगे। वही जवाब लेकर हम हाजिर हैं अपने कुछ साथियों के साथ और वक्त है अब आपके साथ इसे साझा करने का।
2: अपना परिचय दीजिए।
3: मेरा नाम रंजीत कुमार राय है और मैं पत्रकारिता विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोध छात्र हूँ।
2: आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे होने को आ गए हैं, तो बहुत बेसिक सा सवाल मेरा रहेगा कि क्या आपने कभी भी रेडियो सुना है?
3: जी, रेडियो सुना है और रेडियो सुनते हुए हम लोग बड़े हुए हैं। अपने घरों में या अपने आसपास रेडियो सुनना, जब हम बचपन में रहते थे तो रेडियो सुनना हमारी पहली प्राथमिकता होती थी। जब विविध भारती पे गाने बजते थे या दोपहर के समय उसमें सीरियल्स के भी टेलीकास्ट आते थे तो वो सुनना, और शिक्षा से जुड़ी हुई प्रोग्राम जब आते थे तो वो हम लोग की प्राथमिकता में होता था।
2: अच्छा, कोई ऐसा खास कार्यक्रम जो आज भी याद हो?
3: मुझे तो मूलतः, जैसे मेरे बड़े पिताजी अक्सर एक रेडियो कैरी करके चलते थे, वो यूपी पुलिस में रहे हैं और जब भी यूपी से

0: ड्यूटी के लिए आते थे तो वो एक रेडियो लेकर रखते थे और दिन भर जैसे गांव में बिहार में आप जानते होंगे खलियान होता है तो खलियान पे काम करने के दौरान रेडियो को एक ऊंचे जगह पर रख देते थे और गाना बजता था उसमें जैसे पुराने पुराने गाने वो गाने और हम लोग उसी दौरान गर्मियों की छुट्टी में अपने जाते थे हम भी यूपी से पढ़ाई किए हैं तो वो उस टाइम पे हम लोग अक्सर वहां रहना पसंद करते थे क्योंकि रेडियो पे गाने बजते रहते थे और वो ऐसे गाने जो गाने आप कहीं और नहीं सुन सकते हैं वो रेडियो के कलेक्शन में बहुत आसानी से मिलता है और बहुत मधुर होता है सुनने में जिसे आप हमेशा और हर प्रकार से सुन सकते हैं। तो वो एक बचपन की ऐसी याद है जो अभी भी हम लोगों के जहन में है कि रेडियो हम लोग के इतना करीब रहा है।
1: जैसे कि आज इंटरनेट का दौर है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां हम आसानी से गाने सुन सकते हैं, न्यू FM प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इस टाइम पे भी क्या आपको लगता है कि रेडियो उतना ही रेलिवेंट है जैसे पहले था? क्या उसमें और आज में जो डिफरेंस आ गया उसको आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, जब बात विश्वसनीयता की आती है तो हम रेडियो, आकाशवाणी या दूरदर्शन को प्रेफर करते हैं। रेडियो आज भी या आकाशवाणी जो है, ऑल इंडिया रेडियो है, विश्वसनीयता को अपने बनाया हुआ है और खबरें स्पष्टीकरण होने के बाद, पुष्टि होने के बाद ही वहां चलती है, यह विश्वास उसके साथ बना हुआ है। आज भी बदलते दौर के साथ कुछ चीजें अच्छी भी हैं, लेकिन रील्स कल्चर में जहां सिर्फ हर आदमी का एक जो रील्स कंटेंट क्रिएटर है उसका यही उद्देश्य है कि आप कुछ सेकंड के लिए उसके रील्स पे रुक जाएं। इस दौर में जब हम लोग रेडियो सुनते हैं बचपन के दौर में और उसे विजुअलाइज करते हैं कि वो एक ऐसा समय था जब हमारे सामने कोई फिल्म या पिक्चर नहीं होता था, लेकिन वो सिर्फ सुन के हम लोग जहन में यह कर पाते थे इमेजिनेशन कि यह स्टोरी हो रही होगी, या सामने वाला उसमें सीरियल्स भी दिखाता था कि एक कोई प्रेमी युगल है वो आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी बातों के अंदर जो भावना है वो हम उसे फील कर रहे थे। और आज के रील्स कल्चर में वर्तमान में हम भले वीडियो देख पा रहे हैं पर वो आपको फील नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं रेडियो हमारे लिए जहन में जो बचपन से हम लोग देखा आया है और आज भी हमारे लिए उसका महत्व वैसा ही है।
1: तो अगर आप सजेशन देना चाहेंगे कि ऐसा क्या करे कि जो युवा है उनसे रेडियो और जुड़ सके?
0: एक तो है कि रेडियो से हम दूर हो सकते हैं लेकिन रेडियो हमसे दूर नहीं है क्योंकि हमारे मोबाइल में सबके, आज हम स्मार्टफोन लेके चल रहे हैं और सबके फोन में रेडियो है। हाँ, रेडियो को ये कर सकते हैं कि यूथ कैसे कनेक्ट हो ज्यादा से ज्यादा, जैसे अगर आकाशवाणी को युवाओं को जोड़ने के लिए कोई कार्यक्रम प्रसारित करना है या कुछ नए कार्यक्रम बनाने हैं या एपिसोड बनाना है तो मेरा सजेशन रहेगा जैसे हम बनारस के घाटों पे कह सकते हैं कि घाट पे एक पूरी दुनिया बसती है, हर वर्ग के, हर समुदाय और हर राज्यों से लोग आते हैं, तो आकाशवाणी ये कार्यक्रम बना सकता है घाट कलाकार के नाम से। हम लोग युवाओं के लिए कुछ जो उनके कैरियर ओरिएंटेड कार्यक्रम लेके आ सकते हैं, जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होती है उसके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो इस मामले में रेडियो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि कम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं या मॉक टेस्ट होते हैं वो रेडियो पे भी अगर आए तो यूथ कनेक्ट हो सकता है।
1: और हमारे युवा को आप क्या कहना चाहेंगे वो रेडियो से जुड़े, और जुड़े तो क्यों जुड़े, खासकर आकाशवाणी से?
0: हर युवा को रेडियो को जीवन में जरूर सुनना चाहिए क्योंकि ये एक मीडिया का एक ऐसा साधन है जिसे हम शुरू से देखते आए हैं और हमेशा भरोसा और विश्वासमंद रहा है, जो अपने नैतिक कर्तव्यों के साथ कभी समझौता नहीं किया विज्ञापन के दौर में। तो रेडियो एक अच्छा विकल्प है हमारे लिए और हर युवा को सुनना चाहिए क्योंकि युवा जब रेडियो सुनता है कई बार ऐसी बातें होती हैं कि हम दोस्त से या परिवार से नहीं कर पाते हैं और आज का दौर अवसाद का है और हम अकेले कहीं बैठे हैं, तनाव में भी हैं, तो वहां अकेले हम रेडियो पे कर सकते हैं, अपनी बातें रेडियो पे पूछ सकते हैं आरजे से। तो उस दौर में रेडियो आपका एक अच्छा साथी और हम सफर हो सकता है जो आपके लिए मार्गदर्शन कर सकता है।
1: और मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि अगर आकाशवाणी को डिफाइन करना हो एक शब्द में तो क्या कहेंगे आप?
0: आकाशवाणी ऐसा शब्द जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं पर सुन करके उसे महसूस कर पा रहे हैं और वो हमारे जेहन में बस जा रहा है और हमेशा के लिए वो एक याद के रूप में हमारे साथ है।
2: मेरा नाम गौरव पांडे है।
1: क्योंकि हम रेडियो के दौर से आ रहे हैं, हम सब रेडियो के दौर से ही बड़े हुए हैं, तो आप रेडियो को किस तरह से देखते हैं?
3: मैं रेडियो को, जब मैं छोटा था तो मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक था, उस समय जो भी भारत के मैचेज आते थे वो रेडियो पे ही आते थे और रेडियो भी मेरे घर के बगल में लोग थे उनके पास था, जब उनका रेडियो शाम में चलता था तो मेरे घर तक सुनाई देता था वो, तो मैं भी अपनी खिड़की के पास बैठ करके कमेंट्री सुनता रहता था। तो जब लगता था ना चौका तो बोलता था ये लगा चौका, कमेंट्री इंडिया। फिर भारत का वर्ल्ड कप जो फाइनल था वो मैं पूरा रेडियो पे सुना था क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटा था और ना टीवी थी ना कोई वैसा माध्यम नहीं था जिसको मैं देख सकूं, रेडियो ही एकमात्र माध्यम था जिससे मैं विजुलाइज कर पाया।

0: कमेंट्री की बात है तो वो अभी भी हमारे रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होती है, तो अब के टाइम से उसमें क्या बदलाव, क्योंकि अभी भी जाती है तो जाहिर सी बात है कि लोग सुनते हैं, लेकिन उसके साथ हमारे पास इतने ऑप्शन हो गए हैं कि लोग उस पर भी थोड़ा ज्यादा डिपेंड हो गए हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जो नया लोग है जो रेडियो पे नहीं सुनना है उसको टीवी में अच्छा लगता है, बट अभी भी मुझे खुद अगर रेडियो पे कमेंट्री आ रही है तो मैं रेडियो कमेंट्री ऑन कर लूंगा, और विजुअल में भले ही टीवी में देखूं लेकिन रेडियो कमेंट्री ऑन करके सुनूंगा।
0: यानी ये जो आकाशवाणी का हमारा ये 90 वर्षों का जो सफर अभी हमारा यहाँ तक पहुंचेगा इस मुकाम तक, इस दौर में हमने बहुत कुछ देखा, क्योंकि आजादी की जब हमारा देश आजाद हो रहा था तब भी इसके लिए इसका बहुत ज्यादा लोग इस पे रिलाई कर रहे थे, क्योंकि न्यूज़पेपर हालांकि उस टाइम पे था लेकिन उसके बाद भी लोग ज्यादा इस पे डिपेंड थे कि नहीं इसकी जो विश्वसनीयता है वो बनी रहेगी। और तब से लेकर अब तक में आपको क्या लगा कि क्या चेंजेस हुए हैं इसमें, कितना बदलाव आया है हमारे रेडियो में?
1: अभी थोड़ा ये हो गया कि पहले कुछ कार्यक्रम आते थे, अभी उन कार्यक्रमों को बढ़ा दिया गया है, अभी युवाओं के लिए एंटरटेनमेंट का भी कार्यक्रम है और हर एक वर्ग को देखते हुए, चाहे कृषि हो चाहे स्टूडेंट वर्ग है, घरेलू महिलाओं के लिए भी, हर वर्ग में वो चीजें और इवॉल्व होकर के आई हैं, तो रेडियो विश्वसनीयता के मामले में अभी भी उतना ही विश्वसनीय है। अभी भी जो लोग रेडियो को सुनते आ रहे हैं वो अभी भी उनके घर में रेडियो मिल जाएगा सुनने को, और स्मार्टफोन तो आजकल सब पे है, तो जो भी लोग थोड़ा जेनजी से पहले वाले हैं, मिलेनियल वाले हैं, वो भी अभी भी रेडियो को सुनना पसंद करते हैं।
0: अच्छा, जैसे कि अब के टाइम में होता है कि हम लोगों को फोन देखने के लिए या बहुत ज्यादा टीवी देखने के लिए इतनी ज्यादा डांट पड़ती, तो क्या रेडियो के साथ आपके ऐसा कुछ हुआ है कि डांट पड़ी हो कभी?
1: नहीं, रेडियो के साथ कभी डांट नहीं पड़ी। मैं एक इंसिडेंस बता रहा हूँ, पहले मेरे घर पे एक टीवी था, दूरदर्शन उस पर आता था, तो जब कोई मूवी सैटरडे या संडे को कोई मूवी आती थी तो गांव में क्या होता है कि लाइट कभी भी कट जाती है, मूवी बीच में लाइट कट जाती थी, तो वो जो मूवी चल रही होती दूरदर्शन पे वो रेडियो पे भी प्रसारित होती थी, तो मुझे मूवी देखने की परमिशन नहीं थी, लेकिन जब रेडियो पे कमेंट्री मतलब मूवी की जब आ रही होती थी तो उसको सुनने की परमिशन फुल है, उसको कोई मना नहीं करता था। तो ये है कि रेडियो सुनने के लिए कोई मना नहीं करता है।
0: अगर आपको रेडियो को एक शब्द में या आकाशवाणी को बयां करना होगा तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि कैसा मीडियम है?
1: मैं ये कहूंगा कि ये एक ऐसा मीडियम है जो हर किसी के लिए संभव है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर किसी के पास नहीं भी है तो वो सुन करके सुन लेगा। गांव में आज भी अगर कोई दुकान है जहां पे रेडियो चल रहा है तो वहां पे 20-25 लोग बैठे रहेंगे कि रेडियो सुनने के लिए, तो रेडियो एक ऐसा सुगम माध्यम है जो कि सब उसको बहुत आसानी से सुन सकता है।
0: तो आज के दौर में जहां हम में से कई ऐसे युवा हैं जिनका बस मोबाइल पे स्क्रॉलिंग ही चलती रहती है, तो इन लोगों को थोड़ा संदेश क्या देना चाहेंगे या आपका क्या मार्गदर्शन होगा हमारे उन युवा साथियों के लिए?
1: इंटरटेनमेंट केवल रील से ही नहीं, रेडियो से भी हो सकता है, तो मैं उन युवाओं के लिए कहूंगा कि अगर आपको अपनी आंख और अपने दिमाग का संतुलन बचाना है तो रेडियो पे शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि अगर इंटरटेनमेंट के नियत से आप स्मार्टफोन को देख रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप रेडियो पे शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि वहां पे आपकी आंख की भी बचत है और आपका दिमागी संतुलन भी बना रहेगा।
2: अपना परिचय दीजिए।
3: मेरा नाम नतन्या है, मैं पत्रकारिता विभाग के एमए की छात्रा हूँ।
2: अच्छा, ये बताइए आपने आखिरी बार रेडियो कब सुना था?
3: लगभग 3-4 दिन पहले। मैं अभी भी रेडियो का यूज सबसे ज्यादा गाने सुनने के लिए करती हूँ, क्योंकि अचानक से इसके बाद कौन सा गाना आएगा वो एक सरप्राइज एलिमेंट रेडियो मेंटेन करके रखता है, तो मुझे स्पॉटिफाई वगैरह से ज्यादा अच्छा लगता है कि कोई नया गाना आएगा या पुराना गाना जो मैंने बहुत टाइम से नहीं सुना है वो अचानक से सुन लूंगी तो पुरानी मेमोरीज वापस से याद आएंगी।
2: आपने कहा कि स्पॉटिफाई से बेटर रेडियो है, आज का टाइम इंटरनेट का है, अब एक क्लिक पे हर इंफॉर्मेशन जो आपका डिमांड आपको मिल जाता है, जो कोई गाने हो न्यू रिलीज हो रहा है सब मिल जाता है, तो आप रेडियो को ही क्यों चुनती है? रेडियो में और स्पॉटिफाई में क्या अंतर आपको दिखता है?
3: रेडियो से बहुत पुराना एसोसिएशन रहा है हम लोग का, हमारा बचपन टीवी से ज्यादा रेडियो से एसोसिएटेड रहा है, हम लोगों ने कहानियां ज्यादातर रेडियो पे सुनी है, रेडियो छीन के न्यूज सुना गया है तो गुस्सा भी हुए हैं, गाना सुनना प्रेफर किए हैं, घर वालों से रेडियो चुरा के कहीं छुपा के गाने सुने हैं, कहानियां सुनी हैं, तो एक कनेक्शन है रेडियो से। जैसे मैंने बोला अभी मैं रेडियो प्रेफर करती हूँ गाने सुनने की बात आती है, तो मुझे बेटर लगता है बाकी प्लेटफॉर्म से, क्योंकि एड्स बहुत ज्यादा उसमें आते हैं, रेडियो में अपना स्पेसिफिक सेगमेंट है एड्स का, या आरजी जब एड्स देते हैं तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग नहीं होता है, आपके विजुअल इमेजिनेशन वाले एलिमेंट को वो खराब नहीं करता है, इसीलिए मुझे अभी भी रेडियो बाकी प्लेटफॉर्म से ज्यादा बेटर लगता है।
2: अच्छा, कोई ऐसा किस्सा आपका बचपन का रहा हो रेडियो से जुड़ा फिर साझा करना चाहेंगी?
3: हाँ, एग्जाम के टाइम पे मुझसे रेडियो छीन लिया जाता था, क्योंकि मेरी मम्मी को लगता था पढ़ेगी लिखेगी नहीं, बस गाने सुनती रहती है, बिगड़ जाएगी, तो डांटे ज्यादा याद है मुझको। और मेरी मम्मी भी बताती है कि जब मैं बहुत छोटी थी यानी कि बच्ची थी तो मैं रोऊं ना इसके लिए मम्मी रेडियो चला के मुझे वहां पर छोड़ के निकल जाती थी, ताकि इसको लगे कि आसपास लोग बोल रहे हैं, तो लोग हैं।
2: मतलब कहीं ना कहीं रेडियो जो है वो एक साथी की तरह काम करता है।

0: जो आज के समय बहुत मिसिंग है, क्योंकि आज हमारे पास फोन तो है बट उसमें वो अपना पन नहीं था जो रेडियो में।
1: रेडियो के साथ ये चीज अच्छी थी कि हम अपनी आंख बंद करके अपने हिसाब से शब्दों को सुन के इमेजिन कर सकते थे चीजों को। कई बार ऐसा होता था कि बाद में पता चलता था चीजें गलत समझी हमने क्योंकि बच्चे थे, तो सरप्राइज एलिमेंट होता था। हाँ, आज के दौर में जैसे सोशल मीडिया है वो हमारे इमेजिनेशन को खत्म करता जा रहा है, बहुत पैसिव कंज्यूमर हम लोग बन चुके हैं, लेकिन रेडियो के जमाने में हम इमेजिन करते थे चीजों को, सुनते थे, इंटरेक्ट करते थे, चीजें याद रह जाती थी।
0: मान लीजिए कि आपको मौका मिले आकाशवाणी में कुछ बदलाव करने का, तब क्या करना चाहेंगी जो युवा से कनेक्ट कर सके?
1: अगर जेंजीज के बारे में बात करें तो इमोशनली बहुत ज्यादा कॉन्शियस जनरेशन है, बहुत कंफ्यूज रहती है, लेकिन उनमें इतना टैलेंट है कि वो नई चीजों को अडेप्ट कर सके, नई चीजों से रिलेट कर सके। तो अगर हम लोग रेडियो के थ्रू, जैसे अभी भी है जेंजीज, वो आरजेस के रील्स और उनके कंटेंट के थ्रू जानते हैं कि ये आरजे हैं, रेडियो पे काम करते हैं, तो जिस तरीके से सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स में इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसी तरीके से अगर हम लोग रेडियो में इन्हीं आरजेस के थ्रू जेंजीज को गाइड कर सके, रेडियो से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उनके बारे में इन्फॉर्म कर सके, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जैसे अभी हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत फेस करते हैं, मेंटल हेल्थ एक बड़ा कंसर्न है, उनको अगर हम लोग एड्रेस कर पाएं, क्योंकि अब रेडियो है वो एक एनोनिमिटी मेंटेन करके रखता है, लोग सिर्फ आपकी आवाज सुन रहे हैं, वो आपको नहीं जानते हैं पूरी तरीके से। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप अपने मन की बात शेयर कर रहे हैं, रेडियो के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं सबको, तो आप बेटर कनेक्ट कर सकते हैं।
0: आखिरी सवाल, अगर मान लीजिए आपको मौका मिले तो आप कैसा शो लाना चाहेंगे, या फिर कुछ ऐसा आपके मन में कोई टॉपिक हो जो जेंजी को कनेक्ट कर सके?
1: मुझे कहानियां हमेशा से पसंद रही हैं, मैंने भी बचपन में कहानियां सुनी हैं, अभी भी लोग नॉवेल्स के थ्रू या रील्स के ही थ्रू छोटी छोटी कहानियां कंज्यूम करते हैं, रिलेटेबल फील करते हैं। तो मुझे अगर रेडियो पे कोई शो होस्ट करना हो तो मैं कहानियों के मीडियम को अपनाना चाहूंगी, जो डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ बहुत से छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत बड़े हो जाते हैं, अगर हम उनको एड्रेस करें, लोग उनसे कनेक्ट कर पाए, तो वो रेडियो से भी कनेक्ट करेंगे और उनको शायद अपनी लाइफ में थोड़ा एक डिस्ट्रैक्शन भी मिलेगा और उनके प्रॉब्लम्स का सलूशन भी मिल सकता है।
2: जी, मेरा नाम है लोकेश आजाद और मैं समाजशास्त्र विभाग में अभी शोधार्थी हूँ।
3: तो जब बात ही आजाद से हो रही है तो आजादी के टाइम से ही बात शुरू करें कि उस टाइम पर कहा जाता था कि रेडियो का सामाजिक जो प्रभाव रहता था बहुत ज्यादा होता था, लोगों के पास तरह तरह के मीडियम नहीं होते थे तो लोग बहुत ज्यादा उस पर रिलाय करते थे, क्या रेडियो आज भी वो अपना सामाजिक प्रभाव बनाए हुए है?
2: जी, उस समय की बात बताया आजादी की, जब हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बहुत कम थे, सीमित मात्रा में थे, उस टाइम पे रेडियो की भूमिका बहुत ज्यादा थी। अभी इवोल्यूशन हुआ है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया है।
3: तो सबसे पहले जब छोटा सा डब्बा देखा तो क्या लगा आपको कि कहाँ से इसमें आवाज आती होगी? जैसे बचपन में हम लोगों के दिमाग में बहुत सारे से सवाल चलते हैं ना कि ये तो सिर्फ बॉक्स जैसा दिख रहा है, कहाँ से इसमें लोग बोल रहे, इतनी आवाज और सारी चीजें आ रही?
2: जी हाँ, एक बच्चे के रूप में तो हमें यही लगता था कि मतलब ये क्या, कौन सा मशीन है इस तरीके का, ये किसने बनाया है ये मुजस्सिमा बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा था कि हाँ कुछ तो यंत्र है, कुछ तो टेक्निक है इसमें। और जब हमने संभाला था तो घर में होती है ना सारी टीवियां होती थी ब्लैक एंड व्हाइट, उसके अलावा एक मनोरंजन का साधन कह सकते हैं आप, जब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाते थे, अपने दादाजी के पास जाते थे, तो चाहे न्यूज सुनना हो, चाहे एंटरटेनमेंट की कुछ चीजें सुननी हो, सदाबहार गीत सुना हो, उसी का सहारा लेते थे, तो हम भी उनके साथ बैठ कर सुना करते थे, तो हमें अच्छा लगता था कि हाँ यार कुछ तो है जो हमारा मन बहला रहा है।
3: तो बचपन में आपके लिए क्या आपका पसंदीदा कार्यक्रम हुआ करता था?
2: बचपन में तो मैं पहले बताऊं कि हमारे घर में क्रिकेट को लेकर बहुत बढ़िया माहौल हुआ करता था, जहां तीन चार जनरेशन एक साथ बैठ के क्रिकेट सुनते थे और देखते थे। तो सबसे पहला जब भी अगर रेडियो का बात आता है तो मेरे लिए क्रिकेट पहले आता है, क्योंकि दादा पोता पिता सब एक साथ बैठ के रेडियो सुनते थे, क्योंकि गाँव में उस टाइम बिजली उतनी होती नहीं थी, तो जब बिजली नहीं होती थी तो टीवी हम लोग नहीं देख पाते थे, तब रेडियो ही काम आता था। और उसमें एक कमेंटेटर थे, बहुत फेमस कमेंटेटर है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जब वो कमेंट्री करते थे बाउंड्री लगती थी तो बोलते थे कि ये लगा बीएसएनएल चौक का कनेक्टिंग इंडिया, तो नॉस्टैल्जिया होता है हमें जब भी वो हम सुनते हैं।
3: जैसे आपने कहा आपने बचपन का दौर देखा है रेडियो का, तो वहां से लेकर अब में आपको क्या चेंजेस लगा कि क्या बदलाव आए हैं, क्या कुछ हुआ है कि इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है कि आज के इस भागते हुए दौर में जहां बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो उसमें क्या बदलाव है?
2: तो बदलते हुए दौर को देख के हमें रेडियो पे भी चीजें बदलनी चाहिए, जैसे नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए हमें, जो स्टेशन रेडियो स्टेशन से उनको भी थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि हर जगह पहुंच बढ़ रही है तो लाइट बिजली इंटरनेट बढ़ रहा है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़नी चाहिए। उसके अलावा तरह तरह के प्रोग्राम्स जो आजकल जिनको हम जेन नेक्स्ट और जेन जी कह रहे हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए इंटरटेनमेंट और उसके अलावा कई प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए।
3: आप अपना अपना परिचय देते हुए बताएं कि आपके लिए आकाशवाणी क्या है।

0: मेरा नाम आदित्य प्रकाश है और मेरे लिए पर्सनली आकाशवाणी एक ऐसी फीलिंग्स है जिसके साथ मैं अभी भी जुड़ा हूँ।
1: मेरा नाम आदित्य, आकाशवाणी जो है वो मेरे साथ जुड़ा हुआ क्योंकि इसकी यादें जो हैं बचपन से जुड़ी हुई, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे, आज तो हम लोग के पास स्मार्टफोन है, बट जब हमारे पास स्मार्टफोन नहीं होता था और हम लोग के पास कीपैड वाला फोन होता था, उसमें रेडियो होता था, क्योंकि वही एक माध्यम होता था हम लोग का, मतलब कि अकेले

0: एक माध्यम होता था हम लोग का, मतलब कि अकेले हो या जब भी आपको गाना सुने, क्योंकि ऐसा उस समय स्थिति नहीं होती थी ना कि सब लोग जब मन टीवी चला ले। दूसरी बात यह थी कि उस जमाने में जब हम लोग तकरीबन 10 साल पहले, समय सबके पास एक FM होता था, वो सारे ग्रुप में सब लोग खरीदते थे, तो एक स्टेटस दिखाने का जो है जरिया तो बहुत सारी है।
1: मेरा नाम अमन सिंह है, मैं MA कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन BHU का छात्र हूँ।
2: अच्छा ये बताइए, जो न्यूज हम आज सुनते हैं और उस दौर में जो न्यूज आते थे, उसमें आप क्या चेंजेस देखती हैं? खासकर रेडियो में सुनना न्यूज सिर्फ कानों तक पहुंचता था, लेकिन आज टीवी, हमारे पास बहुत सारे माध्यम है जिसके थ्रू हम न्यूज सुन लेते हैं, तो उस टाइम की विश्वसनीयता और आज में क्या फर्क देखते हैं आप?
1: अभी आज के टाइम में तो रेडियो को, मतलब मैं उतना ज्यादा न्यूज के लिए तो कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ रेडियो से। मैं रेडियो को जब सुनता हूँ, जब मतलब जैसे अभी स्मार्टफोन का टाइम चल रहा है, तो स्मार्टफोन लोग बहुत ज्यादा डूम स्क्रॉलिंग, मतलब जो भी चीजें, ये स्मार्टफोन से जब डिस्कनेक्ट करता हूँ खुद को, जब मैं सिंपल कीपैड वाले फोन पे जब स्विच करता हूँ, तो मतलब लगता है कि नहीं, रेडियो मतलब काफी फैसिनेटिंग चीज है।
2: अच्छा, कोई आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो जो रेडियो से जुड़ा हुआ हो?
1: बचपन में मुझे याद है कि जब मेरे दादाजी मतलब रहते थे, तो उस टाइम में मतलब जब मैं उनके पास बैठता था शाम का, कुछ स्नैक्स वगैरह खाते टाइम या फिर कुछ भी करते टाइम, तो वो जो एक टाइम होता था उस टाइम में मतलब काफी, मतलब मुझे मतलब यही एक चीज है जो कि बहुत ज्यादा मतलब मैं खुद को रिलेट कर पाता हूँ। और कुछ गाने वगैरह हैं, तो वो गाने उस टाइम में जो सुना करते थे मेरे दादाजी, ये सब सुना करते थे, तो उस टाइम में मुझे इतना नहीं लगता था कि ये किस तरह की गाने हैं, ये क्या है। बट अभी जब इस टाइम में मतलब मैं उस गाने को खुद सुन रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मतलब वो दौर रहा होगा कि मतलब उस टाइम में लोग इस तरह के गाने वो सुनते थे और वो उसी तरह से इमेजिन करते थे, बट हम आज के टाइम में वो चीज इमेजिन नहीं कर पा रहे, वो फील नहीं कर पा रहे।
2: मतलब रेडियो में वो फील था, लोग उसे महसूस करते थे सुनने के साथ साथ।
3: आप जैसे जानते हो कि रेडियो में, और रेडियो ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या फिर एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे सारे लैंग्वेजेस में रीजनली गाने, न्यूज सारी चीज आती है। भोजपुरी में बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम और शुद्ध उच्चारण, बात ऐसी नहीं हो कि हिंदी के ही शुद्ध उच्चारण और वो भारी भरकम शब्दों का प्रयोग हो, हर भाषा की शुद्धता और व्याकरण हमें सीखनी चाहिए। तो हम रेडियो की इस फीचर्स का इस्तेमाल अगर अच्छे तरीके से करें, तो हम हिंदी के साथ साथ अपनी और भी रीजनल लैंग्वेजेज हो। और मजेदार बात ये है कि जिस तरीके से ग्लोबलाइजेशन के दौर में अंग्रेजी की तरफ सबका रुझान हो रहा है, तो रेडियो में इंग्लिश के बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम है।
2: क्योंकि आकाशवाणी सिर्फ एक माध्यम नहीं है, एक लेगेसी है जिसने कई दशकों को अपने अंदर समेटे हुआ है। तो आप कुछ ऐसे हमें पॉइंट्स बताना चाहें जिससे हम इम्प्लीमेंट करके युवाओं तक पहुंच सके?
0: तो ऐसा कोई कार्यक्रम चलाया जाए जिसमें उनको इससे रिलेटेड बताया जाए, देन उसके फाइनेंशियल स्टेटस। आकाशवाणी केवल एजुकेशन के लिए नहीं है, वो तो सबके लिए है। तो बहुत सारे युवा हैं जो बहुत अपनी स्टडी को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो उनके लिए और सबके लिए एक ऐसा चीज होना चाहिए कि आप जो है अपनी स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ सकते।
2: मतलब बेसिकली आकाशवाणी को अगर युवा तक पहुंचना है, तो एक माध्यम हमें जो ट्रेंड में है उसे फॉलो करना पड़ेगा। और मान लीजिए अभी तो जो दौर चल रहा है, AI का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आगे आने वाले 10-15 सालों बाद क्या आपको लगता है कि रेडियो उतना ही रेलेवेंट रहेगा जितना आज है और जितना पहले था?
1: मुझे लगता है कि रेडियो के अभी अडेप्ट करने की जरूरत है, बिल्कुल वो जो नॉस्टैल्जिया है, बस वही एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग रह जाएगी।
2: तो उम्मीद है कि आगे हम और बेहतर करेंगे, और आप लोग की जो राय है उसे हम जरूर माइंड में रखते हुए और चेंजेस करेंगे। तैयबा, इन साथियों से बातचीत करके ये समझ में आया कि इनके अंदर आज भी आकाशवाणी जिंदा है।
4: बिल्कुल, भले ही तकनीक बदलती रही, स्क्रीन छोटी होती गई और दुनिया पहले से ज्यादा डिजिटल हो गई हो, लेकिन इंसानी आवाज की गर्माहट आज भी वही है।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी के 90 साल का ये सफर सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग के 90 साल नहीं, बल्कि भरोसे, यादों और भावनाओं के 90 साल है। ये सफर उस आवाज का सफर है जिसने पीढ़ियों को जोड़ा, अकेलेपन में साथ दिया और देश की धड़कनों को लोगों तक पहुंचाया।
4: शायद इसी वजह से रेडियो आज भी सिर्फ एक माध्यम नहीं, बल्कि एक एहसास है और आने वाले समय में भी रहेगा।
5: वाकई ये पूरी बातचीत, उम्मीद करते हैं साथियों आपको बहुत पसंद आई होगी, और साथ ही साथ ये पूरी बातचीत सुनकर ये एहसास तो ज़रूर हो गया है कि रेडियो का ये इम्पैक्ट है वो एवरलास्टिंग है और एवरग्रीन है, और ये कभी भी स्लो डाउन नहीं होने वाला। क्यों?
6: बिल्कुल नेहा। और तो दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब समय है हमारे पसंदीदा सेगमेंट यू डायरी का।
5: लेकिन मुझे लगता है कि हम शब्द अपने साथियों को बताएंगे, लेकिन इस छोटे से अंतराल के बाद।
7: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
8: सुनो ना।
9: हाँ?
7: सोच रहा

0: हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हा?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
2: 0542227658।
0: ओ
3: 0542227658।
0: लो अभी फोन लगाता हूँ।
3: 0542227658।
4: तो दोस्तों चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं हमारे आज के यू डायरी के शब्द क्या क्या हैं। तो हमारा आज का हिंदी का शब्द है दोस्तों अधिनियम। अधिनियम का अर्थ होता है
5: किसी विशेष विषय से संबंधित बनाया गया नियम या कानून।
4: यदि इसका हम वाक्य प्रयोग करें तो हम कह सकते हैं सड़क सुरक्षा से जुड़े अधिनियम का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।
5: हाँ, और आज का हमारा अंग्रेजी का शब्द है ट्रेपिडेशन।
4: ट्रेपिडेशन का अर्थ होता है दोस्तों घबराहट, आशंका या किसी बात को लेकर मन में होने वाला डर।
5: इसका वाक्य प्रयोग इस प्रकार है, शी एंटर्ड द स्टेज विद स्लाइट ट्रेपिडेशन।
4: यानी वह हल्की घबराहट के साथ मंच पर पहुंची। तो उम्मीद करते हैं कि आपने ये दोनों शब्दों को अपने यू डायरी में नोट कर लिया होगा और उसे अपने माइंड में भी नोट कर लिया होगा। तो चलिए अब इसी के साथ अब बारी आ गई है, हमें पता है कि आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि हमारे जो क्यूओटीडी के विनर हैं वो कौन कौन हैं और किन्होंने हमें सही जवाब भेजा है। तो चलिए जान लेते हैं कि हमारा कल का प्रश्न क्या था। तो हमारा कल का प्रश्न था किस महाद्वीप को अंधेरे का महाद्वीप कहा जाता है और इसका सही उत्तर है अफ्रीका। और जिन साथियों ने हमें इसका सही उत्तर भेजा है वो है
5: अफ्रीका महाद्वीप साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति खमरिया, रुक्मणी बघेल साहिल, भारतीय बघेल पता लगान पंडरिया छत्तीसगढ़, प्रवीर चौहान खरगोन मध्य प्रदेश।
4: तो दोस्तों ये थे हमारे विनर्स जिन्होंने हमें सही जवाब भेजा है। और चलिए अब इसी के साथ साथ हमारा आज का प्रश्न क्या है वो भी हम जान लेते हैं। तो चलिए फटाफट से इसे भी नोट कर लीजिए आप। तो हमारा आज का प्रश्न है आकाशवाणी की प्रसिद्ध युवा केंद्रित सेवा युववाणी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो ये कार्यक्रम आप हर रोज सुनते हैं। अब चलिए इसी से जुड़ा हुआ हमारा प्रश्न भी है कि आकाशवाणी की प्रसिद्ध युवा केंद्रित सेवा युववाणी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। और इसका जवाब आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल यानी कि यूथ AIR वाराणसी पर जाकर या फिर हमारे ईमेल के पते पर यानी कि youthairvns@gmail.com पर जाकर के फटाफट से भेज दीजिए। और देखते हैं कि कौन से साथी हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर बनते हैं।
5: तो वक्त की रफ्तार भले ही आगे बढ़ती रहती हो लेकिन इतिहास अपने भीतर अनगिनत कहानियां समेटे रहता है। तो आइए आज फिर खोलते हैं इतिहास के सुनहरे पन्नों की वो किताब जिसमें दर्ज है साहस, विज्ञान और साहित्य की कुछ प्रेरणादायक दास्तानें।
4: दोस्तों तो आपको बता दें कि 2011 में आज ही के दिन झारखंड की पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया था। वे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी। क्या बात है, ये तो भाई हम महिलाओं के लिए तो वाकई बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और हमें इससे खूब सारी इंस्पिरेशन लेनी चाहिए।
5: बिल्कुल नेहा, उनकी उपलब्धि सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं थी बल्कि उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा थी जो उम्र को अपने सपनों के रास्ते की दीवार मान लेते हैं।
4: तो कोई दीवार मानने की जरूरत नहीं है और हमारे कार्यक्रम में भी किसी दीवार की जरूरत नहीं है क्योंकि एंटरटेनमेंट भी इसी के साथ कंटिन्यू होता रहेगा। चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: तो दोस्तों चलिए इसी गाने के साथ साथ अब जान लेते हैं कि हमारी आज की रोजगार सूचना क्या है।
1: और अब समय हो गया है रोजगार सूचना की। बिल्कुल नेहा, तो दोस्तों आज की बड़ी भर्ती आई है भारतीय रेलवे की तरफ से। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी RRB ने असिस्टेंट लोको पायलट यानी ALP पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है।
0: दोस्तों इस भर्ती के तहत कुल 11,127 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 मई 2026 से शुरू भी हो चुकी है।
1: वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 14 जून 2026।
0: तो ऐसे में जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है वो बिना किसी डिले के फटाफट से भाई इसकी वेबसाइट पर यानी RRB अप्लाई पोर्टल पर जा करके जो है अप्लाई करें और इस भर्ती के लिए तैयार हो जाएं। मुझे पता है कि ये जो हमारी एज चल रही है ये वाकई ऐसी एज है जहां पर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो चाहे ना हो लेकिन एक अच्छे रोज़गार की और एक अच्छे अवसर की ज़रूरत होती है जिससे कि हम अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति दिखा सके समाज में और अपनी एक पहचान दिखा सकें कि हम भी यहाँ पर सोसाइटी में इस तरीके से इस पद के साथ स्टैंड ले सकते हैं। और ऐसे में खूब सारा फ्रस्ट्रेशन भी होता है, खूब सारी टेंशन भी होती है, फ्यूचर की टेंशन, और ये लाजमी है, इसे नॉर्मलाइज करने में ही भलाई है। इसीलिए हम हर रोज अपने कार्यक्रम में यानी युववाणी में आपको एक रोजगार सूचना तो देते ही हैं क्योंकि हम जानते हैं कि युवाओं के लिए कोई चीज इस टाइम जो सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है उनके लिए एक अच्छी रोजगार। तो चलिए दोस्तों इसी तरह से आप हमारा कार्यक्रम सुनते रहिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रोजगार ही नहीं और भी चीजें हम नियमित बताते रहते हैं और आपको हर रोज उसके बारे में जानकारियां देते रहते हैं उसके

0: साथ साथ स्मृति, अच्छा
1: हाँ
0: जी,
1: हाँ
0: गीत भी सुनाते रहते हैं।
1: बिल्कुल, हम तो गीत भी सुनाते हैं, लेकिन आज पता है नेहा, मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, और वो है जल संरक्षण। वैसे तुम क्या कहती हो इस बारे में?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इस टाइम में तो वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ रही है और टेम्परेचर भी इसके साथ में बढ़ रहा है, और ऐसे में इस बढ़ती गर्मी के साथ में जो हीट वेव्स चल रही हैं, और गर्मी में आमतौर पर जो है जो जल का स्तर है यानी वाटर टेबल है वो वाकई बहुत ही डाउन हो जाता है, और जो पानी का स्तर है वो डाउन तो हो ही रहा है, उसके साथ में जो दोहन हो रहा है और पानी का जो इतना तेजी से जो उसे दूषित किया जा रहा है, इसका इम्पैक्ट ओवरऑल में देखा जाए तो बहुत ही बुरी तरीके से पड़ रहा है। कई जगहों पर पानी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और लोग कई कई किलोमीटर तक चलते हुए आगे बढ़ते हुए पानी की तलाश में परेशान होते हैं। तो ज़रूरी है कि हम जन संरक्षण की ये जो महत्ता है उसको समझें और पानी की बचत करें, अनावश्यक रूप में पानी को न गिराएं, जहां जरूरत हो वहीं पे इस्तेमाल करें, क्योंकि रोजमर्रा के जीवन में वाकई
1: बिल्कुल
0: जो
1: नेहा, और पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तो आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि पानी की हर बूंद की रक्षा करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे।
0: बिल्कुल जागरूक करेंगे, और उसके साथ में हम कोशिश करेंगे कि जो है हम जो अपने तरफ से योगदान दे सके, चाहे वो छोटा सा हो चाहे वो बड़ा सा हो, उसे जरूर
1: और
0: दें।
1: वो कहते हैं ना कि जल है तो कल
0: कल है,
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वैसे कार्यक्रम में कल और भी बहुत सारी चीजें
1: बिल्कुल
0: आएंगी और भी हमारे साथी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आज की बात करें तो हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, और हमारे स्टूडियो की क्लॉक भी अब टटा बाय बाय करने लगी है। तो
1: बिल्कुल
0: इसी
1: नेहा,
0: के साथ साथ आज की ये दो रेडियो साथी यानी कि मैं नेहा
1: और मैं स्मृति,
0: का नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने गोरखपुर केंद्र से।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ हम वेद प्रकाश पाठक। देश आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी रक्षा क्षमता के मजबूत करने की दिशा में एगो और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ले हो। रक्षा अनुसंधान अधिकार संगठन DRDO अनमैन एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल UL PGM V3 के अंतिम विकास परीक्षा के सफलता के साथ पूरा कर ले बा।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत में DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बहुत ही उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अनु मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह UL PGM V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षण के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एगो रणनीतिक उपलब्धि बतौले हमें। सर्वोच्च न्यायालय जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना करौले के केंद्र सरकार के फैसला के चुनौती देने वाली याचिका के आज खारिज कर दिया। अदालत कहले हवे कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार

0: क्षेत्र में आवेला। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के अध्यक्षता वाली पीठ कहले हवे कि पिछड़ा वर्ग खातिर कल्याणकारी उपाय करे बदे सरकार के उनकर संख्या जानल जरूरी बा। पीठ कहलस कि इन तरह का आंकड़ा इकट्ठा कैले में कोनो बुराई नहीं हो। सर्वोच्च न्यायालय काली जन सुरक्षा के देखत रेबीज से संक्रमित लाइलाज बीमारी से ग्रसित चाहे ढेर खतरनाक कुत्तन के मौत का इंजेक्शन दिहल गैले के अनुमति दे दहलस। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एम बी अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश नावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया। समाचार कक्ष में संदीप शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव के लेके गठित संयुक्त संसदीय समिति कहले हवे कि लोकसभा विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथे करौले से करीब 7 लाख करोड़ रुपया का बचत हो सकेला। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी काली संजा गुजरात के गांधीनगर में पत्रकार लोगों से बतियावत जानकारी देने वहां के कहने की यह कदम से देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक लेकर बढ़ोतरी हो सकेला।
2: मैं जो इनपुट मिला है उस पर हमने बहुत का इसको और इम्प्रूव करो और एक मूल मंत्र के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे कि जिस रूप में आप में अपने लोग प्रिपेयर कर सकते हो जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करें इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है लेकर एक तरह से दूसरी तरह माइग्रेट करती है सबको का आप रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी बा। ऐसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सतही एकरे लगे के कई जिलों के साथे साथे पश्चिमी जिलों में जनजीवन पुरहर तरीका से प्रभावित बा। मौसम विभाग 22 मई ले राज्य में कुछ जगहों पर भीषण लू का रेड अलर्ट जारी कैले हो। विभाग के मुताबिक ए दौरान रतियों में उमस पड़े का अनेसा बा। एक रिपोर्ट।
3: कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। रातें भी असामान्य रूप से गर्म हो गई हैं और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। दिन चढ़ते ही सड़कें सूनी हो जा रही हैं और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद बढ़ गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: भीषण गर्मी और उमस के देखत प्रदेश के कुछ जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दिया गया बा। ए बीचे मौसम विभाग प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकन में मौसम शुष्क रहने के साथ ही तेज सतही बेरियो चलने का संभावना जतौले हो। समाचार पूरा भई, नमस्कार।

प्रस्तुत है हमारी केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे सितार वादन। कलाकार होंगे पंडित रविन्द्र नारायण गोस्वामी। रात्रि 8:00 कार्यक्रम सुगम संगीत में हमारे आज के कलाकार होंगे व्यास जी मौर्य। किसान भाई अपना कार्यक्रम कृषि जगत सुनेंगे शाम 6:30 पर, जिसमें जौ का आयुर्वेदिक महत्व इस विषय पर डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे से बातचीत करेंगे दिनेश कुमार सिंह। साथ ही सुनिएगा शिव प्रसाद पाल और साथी का गाया हुआ कहरवा। रात्रि 10:00 सुनिएगा

कार्यक्रम कानून और हम, गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन हम आपके लिए लेकर आएंगे रात्रि 9:30 पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे शाम 6:10 पर। रस रंग शाम 7:31 और रसमाधुरी का समय होगा रात्रि 8:15। शाम 7 बजे सुनिएगा अंग्रेजी वार्ता, विषय है पीयर प्रेशर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। वार्ताकार हैं डॉक्टर शिखा सिंह।

ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आप सुनिए कल यानी दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार को हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह 9:30 पर सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम, जिसे हमारे लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में सुबह 7:31 पर सुनिएगा पंडित अरुण भादुड़ी का गायन। दोपहर 12:45 पर सुनिएगा उप शास्त्रीय गायन, कलाकार होंगे अशोक कुमार झा। और रात्रि 10:30 पर इसी कार्यक्रम में सुनिएगा गायन, कलाकार होंगे पंडित बाला साहब पुंछवाले। सुगम संगीत कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर सुनिएगा पंडित सीताराम सिंह के गाए हुए भजन और गीत। और रात्रि 8 सुनिएगा ए हरिहरन की गाई हुई गजलें। शाम 6:30 पर हमारे किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे कृषि जगत, जिसमें छिड़काव में उपयोगी उपकरण एवं नाशी जीव रसायनों की मात्रा की गणना, इस विषय पर डॉक्टर शिशुपाल सिंह से बातचीत सुनवाई जाएगी। साथ ही लुत्फ उठाइएगा काजोल वाल्मीकि के गाए हुए लोकगीत का। इन्हीं के गाए हुए लोकगीत आप सुन सकेंगे सुबह 9:50 और दोपहर 1:45 पर भी। दिन के 1:15 पर ग्रामीण महिलाएं अपना कार्यक्रम सुनेंगी अंगनैया, जिसमें डॉक्टर राजश्री यादव से बातचीत सुनवाई जाएगी। विषय होगा नाक कान गले से जुड़ी समस्याएं, कारण लक्षण और उपचार। साथ ही होगा गीत संगीत। हमारे युवा साथी अपना कार्यक्रम युववाणी सुनेंगे शाम 5:15 से, जिसमें गीत संगीत के अलावा आकर्षण होगा आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 सूत्रीय कार्यक्रम नई रोशनी। सुबह 6:05 पर कार्यक्रम खेती की बातें का विषय होगा कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानियां, इस विषय पर जानकारी देंगे दिनेश कुमार सिंह। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना आप सुनते हैं सुबह 6:10 पर। सुबह 6:20 पर विचार बिंदु का समय होगा स्वामी करपात्री जी महाराज। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का विषय होगा दांतों का प्रत्यारोपण कब और कैसे, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर ठाकुर प्रसाद चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 6:35 पर। सुबह 6:40 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ गुड मॉर्निंग बनारस सुबह 7 और सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा सुबह 8:45 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम झंकार सुबह 10 और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का समय होगा सुबह 11। तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल के प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी वाराणसी, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गाना है फिल्म थ्री इडियट्स से, आवाजें शान और शांतनु मैत्रा की। गीत के बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने, संगीत है शांतनु मैत्रा का।

अगला गीत है फिल्म हंगामा से। इस गीत को गाया है बाबुल सुप्रियो ने। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत है नदीम श्रवण का।

0: श्रोताओं, ये गीत सुनने से पहले हम सुन लेते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।

0: इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य रोमनगरे इटली देशस्य प्रधानमंत्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह वार्तालापं कृतवान्। उभौ देशौ द्वैपाक्षिक संबंधं विशेषतः सामरिक सहभागित्वेन उन्नतिं कर्तुं निर्णयम् अकुर्वताम्। प्रधानमंत्रिणा श्रीमोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ भयोत्पादनं मानवतायै गभीर प्रतिरोधरूपेण पश्यतः। डीआरडीओ इति संघटनेन ड्रोन प्रक्षेपितस्य मानवरहित स्पष्टता निर्देशित प्रक्षेपास्त्रस्य परीक्षणं सम्पूरितम्। रक्षामन्त्रिणा एतद् व्यूहात्मकं सोपानत्वेन वर्णितम्। सर्वोच्चन्यायालयेन केन्द्रस्य जातिगणनायाः निर्णयस्य विरोधे याचिका अस्वीकृतम्। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् ईडन गार्डन्स् इत्यत्र मुम्बई इण्डियन्स् दलं कोलकाता नाइट राइडर्स् दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य रोमनगरे इटली देशस्य प्रधानमंत्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह प्रतिनिधिस्तरीया वार्ता कृता, यस्योद्देश्यं प्रमुखक्षेत्रेषु भारत इटली देशयोः द्वैपाक्षिक संबंधान् इतोप्यधिकं सुदृढं कर्तुमासीत्। व्यापारस्य निवेशस्य तन्त्रज्ञानस्य रक्षायाः स्वक्षोर्जायाः सामरिक सहभागित्वस्य च क्षेत्रेषु सहकारस्य संवर्धनम् एव अस्य सम्मेलनस्य केन्द्रबिन्दुः

0: आसीत।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
0: उभौ नेतारौ परस्पर हितस्य क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विकासेषु अपि चर्चितवन्तौ। भारत इटली देशयोः मध्ये चर्चां प्रतिबिम्बितं यत् वर्धमानं सामरिक सहभागित्वम् आर्थिक सहयोगस्य विस्ताराय जनानां सम्बन्धेषु च महत्त्वं प्रदत्तम्। प्रतिनिधिस्तरीया वार्तायाः अनन्तरं उभौ नेतारौ संयुक्तं वक्तव्यं प्रदत्तवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना घोषितं यत् भारत इटली देशयोः द्वैपाक्षिक सम्बन्धं विशेष सामरिक सहभागित्वेन वर्धयितुं निर्णयः कृतः। श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ पक्षौ सहकारं वर्धयितुं विस्तृतं चर्चां कृतवन्तौ। भारत इटली नवान्वेषण केन्द्रस्य स्थापनार्थं च कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। सः अवदत् यत् भारत इटली रक्षा औद्योगिक मार्गचित्रं सैन्योपकरणानां सह विकासस्य सह उत्पादनस्य च मार्गं प्रशस्तम्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् उभौ देशौ नौवहन क्षेत्रेषु पत्तनानाम् आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे, नील अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मिलोनी इत्येषा अवदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च द्वैपाक्षिक सम्बन्धाः अधुना स्वस्य पूर्णक्षमतया साधयितुं समर्थाः सन्ति। गत केषुचित् वर्षेषु भारत इटली देशयोः मध्ये सम्बन्धाः अभूतपूर्वगत्या विस्तारिताः सन्ति, अधुना च निर्णायकं स्तरम् अवाप्नोत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा तस्य इटली देशीया समकक्षीया जॉर्जिया मेलोनी इत्युभाभ्यां लिखिते संयुक्त लेखे उभयोः देशयोः मध्ये सम्बन्धः सौहार्दपूर्ण स्नेहात् विशेष सामरिक सहभागित्वेन विकसितः अस्ति, यस्य आधारः स्वातन्त्र्यस्य, लोकतन्त्रस्य, भविष्यस्य कृते संयुक्त दृष्ट्याधारित मूल्येषु च निहितास्ति, उभौ नेतारौ प्रकाशितवन्तः। नेतारौ उक्तवन्तः यत् यदा वैश्विक व्यवस्थायां गहन परिवर्तनं प्रचलति तदा भारत इटली सहभागित्वं उच्चतम राजनैतिक संस्थागत स्तरेषु नियमित आदान प्रदान द्वारा दर्शितमस्ति। एकविंश्यां शताब्द्यां समृद्धेः सुरक्षां च राष्ट्राणां नूतनाशयस्य, ऊर्जा परिवर्तनस्य, प्रबन्धस्य, सामरिक सार्वभौमत्वस्य सुदृढीकरणस्य च क्षमतायाः उपरि परस्पर समन्वयं प्रतिबिम्बयति इति उभौ उक्तवन्तौ। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन DRDO इत्यनेन देशस्य रक्षाक्षेत्राय एकं महत्वपूर्णोपलक्ष्यं साधितम्, यस्मिन् मानवरहितं वायुयानेन प्रक्षेपितं सटीक निर्देशित V3 प्रक्षेपास्त्रस्य अन्तिमविकासपरीक्षणानां सफलतया सम्पादितम्। आन्ध्रप्रदेशे कुर्नूलस्य समीपे DRDO परीक्षणपरिधिमध्ये परीक्षणं जातम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः DRDO संस्थायाः अभिनन्दनं कृत्वा रक्षाक्षेत्रे स्वावलम्बनार्थं प्राप्तं व्यूहात्मकं सोपानमिति वर्णितम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य सियोलनगरे दक्षिणकोरियादेशस्य रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासनस्य मन्त्रिणा ली योङ्ग चुल इत्यनेन सह मिलितवान्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये सन्देशे श्री सिंह

0: तो
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम राम राम हो भोला भैया।
1: तो के राम राम हो मोहन भैया।
0: बतावा का हालचाल बा खेती किसानी का।
1: हाल चाल तो सब ठीके बाहो मोहन भैया।
0: हाँ
1: अब जनते हुआ फसल फसल तक कुल कट के घरे अपने आई गल बा।
0: हाँ भूसा
1: अल
0: उसा भी रख
1: हाँ
0: लेला।
1: एकदम रख ले लिए भैया। अल
0: हाँ
1: लइकन के देखा ना
0: हाँ
1: स्कूल के छुट्टी होके वाली बा। अब कुछ
0: अच्छा
1: लोगन के तो देखते आस पड़ोस कुछ गदेला लोग का छुट्टी हो भी गई है। अब देखा
0: हाँ
1: बच्चा लोग जो हुआ ना मोहन भैया वो
0: हाँ
1: अपने नानी के गांव जाए के तैयारी करत हूँ।
0: हाँ तो हूँ छोड़ रहा था बड़ी जात रहा भले नानी का छुट्टी गर्मी का छुट्टी में।
1: कहे न भैया।
0: अब देखा एक बात का हम ना
1: हाँ
0: कि
1: मोहन भैया।
0: भैया देखा समाज का सुंदरता तब होले तब जैसे कि जब आदमी एक दूसरे के समय पर काम आवे ना।
1: बिल्कुल
0: आज
1: भैया।
0: देखा जैसे तोरे घरे में कोनो चीज ज्यादा बा अब बगल वाले के यहाँ ना बा तो तू ओके जो ना कि दान कर दा ओके ओके सहयोग कर दा।
1: मतलब भी कह चाहता हूँ मोहन भैया कि जो आवश्यकता से ज्यादा हो
0: हाँ
1: जो भी चीज ओके दान

0: दान करे के चाही।
1: एकदम सही पकड़ला है। इहो का हमने कि देखा दान जोन हो ना उनमें भी देखा कई तरह का दान है। देखा कोई शिक्षा दान करला, कोई वस्त्र दान करला, आ कुछ त्योहार पर देखा अन्न दान भी करल जाला। लेकिन सबसे जोन बढ़िया दान होला जोने के महादान कहल जाला, वो देखा हुआ रक्तदान।
0: कहे ने भैया रक्तदान एक ऐसा दान हो कि
1: हाँ
0: ई दान न भैया हम तो ये कहब कि ई दान जोन हो एक सब ना कर सकत भैया। ई साहसी आदमी और जो वीर होंगे और जो अपने देश के प्रति अपने देश देश के लोगन के प्रति जो प्रेम भावना रखत हुई ओके लिए वो दान देवे खातिर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हुए
1: एकदम
0: का
1: सही कहला
0: कह
1: है। तोरे कहे के मतलब कि दान जो है कि वह करी जेकि अपने देश से प्यार रोखा, समाज
0: हाँ
1: से प्यार रोखा, अपने देशवासियन से भी प्यार रोखा,
0: बिल्कुल भैया।
1: और उनके जरूरत पर देखा वो काम आवो के उनके दिल में भावना भरल होखा। तो ये एकदम सही बात कहला है। देखा यो का अपने देखा बोला भैया कि कुछ लोगन के दिमाग में ही रहला कि देखा हम जो है कि अगर खून अपन उतरवा देव तो हम कमजोर हो जाए, ऐसा देखा बात ना
0: हाँ
1: हो।
0: हाँ ऐसा बात ना ऐसा भ्राती अपने समाज में देखल जाला।
1: हाँ
0: बसरते ऐसा कोनो बात ना भैया। देखा जोन रक्तदान होला बड़ा
1: हाँ
0: बड़ा डॉक्टरन डॉक्टर लोगन के ध्यान में उनके समक्ष होला और रक्तदान करे से पहले मोहन भैया बढ़िया से रक्तदान करे वाले व्यक्ति का जांच होला ताकि जो कोनो प्रकार का समस्या होके वो दान दे रक्तदान करे वाले के वो समस्या ना होके है ना।
1: हाँ एकदम सही बात कहला। और रक्तदान देखा जो है ना कि ऐसा दान हुआ जैसे कि केहू आदमी का देखा जिंदगी जो ना कि बच सके ले।
0: कहना
1: जैसे
0: भैया
1: कोई देखा आदमी देखा सड़क दुर्घटना में घायल हो गए, अब वो कि तत्काल जो ना कि रक्त के
0: रक्त का
1: जरूरत,
0: जरूरत पड़ी।
1: या कोनो महिला है जो प्रसव पीड़ा में पीड़ित हैं आ उनके भी देखा रक्त का जरूरत पड़ल, तो उनके भी देखा रक्तदान की जरूरत पड़ल तो आदमी दे देना।
0: हाँ
1: या देखा कि बहुत गंभीर बीमारी में रहा था वह में देखा जब अपने बहुत लोग जाना भागे लगा ना, अपने जो सगा हुआ ना वो लोग देखा भागे लगा ना, लेकिन तू अगर रक्तदान कैले हुआ तो तुहार नाम देखा जो न रक्त बैंक होला ना वहाँ देखा दर्ज होला।
0: कहे
1: आ
0: ना
1: तू
0: भैया।
1: तू मंगवा तुहरे ऊपर कोनो आफत विपत आई ना तो तुरंत तुहके रक्त बैंक से रक्त मिल जाई, तुहके चढ़ा देवल जाई।
0: एकरे साथे साथे मोहन भैया एक बात और बताई हम
1: हाँ
0: कि
1: का
0: रक्तदान करे से ना जैसा कि आप अभी बतौला हा मरीज के कोनो तकलीफ कोनो समस्या ना होला बल्कि रक्तदान करे वाले के भी खुद फायदा होला।
1: एकदम सही बात कहला है। आ देखा यह बात हम कहल चाहत रहिए कि रक्तदान अगर कैला ना तो रक्त जब शरीर से निकलेला तब फिर ओकरे बने के प्रक्रिया शुरू हो
0: शुरू
1: जाला,
0: हो जाला
1: नया रक्त बने
0: नया
1: लगेला,
0: बनला
1: आ वो जो ना एक तरह से जो ना ताजा खून हो जाला।
0: ताजा खून होला
1: आ
0: और
1: ये देखा डॉक्टर लोग भी कहना ना कि देखा रक्तदान हमेशा करते रहे के
0: हाँ
1: चाहिए।
0: हाँ कहा कि देखा रक्तदान जब कैले से ना जो अपन खून होला तो डॉक्टर भैया लोग बतावा ना कि जब रक्तदान करबा नया खून जब बनी तो उसे का होला ना कि जो खून शरीर के अंदर घूमेला जो मोटा गाढ़ा हो जाला रक्तदान कैले से वो नया खून बनेला। तो ऐसे हृदयघात के भी मतलब जो जो हार्ट अटैक आवाला लोगन का
1: हाँ
0: उसे भी बचाव होला।
1: वो कम हो जाला। तो देखा एक बात ही बताई कि अब तू सोच था कि जो ना कि के रक्तदान कर सकेला,
0: बिल्कुल
1: ये
0: मोहन
1: जाना
0: भैया
1: बहुत जरूरी
0: बहुत
1: है।
0: जरूरी है
1: हर कोई देखा रक्तदान भी ना कर
0: ना कर
1: सकेला।
0: सकत।
1: देखा सबसे पहली बात यह कि जेकर उम्र 18 से 65 साल के बीच में होकर वो रक्तदान कर सकेला, आ जेकर वजन जो ना 45 किलोग्राम से कम हो वो देखा ना कर
0: ना
1: सकेला,
0: कर सकना
1: 45 या उससे ऊपर होए के चाहिए। आ देखा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ना रक्तदान में
0: मोहन
1: कि
0: भैया।
1: देखा आदमी के हेपेटाइटिस का बीमारी ना होए के चाहिए, डायबिटीज के बीमारी ना होए के चाहिए, आ HIV पॉजिटिव ना होए के चाहिए। तो ये कुल बीमारी अगर उनके अंदर है तो वो केहू के रक्तदान
0: ना कर
1: ना कर
0: सक।
1: सके ना। आ देखा एक चीज़ और बताई
0: हाँ मोहन
1: कि
0: भैया।
1: रक्तदान से जब सोचा ला ना कि हम पतील हो जाए, हम दुबरा आ जाए, हमारा चेहरा खराब हो जाए, ये तरह का तमाम तरह का
0: हाँ
1: भ्रांति हाँ
0: भ्राती है
1: लोगन के
0: जोन।
1: दिमाग में, लेकिन ऐसा देखा कौनो बात नहीं है, ऐसे बहुत फायदा होला। समझत हुआ ना।
0: बिल्कुल। हम ही एक बात यो कह मोहन भैया
1: हाँ
0: कि आज देखा अपने समाज में ना जागरूकता बढ़ाए के बहुत जरूरत हो। एकरे लिए स्कूल कॉलेज और सामाजिक जोन संस्था हैं सभी के रक्तदान का शिविर लगावे के चाहिए ताकि लोग के एकरे महत्व के बारे में एकरे जानकारी के बारे में अवगत करावल जा
1: एकदम सही
0: सके।
1: कहला। एक ही देखा जन अभियान बनाओ की जरूरत है कि गांव
0: बिल्कुल।
1: गांव वार्ड वार्ड से लेकर के गली गली तक के जो ना लोगन पहुंचावे, जे पढ़ल लिखल वो, जे ना पढ़ल लिखल वो रक्तदान के महत्व के समझाए आ ओके जो ना कि अपनावे। आ देखा एक बात और बताई,
0: हाँ मोहन
1: देखा
0: भैया।
1: जोन बात तभी तू छुटल रहला, तू यो ना कि देखा जो ना कि रक्तदान बार बार करवा।

0: कितना दिन में करवा।
1: हाँ, ये मोहन भैया देखा, ये जैसे कि आप एक साल में दो बार छः छः महीना पे आप रक्तदान कर सकना, और डॉक्टर भैया लोग कहलन कि छः छः माह पे आप रक्तदान कर सकना, और महिला जो हैं
0: हाँ
1: उनके जैसे 7 महीना हो गया, 8 महीना हो गया, क्योंकि महिला लोग के और भी
0: हाँ कहीं 4 महीना भी हो।
1: कहीं 4 महीना भी हो,
0: हाँ 4 महीना
1: तो
0: को
1: उस
0: भी।
1: स्वास्थ्य के हिसाब से जैसे आप बताइए ना कि अगर
0: हाँ
1: हिस्ट पुष्ट महिला है या पुरुष है हुआ, तो वो रक्तदान 5 महीना 4 महीना पे कर
0: आ
1: सकना।
0: देखा जी रक्तदान करल चाहत हुआ देखा उनके लिए देखा हमारे बनारस में देखा बहुत जगह सुविधा हुआ जैसे सर सुंदरलाल अस्पताल बा वहाँ जाके कर लें या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बा लौरावीर पे वहाँ जाके रक्तदान
1: जेके
0: कर
1: ब्लड
0: दें।
1: बैंक कहल जाला।
0: हाँ आ ओकरे बाद देखा जो ना कि शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल बा कपिल चौरा पे वहाँ भी देखा रक्तदान करे के सुविधा सबके देवल गई है आ वहाँ से रक्त लेवे का भी सुविधा हुआ
1: बिल्कुल
0: दोनों
1: बिल्कुल।
0: सुविधा हुआ। तो देखा ये कहम ने कि तब उनका रक्तदान के बाद भइल आई जो महादान जगह कहल जाला
1: महादान
0: तो हमन के भी करे के चाहिए आ दूसरे के भी एक लिए प्रेरित
1: प्रेरित
0: करे
1: करे के
0: के
1: चाहिए।
0: चाहिए। आ देखा बात हमन का आगे भी देखा बोला भैया जारी रही लेकिन इस सने सुनवा देवल जाए।
1: बिल्कुल सुनवा दो भैया।
2: दादू आपका तारा मतलब
3: बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा।
4: पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका।
2: हाँ बैल मुझे मार मतलब
3: मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे।
5: अब ये कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना।
2: इसका मतलब
5: इन्हीं से पूछो।
6: समझा पापा।
7: आरबीआई कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: सनेस्त हो गेल, सनेस्त हो गेल बोला भैया।
1: हाँ
0: लेकिन
1: मोहन
0: ये
1: भैया।
0: कहमने कि देखा एगरी देखा गर्मी का देखा मौसम चला था आ देखा बहुत जानी हूँ ना कि देखा जौ का चना का और अन्य चीज का देखा बनाए के जो है ना का पियत हुआ जानत हुआ सतुआ।
1: सतुआ।
0: तो सतुआ पियत हुआ लोग लेकिन देखा उमे देखा जौ जो है ना ये देखा बहुत महत्वपूर्ण जरखा अनाज हुआ एकर का आयुर्वेदिक महत्व है ये पर देखा बातचीत हुआ डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे से अपने दिनेश कुमार सिंह भैया बतिवले हुआ तो हूँ सुना आप पंच लोग भी सुना।
1: बिल्कुल भैया।
9: शेखर पांडे हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे आप आयुर्वेद संकाय चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर होंगे। आज हम आपसे जौ के बारे में जानना चाह। दरअसल आजकल जो सबसे बड़ी चुनौती बा लोगों के सामने स्वास्थ्य के खान पान मिलावट पर्यावरण में प्रदूषण जो कारण लोग तरह तरह की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो लोगों का ध्यान आओ थे जो पहले का समय रहा वो ज़्यादा ठीक रहा है। तो इसलिए जौ के बारे में आज आपसे जानना चाह कि बहुत लोग जौ के प्रेमी रहा थे खाए चाहते लेकिन जौ मिलत ना बाटे यो समस्या रहा थे। तो आप बताओ कि जौ का महत्व का हो।
10: नमस्कार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जौ हमारे यहाँ भारत में बहु प्राचीन समय से वर्णित धान्य है। वेदों में भी इसका वर्णन है। हविष्यान्न के रूप में इसका प्रयोग होता था। आयुर्वेद का जो प्राचीनतम आकर ग्रंथ है चरक संहिता उसमें जौ का वर्णन है, उसके गुण बताए गए हैं। गोधूम का भी वर्णन है, गेहूं का
9: जी।
10: सुश्रुत संहिता में भी इसका वर्णन है और इसको धान्य वर्ग के भीतर रखा गया है। आहार है तो जितनी भी धान्य है उनको हमारे यहाँ धान्य वर्ग और कुधान्य वर्ग के रूप में रखा गया।
9: अच्छा,
10: तो
9: धान्य और कुधान्य।
10: तो धान्य वर्ग के भीतर जैसे गोधूम है, जव है, जितने भी चावल हैं, शाली है, सस्टिक है, इस तरह के साठी चावल, शाली चावल जो हम लोग खाते हैं इनका वर्णन है। और कुधान्य वर्ग के भीतर जैसे श्यामक है, सावा, कोद्रव है, कोदव, चीना है जिसको चेना कहते हैं, इसी तरह से रागी है, मड़ुआ है, ये जो इस तरह के द्रव्य हैं इनका वर्णन है। लेकिन इनका भी उस समय उपयोग होता था। कुधान्य कहने का तात्पर्य यह नहीं था कि इनका उपयोग नहीं होता था, इनका भी बहुतायत पाया जाता था, इनका प्रयोग होता था। तो जो धान्य वर्ग के भीतर वर्णित है ये सूक धान्य कहा जाता है। ऐसे धान्य जिसमें सूक होता है, टूण होता है, जैसे धान है, इनमें ये सूक धान्य के भीतर है। और अन्न वर्ग के भीतर वर्णित है यानी हमारे जो भोजन का आहार का अंश होता है उसके भी भीतर वर्णित है और औषधियों के भीतर भी वर्णित है। ये रबी की फसल है जैसा सभी लोग जानते हैं और पादप है, एक वर्षीय है यानी 2-3 महीने के भीतर ये उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। औषधीय फल पाकांत है, जो फल आने के बाद जिनका अंत हो जाता है वो औषध वर्ग के भीतर गिने जाते हैं। इस दृष्टि से गोधूम, यव,

इत्यादि औषध वर्ग के भीतर भी हैं। ये बॉटनिकली वो ऐसी फैमिली का प्लांट है हार्डियम वल्गेरी, जो का बहुत समय से प्रयोग होता रहा है। सुश्रुत संहिता में इसको कसाय, मधुर, कट विपाक, शीत, कफ पित्त नाशक और लघु कहा गया। चरक संहिता में इसको गुरु कहा गया, लेकिन अंत में शास्त्रकारों ने कहा कि अगुरु है। लघु, गुरु, शीत, मधुर, वात

0: हैं, जैसे इसको एक मानक के रूप में भी लिया जाता था, जैसे कोई चीज अगर छोटी करनी है तो कहते थे यवकुट कर दीजिए, यानी इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जव के समान हो जाए, या यव की मात्रा के समान, या औषधि कितनी लेनी है तो सरसों के बराबर लेनी है, यव के बराबर लेनी है, गुंजा के बराबर लेनी है, तो यव एक उसका मानक भी था। और इसको अन्न के रूप में भी प्रयोग किया जाता था, पेय के रूप में भी प्रयोग किया जाता था, और अन्न के रूप में इसका जो प्रयोग होता था, इसको भून के खाने का, इसको भिगो करके भून करके जिसको गांव में कहते हैं गुरी बनाना, उस तरह से करके इसकी रोटी बना करके, इसका सत्तू बना करके, मंथ बना करके प्रयोग किए जाते थे। आदवी जौ का सत्तू गांव में प्रयोग होता है,
1: जी
0: विशेष रूप
1: जी
0: से ग्रीष्म ऋतु में। मंथ माने जो घोल करके पीते हैं उसको मंथ कहा जाता है।
1: अच्छा
0: इसके अतिरिक्त जौ का कच्चा प्रयोग होता था, पहले इतनी फसल होती नहीं थी, जब थोड़ी गरीबी होती थी और जाड़े के दिन में भोजन की कमी होती थी, तो मटर के या चने के बीजों के साथ कच्चे जौ का होलाक बना करके, जिसको हम लोगों के यहां कहते हैं कि होली के समय में भून करके चने का होरहा बनाते हैं, तो उसी के समय इसका होलाक बना करके और उसके साथ कच्चा भून करके उसमें नमक इत्यादि मिला के खाते थे। तो इस तरह से जौ का ये प्रयोग हमारे यहां शास्त्रों में होता रहा है। जौ पोषक है, जौ के भीतर 65% तो स्टार्च होता है, 10-15% प्रोटीन होती है, 2-3% लिपिड होता है, ये 2004 की एक स्टडी थी उसके अनुसार पता चला। अब जौ के जो औषधीय गुण है जिसके नाते इसको प्रयोग किया जाना चाहिए और जिस पर विशेष रूप से ध्यान गया, जो आपने चर्चा का मूल विषय बताया कि हमारे यहां भारत को डायबिटीज की राजधानी कहा जाने लगा, मधुमेह के जितने रोगी पूरे विश्व में हैं उतने के आसपास रोगी भारत में हैं,
1: जी
0: और इनकी संख्या नित्य प्रति बढ़ती जा रही है। यानी अब तो चाय लाने वाला भी ये पूछता है कि आपकी बिना चीनी की चाय रहेगी या चीनी वाली चाय रहेगी, किसी भी दुकान पर जाइए, यानी हम मधुमेह की दिशा में इतना बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह से स्थौल्य जन्य जो बीमारियां होती हैं, तब चिंतकों का, विचारकों का, वैज्ञानिकों का, चिकित्सकों का ये ध्यान गया कि क्या हमारे आहार में ही कोई कमी ऐसी तो नहीं है जिसके कारण हम लोग रोगी होते जा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो हमारे पुराने थे जिनको हमने कुधान्य कह करके जिनकी खेती छोड़ दिया
1: जी
0: उनको प्रयोग किया जाए, और उसमें भी सबसे अच्छा है कि अगर यो का प्रयोग किया जाए तो इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होता है, देर में पचता है, स्टार्च इसमें अधिक होने के बावजूद ऐसा नहीं कि सडन खाने के बाद ही तुरंत ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देगा। तो जौ के ऊपर भी और अन्य धान्यों के ऊपर भी ध्यान गया लोगों का। तो जौ को जो शास्त्रों में कहा गया है कि ये स्थौल्य का नाश करता है, रुक्ष है तो मोटापे को नाश करता है, बीटा ग्लूकान एक पदार्थ होता है इसके भीतर जिसमें यह देखा गया है कि उसकी एक्टिविटी ऐसी होती है कि वो मोटापे को नष्ट करता है। रुक्ष है, इसलिए जितना भी तेल से घी से बनने वाले पदार्थ हैं उनके विपरीत कार्य करता है। तो इसलिए जौ का प्रयोग मोटापे में, और मोटापा एक चीज नहीं होती, मोटापा जिसे कहते हैं कि बहुत सी बीमारियों का मूल है, बहुत सी बीमारियों का एक सामूहिक स्वरूप है मोटापा, जिसमें हमारा कार्य कम हो जाता है, शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, और मोटापा बढ़ने के साथ मधुमेह है, हृदय के रोग हैं, यहां तक कि किडनी की बीमारियां हैं, जोड़ों की बीमारियां हैं, सब अपने आप घेर लेती हैं। तो अगर एक मूल जो फैक्टर है अगर मोटापा कम कर दिया जाए तो बहुत सी बीमारियां तो अपने आप कम हो जाएंगी, हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, हमारे हृदय की भी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। तो यह का इसके लिए, स्थौल्य के लिए प्रयोग किया गया। दूसरे, मधुमेह में जौ की रोटी देने का विधान है, कई स्थानों पर कहा गया है कि व्यक्ति जौ की रोटी खाता हुआ सतयोजन भ्रमण करे या भिक्षाटन करता हुआ सतयोजन भ्रमण करे, तो 100 योजन अगर भीख मांग के खाएगा तो कोई उसको बढ़िया भोजन तो देगा नहीं, तो रुक्ष आहार लेगा, और 100 योजन जाने का मतलब है कि कम से कम दिन में 2-4 कोस तो चलेगा, तो 2-4 कोस चलेगा तो उसकी जो सेडेंटरी हैबिट है, बैठे रहने की आदत है, वो कम होगी, और रुक्ष भोजन करने से उसके जो मूल तत्व हैं कि रुक्ष भोजन करने से उसके शरीर में जो प्रमेह हेतु कफकिच्च सर्वम कहा गया है कि प्रमेह का मूल कारण में कफवर्धक पदार्थ हैं, तो जौ कफ का नाश करता है, इसलिए जौ का विशेष प्रयोग किया जाता है।
1: जैसे जो जौ का प्रयोग करते हैं लोग ना, तो कहते हैं कुछ मिला ला, गेहूं भी मिला ला या और कुछ मिला ला।
0: अच्छी बात है, वो दो तरीके, दो चीजों के लिए करते हैं। पहली चीज तो जौ को अगर सही ढंग से न साफ किया जाए तो उसके पीसने के बाद उसका जो छिलका होता है वह गले में कुछ लोगों के लगता है, हालांकि वो है तो अच्छा, उसके देने के बाद इसीलिए मलवर्धक कहा गया है और कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, मलबद्धता को दूर करता है। लेकिन अगर प्रयोग की दृष्टि से उतना उचित नहीं है, आपको नहीं सुटेबल हो रहा है,

0: तो आप उसमें कोई अन्य दूसरे अन्न भी मिला सकते हैं। दूसरा कारण होता है कि उसका जो प्रिपरेशन बनाना है हमको, जो बनाना है, जैसे सत्तू बनाना है तो अकेले जौ का सत्तू है तो उसके साथ चना पीस के मिला दीजिए, 2 चम्मच जौ का सत्तू, 1 चम्मच चने का सत्तू मिला के शाम को, या जिन लोगों को अम्लपित्त में, ऐसे शास्त्रों में मना किया गया है, लेकिन मैंने देखा है कि जिन लोगों को बराबर, विशेष रूप से ड्यूडिनल अल्सर के पेशेंट को, उनको मैं कहता हूं कि आप अपने पास पुड़िया बना के रखे रहा करिए और हर 2 घंटे बाद 2 चम्मच जौ, 1 चम्मच चना घोल के, कभी उसमें घी डाल के, कभी काला नमक डाल के, कभी चीनी डाल के, जैसी आपकी इच्छा करे, जैसा आपका स्वास्थ्य रहे, उसको पिया करिए, धीरे धीरे धीरे धीरे अल्सरेशन पूरा खत्म हो जाता है। कम से कम 20 इसके प्रमाण है मेरे पास। उनको मैं कहता हूं कि इसको करके 2-3 महीने बाद मेरे पास आइएगा।
1: देखो सुबह भी पी सकते, शाम को भी, रात में भी।
0: हाँ, शीत होता है थोड़ा सा, इसलिए बहुत रात को तो नहीं, लेकिन चूंकि ग्रीष्म ऋतु में तो कभी ले सकते हैं। जौ का बहुतायत प्रयोग भी लोग ग्रीष्म ऋतु में करते हैं, और अगर अन्य ऋतुओं में लेना है तो उसमें उस तरह के पदार्थ मिला लेते हैं, जैसे चना है या इस तरह के पदार्थ हैं जो जाड़ों में लिए जा सकते हैं, उनके साथ उसका प्रयोग करते हैं।
1: जी जी।
0: दूसरी, जौ में एक सबसे अच्छी विशेषता है कि ये लघुपाकी है, आसानी से पच जाता है। तो जिस व्यक्ति में 2 तरह के आहार होते हैं, एक को हम कहते हैं कि संतर्पण आहार, एक को कहते हैं अवतर्पण आहार। संतर्पण आहार वो होते हैं जिनसे बल मिलता हो शरीर को, जो शरीर की पुष्टि करते हैं। अवतर्पण आहार का तात्पर्य होता है कि जिनसे शरीर का बल कम हो, शरीर की पुष्टि कम हो। जैसे कोई व्यक्ति बहुत मोटा है तो उसमें हमको संतर्पण आहार नहीं दे सकते, लेकिन कोई व्यक्ति रोगी है, कोई व्यक्ति बहुत दुबला पतला है तो संतर्पण आहार देना है। लेकिन अगर कोई रोगी दुबला पतला तो है लेकिन उसकी अग्नि मंद है, अभी बुखार से उठा है, डेंगू मलेरिया कालाजार कोई बुखार हुआ है, उसको आप अधिक भोजन दे नहीं सकते, तो लघु संतर्पण आहार उसको देना होता है, जो पचने में तो आसान हो लेकिन शरीर को बल दे। जौ इसके लिए सबसे उपयुक्त आहारों में से है। जौ की रोटी अगर उसको दी जाए साफ करके बना करके, तो ये लघु है और संतर्पण है। इसके अतिरिक्त इसका जो मंथ है या इसका मध्य जो बनाते हैं, देखिए बार्ली लोग देते हैं, तो इसका जो सुक्त होता है, सिरके की तरह से हल्का खट्टा हो जाता है, वो अग्निदीपक होता है। उसमें काला नमक इत्यादि डाल करके जौ का जो सुक्त बना करके दिया जाता है, तो वह अग्निदीपक होता है, भूख को बढ़ाता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। तो जौ का यह भी एक प्रयोग है कि उसको बार्ली के रूप में प्रयोग करने का, या अग्निदीपक के रूप में प्रयोग करने का, या सूरा के रूप में प्रयोग करने का भी इसका प्रयोग किया जाता है। और लघु संतर्पण इसका जो गुण है वह बहुत उपयोगी है, आसानी से,
1: जो कमजोर लोग हैं,
0: हाँ, लघु माने की जो आसानी से पच जाए। चरक संहिता में इसको गुरु लिखा है, लेकिन लोग शास्त्र में ये कहते हैं कि वो अगुरु शब्द है, दोनों के संधि में वो गुरु शब्द नहीं आएगा, अगुरु शब्द है, यानी ये गुरु नहीं है। इसलिए ऐसे रोगियों में जिनकी पाचन शक्ति अच्छी न हो, भोजन को अच्छे से न पचा सकते हो, उनको गेहूं की रोटी देने के स्थान पर इसको दिया जाए। तीसरे, कुछ लोगों ने नया ये करना शुरू किया है कि कुछ लोगों को गेहूं की एलर्जी होती है, वो कहते हैं कि ग्लूटेन प्रोटीन जो होता है, या ग्लूटेन की एलर्जी जिनको होती है, या गेहूं के प्रोटीन की जिनको एलर्जी होती है, उनमें अगर जौ की रोटी दी जाए तो उनका सम्यक पालन पोषण होता रहता है। कई लोग अभी हमारे जानकारी में अच्छे दिशा में कार्य कर रहे हैं, रिजल्ट तो अभी उनका नहीं हम पब्लिश कर सकते, लेकिन उनका यह मानना है कि किडनी की बीमारियों में भी जौ के द्वारा बना हुआ आहार देना चाहिए।
1: अच्छा,
0: तो इस तरह से जौ एक सम्यक आहार है, जिसको आप 12 महीने, हमारे यहाँ चरक संहिता में इसको नित्य सेवनीय द्रव्य कहा गया है। चरक संहिता चिकित्सा 5 में इसको नित्य सेवनीय द्रव्य, यानी ये रोज के खाने की चीज है, कोई ऐसा नहीं कि आज इसको खाना है कल नहीं खाना है। अब एक चीज रोज एक तरह से तो नहीं ले सकते, तो इसलिए लोग कभी गेहूं मिला लेते हैं, कभी चना मिला लेते हैं, कभी और किसी के साथ ले लेते हैं, कभी सत्तू के रूप में लेते हैं। ये उनके शरीर की अवस्था, अपने रोग की अवस्था, अपने स्वास्थ्य की अवस्था के अनुसार उनको लेने की छूट है, वो जौ का प्रयोग कर सकते हैं।
1: तो गर्मी में तो बहुत ही अच्छा बाट है,
0: गर्मी में तो इसका सत्तू बहुत ही अच्छा है।
1: और जाड़े में भी रोटी वगैरह खाएं,
0: जाड़े में रोटी ले सकते हैं, जाड़े में भी हल्का सत्तू ले सकते हैं गुनगुना करके। ये पानी वृक्ष है तो पानी अधिक लेता है, तो एक बार अगर इसका कोई प्रयोग करते हैं तो उसके बाद जल की पर्याप्त मात्रा आपको लेनी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने जौ के आयुर्वेदिक महत्व के बारे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मोहन भैया,
3: हाँ बोला,
2: कितना नगद के बात कही रहल। देखा जौ का जो अपन आयुर्वेदिक महत्व अपने जीवन में हो, इसके बारे में देखा नगद का जानकारी देना डॉक्टर चंद्रशेखर पांडे भैया, और इनसे बात बत कही कह लेना अपन दिनेश कुमार सिंह भैया। तो मोहन भैया,
3: हाँ,
2: बात बत कही तो होगा, तब आगे का सुनवात हुआ?
3: आगे हम समझे थे कि तू का सुनल चाहत।

0: हुआ, तो सुनल चाहत हुआ कि कुछ मन मनसाय होख है, कुछ
1: बिल्कुल
0: गीत गौनई होख है।
1: बिल्कुल हो
0: तो
1: कृपया।
0: देखा ही शिव प्रसाद पाल और उनकर साथी लोग का, ही देखा गौनई है, तो हूँ सुना पंच लोग भी सुना।

0: बोला भैया,
1: हाँ मोहन भैया,
0: बन जा पहरुआ चाहे किसान हो, देखा ई शिव प्रसाद पाल और साथी लोगों ने देखा गीत रल एकदम मन एकदम देखा देशभक्ति से या किसानी कुल के समावेश से एकदम खुश हो गए।
1: खुश हो गए।
0: आ देखा ही का हमने कि लगे हाथे जो ना कि कल अपने पंचायती में जो कार्यक्रम सुनवा लिए ओकर भी जानकारी किसान भाई लोगन के दे देवल जाए। तो देखा कल सवेरे 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में देखा विषय हुई वृक्षारोपण हेतु तैयारी। आज जानकारी दी है दिनेश कुमार सिंह भैया।
1: और सांझी के अपने कृषि जगत कार्यक्रम में 6:30 पे
0: हाँ
1: विषय रही छिड़काव में उपयोगी उपकरण एवं नाशी जीव रसायनों के मात्रा का गणना,
0: अच्छा
1: एकर जानकारी दी हैं डॉक्टर शिशुपाल सिंह और रामकृष्ण भैया। इनसे बात कहने हुआ तो हम पंचलों के अगर ध्यान से सुनिए तो
0: हाँ
1: देखा मोहन भैया
0: हाँ
1: बात
0: सर
1: बत कही हो तो तब घड़ी इशारा करत हो चले कर तब पंचलोगन से इजाजत लेवल जाए तो
0: हाँ तो
1: पंचो
0: पंचो
1: राम
0: राम राम।
1: राम।

0: अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता, विषय था पीयर प्रेशर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स। वार्ताकार थी डॉक्टर शिखा सिंह।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार आशा देवी पत्नी कविराम निवासी ग्राम विदापुर थाना कछवा जनपद मिर्जापुर ये दिनांक 28 अप्रैल 2026 की शाम 3:30 से पर बिना घर से बताए निकली और वापस नहीं लौटी। इनके विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार हैं। उम्र 21 वर्ष कद 5 फीट 3 इंच चेहरा लंबा और रंग गोरा है। आखिरी बार देखे जाते समय इनका पहनावा आसमानी रंग की साड़ी लाल रंग का ब्लाउज और कान में तरकी पहने हैं और साथ में अपना 2 वर्ष का बेटा भी साथ ले गई हैं। इनके विषय में यदि कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया अपने नजदीकी थाने को अथवा SO कछवा को मोबाइल नंबर 9454404009 पर सूचित करें। यहीं से मिली एक और सूचना के अनुसार मुन्ना लाल यादव ग्राम तुलसी थाना लालगंज जनपद मिर्जापुर की निवासी हैं। ये दिनांक 11 अप्रैल 2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है। उम्र 65 वर्ष कद 5 फीट 2 इंच शरीर दुबला पतला है। इनके विषय में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो कृपया अपने नजदीकी थाने को अथवा प्रभारी लालगंज को मोबाइल नंबर 9454404013 पर सूचित करें। सूचनाएं समाप्त हुईं।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से बुरा हाल, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश, अगले 3 दिन तक जबरदस्त गर्मी की चेतावनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ की अहम बैठक, गलत सूचनाएं फैलाने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश के 44 जिलों में कल होगी लेखपाल भर्ती परीक्षा, 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल, परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। और प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन, 22 मई से शुरू होगी मकानों की गिनती। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आज 48 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा प्रदेश में सबसे गर्म जनपद रहा, जबकि हमीरपुर और प्रयागराज में पारा 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए लू चलने को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। इसी क्रम में प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने प्रदेश के सभी मंडलीय, जिला, संयुक्त शहरी और ग्रामीण चिकित्सा संस्थानों में गर्मी से पीड़ितों को समुचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अस्पतालों में अतिरिक्त बेड, जीवन रक्षक दवाओं और आवश्यक औषधियों का पर्याप्त भंडार रखने के निर्देश दिए हैं। तेज गर्मी से वन्य जीवों को बचाने के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। इटावा सफारी पार्क के उपनिदेशक विनय सिंह ने बताया कि सफारी में शेरों के लिए एसी और खस की चटाई का प्रबंध किया गया है।
4: सफारी पार्क में जो भी वन्य जीव हैं, उनको गर्मी और लू से बचाने के लिए एक विशेष इंतजाम किए जाते हैं, जिनके अंतर्गत जो हमारे हाउस हैं, उनमें खस की चटाई लगाना, इसके साथ कूलर को लगाते हैं ताकि कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। जो भी ब्रीडिंग वाली शेरनी है, उसके नवजात बच्चे रहते हैं, शावक रहते हैं साथ में, उनको एसी के माध्यम से उनके कमरे का तापमान मेंटेन किया जाता है।
3: गर्मी और लू से बचाव के लिए विभिन्न जनपदों में स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है। फतेहपुर में जिलाधिकारी ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं मिर्जापुर में भी 15 जून तक स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है।

0: कानपुर में जिलाधिकारी ने कक्षा 8 तक के सभी विद्यालयों को 31 मई तक बंद रखने का आदेश दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में आगामी नीट यूजी 2026 की दोबारा होने वाली परीक्षा के मद्देनजर केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में श्री प्रधान ने परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। श्री प्रधान ने ऐसे नेटवर्कों पर कार्रवाई के निर्देश दिए जिसमें फर्जी जानकारी फैलाने वाले चैनलों की सक्रिय पहचान, उन्हें ब्लॉक करना और हटाना शामिल है। शिक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि गलत सूचना पर तुरंत रोक लगाई जा सके और परीक्षा प्रणाली की अखंडता की रक्षा की जा सके। प्रदेश में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा कल 44 जिलों के 861 केंद्रों पर होगी। करीब 8,000 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में लगभग 366,700 अभ्यर्थी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार ने तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिन जिलों में सर्वाधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे वहां विशेष सतर्कता बरती जाए। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए जाएं और होल्डिंग एरिया बनाए जाएं। उन्होंने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के साथ ही लोकल इंटेलिजेंस को भी सक्रिय रखने के निर्देश दिए। गर्मी के मद्देनजर परीक्षा केंद्रों पर विद्युत आपूर्ति, पीने का पानी की व्यवस्था के अलावा नजदीकी अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखने को कहा गया है। परीक्षा की जिला और राज्य स्तर के कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जाएगी। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: परीक्षार्थियों के आवागमन के लिए रेलवे द्वारा विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन ने बरेली जंक्शन और मथुरा जंक्शन के बीच दो स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने की घोषणा की है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर लखनऊ परीक्षा स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रहा है जो 21 मई की रात 12:30 बजे गोरखपुर से रवाना होगी और सुबह 6:40 पर लखनऊ पहुंचेगी। वापसी में लखनऊ गोरखपुर अनारक्षित स्पेशल ट्रेन शाम 6:15 बजे लखनऊ से चलकर रात 11:55 पर गोरखपुर पहुंचेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर क्लस्टर, प्रोजेक्ट गंगा और गेहूं के इनहाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क में छूट जैसे विषयों की समीक्षा की। इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एक रिपोर्ट।
2: यूपी डेटा सेंटर क्लस्टर की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना उत्तर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि डेटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी इससे जोड़ा जाए। प्रोजेक्ट गंगा की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन युवाओं को डिजिटल उद्यमी के रूप में चुना जाए उन्हें गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तेजी से विस्तार और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने गेहूं के इन हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की रणनीति की समीक्षा के दौरान मंडी टैक्स और मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश की मंडियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsoneair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन है। राज्य के जनगणना निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि नागरिकों को स्वगणना के लिए census.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य को चुनना होगा और फिर परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल नंबर या ईमेल के जरिए लॉगिन कर जानकारी भरनी होगी। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी ने बताया कि गणना पर 11 अंकों का एक कोड प्राप्त होगा जिसे प्रगणक के घर आने पर देना होगा जिससे जानकारी का सत्यापन होगा। उन्होंने लोगों से स्वगणना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी जो 22 जून तक चलेगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल

0: मंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री बने भूपेन्द्र चौधरी ने आज सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के तौर पर कामकाज संभाल लिया है। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त हो।
1: और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से एमएसएमई विभाग की भूमिका है और उस भूमिका में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हो, इसका प्रयास और इस लक्ष्य को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में 46% निर्यात इन्हीं इकाइयों के द्वारा उत्पादित सामानों का होता है, तो इसे आगे बढ़ाएं, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। और उत्तर प्रदेश एक विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, हमारा विभाग उसमें एक महती भूमिका निभाए, इसका प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे।
0: प्रयागराज से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच सीधी उड़ान सेवा शुरू करने को नागर विमानन महानिदेशालय ने मंजूरी दे दी है। प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक राजेश चावला ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट का संचालन शुरू होने के बाद प्रयागराज जेवर फ्लाइट की समय सारणी जारी की जाएगी। नई उड़ान सेवा शुरू होने से प्रयागराज से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी।
2: प्रयागराज एयरपोर्ट के ऊपर एक हफ्ते में 60 फ्लाइटों का आना जाना है, और अभी ये जो जेवर एयरपोर्ट जून से शुरू हो रहा है, इसमें अभी जैसे ही ये थोड़ा अभी तो कुछ कम फ्लाइटों से वहां से आना जाना शुरू होगा। इंडिगो की एक फ्लाइट शेड्यूल्ड है जो कि जेवर से प्रयागराज और प्रयागराज से जेवर जाएगी, क्योंकि अभी उसका पूर्णतः वो नहीं हुआ, शुरुआत नहीं हुई। जैसे ही वो जैसे जैसे फ्लाइट की संख्या वहां बढ़ती जाएगी तो हमारे यहाँ भी एक फ्लाइट आने का समर शेड्यूल में प्रोग्राम है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से बुरा हाल, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश। अगले 3 दिन तक जबरदस्त गर्मी की चेतावनी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ की अहम बैठक। गलत सूचनाएं फैलाने वाले नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। प्रदेश के 44 जिलों में कल होगी लेखपाल भर्ती परीक्षा, 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। परीक्षार्थियों के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें। और प्रदेश में जारी स्वगणना का कल अंतिम दिन, 22 मई से शुरू होंगी मकानों की गिनती। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म का नाम था याराना। अनजान के लिखे इस गीत को सुरों से सजाया था राजेश रोशन ने। अगला गाना हमने लिया है फिल्म स्वीकार किया मैंने से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। शब्द रचना है निदा फाजली की, संगीत है उषा खन्ना का।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म एक नज़र से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को सुरों से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अगला गाना है फिल्म कब तक चुप रहूंगी से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की। गीत के बोल लिखे हैं HS बिहारी ने। संगीत है बप्पी लहरी का।

अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म लिबास से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, शब्द रचना गुलजार की और संगीत है आरडी बर्मन का।

कार्यक्रम रसरंग अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। हमारी आज के कलाकार हैं व्यास जी मौर्य। आइए सुनते हैं इन्हीं का गाया हुआ भजन।

अभी आपने सूरदास की रचना सुनी, अब सुनिए कबीरदास की रचना। कलाकार हैं व्यास जी मौर्या।

कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम रस माधुरी।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है फिल्म खेल से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। जावेद अख्तर की बोल, संगीत है राजेश रोशन का।

अगला गाना है फिल्म इजाजत से। इस गीत को गाया है आशा भोसले ने, शब्द रचना गुलजार की, धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

अगली आवाज़ आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी की। फिल्म का नाम है मेरे हुजूर। बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

अगला गाना है फिल्म मेरा साया से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। शब्द रचना राजा मेहंदी अली खान की, धुन बनाई है मदन मोहन ने।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लिया है फिल्म जूली से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत है राजेश रोशन का।

इसी के साथ कार्यक्रम रस माधुरी अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
1: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व

0: विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए BDR के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो, हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
2: हमने आज JPC को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
1: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया।

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की सीबीआई हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर

0: फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honour, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: मिस्टर मोदी सेड इंडिया इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-29 विल प्रोवाइड अ प्रैक्टिकल एंड फ्यूचरिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर बायलैटरल टाइज। He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Center and noted that the India-Italy Defense Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defense sector.
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: Mr. Modi stressed that India and Italy are united in viewing terrorism as a serious threat to humanity and underlined the need for strong action against terror financing networks.
2: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए

0: has won the toss and elected to field. Yesterday, Rajasthan Royals defeated Lucknow Super Giants by 7 wickets in a high-scoring match in Jaipur. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas, including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's fastest growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between host Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at the Eden Gardens. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को बेहतर करके खुसूसी जामे शराकतदारी में बदलने से इत्तेफाक किया है। परिकैन ने हिसास मादनियात, दिफा और ज़िरात समेत कलीदी शोबों में बाहमी तावन को फरोग देने की गरज से 15 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को FAO के आला तरीन बावकार एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। वजीर आजम ने इस अवार्ड को भारत के किसानों को मंसूब किया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने शहरियों के तरमीमी कानून के तहत गैर कानूनी बांग्लादेशी दरअंदाजों को मुल्क बदर करने की कार्रवाइयों को फौरी तौर पर शुरू करने का ऐलान किया है। अक्वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट में कहा गया है कि मगरबी एशिया की जंग के बावजूद इस साल भी भारत 6.4% की पेशरफ्त के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी मईशत बना रहेगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आइंदा 2 से 3 दिनों में शदीद गर्मी की लहर की सूरत हाल का रेड अलर्ट जारी किया है। और IPL क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान मैच ईडन गार्डन्स में जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत और इटली ने आज मुख्तलिफ शोबों में 15 माहिदों को हतमी शक्ल दी। इन माहिदों पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इटली की उनकी हमनसब जॉर्जिया मेलोनी के दरमियान वफ्द की सतह की बातचीत के बाद आज रोम में दस्तखत किए गए। ये माहिदे दोतरफा ताल्लुकात की खुसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने की निशानदही करते हैं। दोनों फरीकों ने अहम मादनियात, दिफा, ज़िरात, आयुर्वेद, साइंस और टेक्नोलॉजी, बहरी ट्रांसपोर्ट और बंदरगाहों जैसे अहम शोबों में इश्तराक को वसत देने की खातिर कई मफाहमत नामों पर भी दस्तखत किए। भारत और इटली टैक्स जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ तालमेल मजबूत करने पर भी मुत्तफिक हो गए हैं। बातचीत के बाद सहाफती बयान में वजीर आजम मोदी ने कहा कि फरीकैन ने दोतरफा ताल्लुकात को तकवीत देने के लिए काफी गौर व खौज किया है।
2: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: जनाब मोदी ने कहा कि भारत इटली मुश्तरका स्ट्रेटेजिक कार्रवाई जाती मंसूबा 2025-2029 दोतरफा ताल्लुकात के लिए अमली और मुस्तकबिल पर मबनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा। जनाब मोदी ने कहा कि दोनों फरीक भारत इटली इख्तराई मरकज के कयाम की जानिब काम कर रहे हैं और भारत इटली दिफाई सनती रोड मैप ने दिफाई शोबे में मुश्तरका पैदावार और मुश्तरका तरक्की के नए इम्कान रोशन किए हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि भारत और इटली बहरी ताकतों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों की जदीदकारी, लॉजिस्टिक्स और नीलगु मईशत के शोबों में ताउन को वसत देंगे।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और

0: इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली यूक्रेन, मगरबी एशिया और आलमी कशीदगी के दीगर मामलों पर लगातार रबते में रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि आगे का रास्ता मुजाकिरात और सिफारतकारी ही है। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दी को इंसानियत के लिए संगीन खतरे के तौर पर देखने के मामले में भारत और इटली मुत्तहिद हैं और दहशतगर्दी नेटवर्क्स की माली मावनत के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत है।
0: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: इक्तिसादी इश्तराक को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक भारत और इटली में डिजाइन और डेवलप करने और दुनिया को फराहम करने के नजरिए के साथ आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए इटली की वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि यह खुसूसी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बाहमी एतमाद और मुश्तरक इकदार पर मबनी भारत इटली ताल्लुकात की बढ़ती गहराई की अक्कासी करती है। मोहतरमा मेलोनी ने भारत बहरुल काहल खित्ते में जहाजरानी की आज़ादी को यकीनी बनाने और कलीदी शोबों में ताउन को मुस्तहकम करने की अहमियत पर जोर दिया।
2: Italy and India share a joint vision on many of the huge challenges of our time, including rules, economic security, the resilience of the value chains, the promotion of peace, inclusive development. It is extremely important to have freedom of navigation in the Indo-Pacific sector is where we share the same vision of a free, inclusive and open Indo-Pacific.
1: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इटली के सदर सर्गियो मटारेला से भी मुलाकात की और तिजारत, टेक्नोलॉजी, साफ सुथरी तवानाई और सकाफत जैसे शोबों में दोतरफा साझेदारी को मजीद वसत देने पर तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के पांचवें और आखिरी मरहले के तहत कल इटली पहुंचे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन और नॉर्वे का अपना दौरा मुकम्मल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को आज इटली के रोम में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO के सदर दफ्तर में बावकार एग्रीकोला एजाज से नवाजा गया। एजाज हासिल करने पर वजीर आजम ने इस इनाम को भारत के लाखों किसानों, मवेशी पालने वालों, माहीगीर किसानों, जरई साइंसदानों और कारकुनों को मंसूब किया। ये इनाम FAO के डायरेक्टर जनरल कु डोंग यू की जानिब से पेश किया गया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि यह एजाज खुराक की यकीनी फराहमी, पायदार तरक्की और इंसानी फलाह व बहबूद के तई भारत के गैर मुतजलजल अज़्म की अक्कासी करता है। उन्होंने जोर दिया कि खुराक की यकीनी फराहमी महज पॉलिसी का मामला नहीं है बल्कि इंसानियत के तई जिम्मेदारी भी है। वजीर आजम ने कहा कि भारत पायदार, मौसम के मुताबिक लचकदार और मुस्तकबिल के लिए तैयार ज़रई इको निज़ाम तश्कील दे रहा है, जबकि मुल्क भर में साइंसी ज़राअत को मिशन मोड पर फ़रोग़ दिया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि टेक्नोलॉजी भारतीय ज़राअत की बड़ी ताकत बन रही है और ज़राअत का मुस्तकबिल सिर्फ ज़्यादा पैदावार में नहीं बल्कि बेहतर पैदावार में है।
0: आज हमारा देश एग्रीकल्चर सेक्टर में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ड्रिवन अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही नहीं, एक ऐसा फार्मिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं जो सस्टेनेबल भी हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट भी हो और फ्यूचर रेडी भी हो। और इसलिए पूरे भारत में साइंटिफिक एग्रीकल्चर को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जा रहा है।
1: एग्रीकोला एजाज FAO के डायरेक्टर जनरल की जानिब से दिया गया आला तरीन एजाज है। यह एजाज दुनिया में खुराक की यकीनी फराहमी, पायदार ज़राअत, गरीबी कम करने और गजाइत की बेहतरी के जिमन में गैर मामूली और तवील मुद्दती ताउन करने वाले सरकर्दा आलमी रहनुमाओं और अफराद को दिया जाता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारत जामे इक्तिसादी शराकतदारी के माहदे की मदद के साथ 100 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर गई है। नई दिल्ली में तकरीब के दौरान भारत में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर अब्दुल नासिर अल शाली ने कहा कि दोनों ममालिक ने साल 2032 तक बाहमी तिजारत का 200 अरब अमरीकी डॉलर का हदफ मुकर्रर किया है।

नमस्कार, आदाब। इस्तकबाल है आप सभी का। मैं हूं आपकी दोस्त आराधना और आप सुन रही हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम अंजुमन। अंजुमन, जहां हम लफ्ज़ों को एहसासों में पिरोते हैं और सुरों की महफिल सजाते हैं। आज हमारे तरकश में वो नगीने हैं जिन्होंने गज़ल की दुनिया को एक नया आसमां दिया है। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। आज की अंजुमन की शुरुआत करती हैं जयपुर घराने की उन दो नायाब शख्सियतों के साथ जिनकी आवाज़ में रूहानी पाकीज़गी और गज़ब की जुगलबंदी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की। इन दो भाइयों की मखमली आवाज़ जब कानों में रस घोलती है तो दिल कहीं दूर वादियों में खो जाता है। आज की हमारी पहली गज़ल के बोल भी कुछ ऐसे ही हैं जो बहती हवा की तरह आज़ाद हैं। आइए सुनते हैं हुस्न और इश्क के जज्बातों से सजी ये लाजवाब गज़ल, मैं हवा हूँ।

दोस्तों, वक्त भले ही आगे बढ़ जाए, लेकिन कुछ आवाज़ें, कुछ वादे कभी पुराने नहीं होते। और जब बात गज़ल की हो, तो मलिकाए गज़ल के बिना हर अंजुमन अधूरी है। जी हाँ, हमारी महफिल की अगली फनकार हैं अजीम और सदाबहार बेगम अख्तर। उनकी आवाज़ का वो दर्द, वो कशिश, वो पारंपरिक अंदाज सीधे दिल को छू लेता है। शायर मोमिन खान मोमिन साहब की लिखी ये कालजयी गज़ल और बेगम अख्तर की वो दर्द भरी तान बीते दिनों की याद दिला देती हैं। आइए सुनते हैं आज की महफिल की बेहद ख़ास गज़ल।

आइए अंजुमन की एक और शमा रोशन करते हैं तलत महमूद साहब की उस रेशमी आवाज़ के साथ जो आज भी दिलों में धीमे से दस्तक देती है।

जब वादों और बातों में ये झूठी सच्ची कश्मकश चलती है तो गज़ल की दुनिया की सबसे अजीम जोड़ी जगजीत सिंह और चित्रा सिंह जी की आवाज़ दिल को छू लेती है। इनकी आवाज़ में वो भारीपन, वो ठहराव है जो इस खट्टे मीठे एहसास को बयां करता है। आइए सुनते हैं अंजुमन की अगली बेहद खूबसूरत पेशकश।

जब बात रिश्तों की गहराइयों और ज़माने की हकीकतों तक पहुंचती है तो इंसान सब कुछ समझ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि कौन सी बातें सिर्फ बहलाने के लिए थीं और कौन सी हकीकत। तब दिल थोड़ा मायूस ज़रूर होता है, पर वो सच को कबूल कर लेता है। जब जज्बात इस शिद्दत पर पहुंच जाएं, तो उस्ताद ग़ुलाम अली साहब की खनकती और दर्द भरी आवाज़ के अलावा कोई और उसे बयान नहीं कर सकता। उनकी गायकी का अंदाज सीधे रूह में उतर जाता है। तो दिल थाम कर बैठिए, अंजुमन को मुकम्मल करने आ रही है ग़ुलाम अली साहब की ये सदाबहार गज़ल।

चिरागों को बुझा दो, अब उजालों की ज़रूरत क्या है, जब दिल में ही किसी की याद का दिया जल रहा हो। इसी दुआ के साथ सुरों का ये कारवां यूं ही चलता रहे और हमारी आपकी मुलाकातें यूं ही सजी रहें। मैं आराधना अंजुमन से इस प्रोग्राम से आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। शबा खैर, शुभ रात्रि।

0: अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी गीत और गजलों पर आधारित कार्यक्रम अंजुमन। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कानून और हम।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम कानून और हम में आप सभी का स्वागत है। आजकल एक वर्ड डिजिटल अरेस्ट भाषा में है। लोग बहुत सारी कॉल्स ऐसी आती है और लोगों को लगता है कि अचानक से क्या हो गया और लोग हड़बड़ाए से न जाने क्या क्या कर देते हैं। हमने सुना तो बहुत सारा है लेकिन हमें सच में जानकारी अभी भी नहीं है कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है, किस तरह से हमारे लिए नुकसानदायक है, ये हमें कुछ भी नहीं पता होता है। तो इस विषय पे बहुत विस्तार से जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन वाराणसी के साइबर एक्सपर्ट श्री श्यामलाल गुप्ता जी और उसके कानूनी जो पहलू होते हैं उस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमथेश पांडे जी। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद मैम।
3: धन्यवाद मैम।
1: सर, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो बहुत एक मन में आता है कि डिजिटल अरेस्ट, नाम तो सुना है लेकिन सच में ये होता क्या है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे।
2: जी मैम, आज का जो साइबर क्राइम है ये सबसे ट्रेंड मामलों में से एक है डिजिटल अरेस्ट। अगर इसके बारे में हम बताएं तो इसमें होता क्या है, इसके कैसे होते हैं पहलू पे हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को एक फोन आता है, वो फोन या तो डायरेक्ट वॉइस कॉल होते हैं या आईवीआर कॉल होते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड जिसे कहते हैं कॉल्स, वो आईवीआर कॉल होते हैं। उसमें बताया जाता है कि आपका मोबाइल जो सिम है इसका दुरुपयोग हो रही है, इससे मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड अथवा किसी भी अवैध सामान की डिलीवरी या अवैध नशा करने वाले ऐसे सामानों की डिलीवरी हो रही है। तो हमारे पास जैसे ही सामने वाला व्यक्ति, फ्रॉड व्यक्ति हमें फोन करता है और हमारे बारे में पूरा बता देता है कि मैं फलाने बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे हैं और इस तरह से आपका फोन मिसयूज हो रहा है। जैसे ही ऐसे हमें बताया जाता है और उनके द्वारा बताया जाता है कि आपके बारे में पूरी तहकीकात होगी और आपकी जो भी डिटेल्स होंगे आपको मुझे बतानी पड़ेगी, उसके बाद उनके द्वारा कहा जाता है कि आपको मेरे ऑफिसर फोन करेंगे, उस अनुसार आपको अपनी डिटेल बतानी होगी, आप चाहें तो आके हमारे मुंबई अथवा किसी ऐसे स्थान पे जो पर्टिकुलर प्लेस बताते हैं वहां पर आके अपनी पूरी इंक्वायरी करा सकते हैं अथवा आप ऑनलाइन हमारी इंक्वायरी में सहयोग कर सकते हैं। चूंकि ऐसे मामलों में दूरियां ज्यादा होती हैं तो प्रथम दृष्टिया व्यक्ति ये चाहता है कि जो भी हमारे वेरिफिकेशन होने हैं वो ऑनलाइन ही हो जाए। तो हम उनके जो साइबर फ्रॉड होते हैं अपनी कॉल दूसरे को ट्रांसफर करते हैं और वहां से साइबर फ्रॉड जो व्यक्ति होता है वो हमें फोन करता है दोबारा से, अब बताता है कि मैं फला सीबीआई का या किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का व्यक्ति हूं और आपकी इंक्वायरी की जाएगी, आपको एक स्काइप अथवा ऐसा ही जो वीडियो कॉलिंग जिससे होती है एक ऐप डाउनलोड करनी होगी। उसके बाद वो ऐप डाउनलोड हमें करा लेते हैं, कराने के बाद पीछे की बैकग्राउंड ऐसा होता है जैसे किसी भी पुलिस ऑफिसर का बैकग्राउंड होता है, जैसे उसमें भारत सरकार का झंडा और पुलिस का झंडा, पीछे पुलिस का लोगो और सामने बैठा हुआ व्यक्ति खुद वर्दी में होता है। ऐसे में हमें विश्वास हो जाता है कि व्यक्ति जो है वो पुलिस का है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का है। तो हम क्या करते हैं, उनसे कन्वर्सेशन शुरू करने लगते हैं और वो धीरे धीरे मेरे नाम, पिता का नाम, मेरे बैंक डिटेल, मेरे जितने भी खाते हैं उनके, उसमें कितने पैसे हैं, सभी डिटेल हमें बताने होते हैं और सामने वाले व्यक्ति हमसे लगातार पूछते हैं। अच्छा, वो भी एक और शर्त रखते हैं कि इस दौरान आपको आपके कॉल को डिसकनेक्ट नहीं करना है, अभी आप डिजिटली अरेस्ट हैं और इस दौरान आपको इस बात को किसी से चर्चा भी नहीं करनी है जब तक कि हमारी इंक्वायरी पूरी नहीं होता जाता। ऐसे में व्यक्ति डर जाता है, सहम जाता है कि इस तरह की हमारे साथ हो रही है और वो किसी से बिना बताए हुए उस जांच को में अपनी चीजें बता

0: ता रहता है। लास्ट में जैसे ही बारी आती है कि आपके खाते में पैसे हैं, अगर उसमें 10 लाख 5 लाख जो भी पैसे हैं, वो पैसे उनके द्वारा बताया जाता है कि आरबीआई द्वारा दिया गया खाते में आपको ट्रांसफर करना है, और उसके बाद जैसे ही जांच होगी वो पैसे स्वतः आपको वापस मिल जाएंगे। और ऐसे में विश्वास करते हुए व्यक्ति द्वारा आरटीजीएस, यूपीआई या किसी अन्य माध्यम से बैंक जाकर या फिर अपने मोबाइल में नेट बैंकिंग के थ्रू पैसे को ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही पैसा ट्रांसफर हो जाता है और सामने वाले के अकाउंट में पहुंच जाते हैं, उसके बाद फोन कट जाता है। कटने के बाद पूरी कनेक्टिविटी हटा दी जाती है और उसके बाद हमें एहसास होता है कि हमारे साथ कहीं ना कहीं धोखा हो गई है।
1: जैसे डिजिटल अरेस्ट, ये शब्द आमतौर पर श्रोताओं के बीच में काफी चर्चा में रहता है।
0: जी
1: तो डिजिटल अरेस्ट की अवधि क्या होती है? अमूमन जैसे व्यक्ति घर पे है
0: जी
1: तो वह डिजिटल अरेस्ट हो गया है,
0: जी
1: वह प्रथम दृष्टया जब बात उससे शुरू हुई तो बात 7 बजे सायंकाल शुरू हुई,
0: जी
1: तो ये कितनी देर तक डिजिटल अरेस्ट रहता है और कब तक वो आरटीजीएस की प्रक्रिया या अन्य चीजें हैं जो पूरी होती हैं?
0: नहीं, मैं इस भ्रांति को दूर करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति जब एक बार ऑनलाइन कॉल पे आ जाता है तो उसके बाद उसके माइंड को ऐसा डाइवर्ट कर दिया जाता है, सेट किया जाता है कि आप पुलिस के कस्टडी में डिजिटली हैं, बट वो कॉल लगातार चलता नहीं रहता है, वो रुक जाते हैं, फिर आपको रिटर्न बैक में कॉल।
1: अर्थात उसके दिशा निर्देश को आप मानते रहते हैं,
0: जी, उसके द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देश को मानते रहते हैं।
1: तो वह दिशा निर्देश जो आपको मतलब किसी पीड़ित व्यक्ति को मिलता है तो वह दिशा निर्देश जैसे उसको मिला कि ये करना है, ऐसी ऐसी चीजें हैं, तो उस दिशा निर्देश का अनुपालन करने के लिए वो किसी से चर्चा नहीं करता है?
0: जी, वो दिशा निर्देश केवल उनके द्वारा दिए गए ही दिशा निर्देश को ही फॉलो करता है, अलग से किसी नहीं अपने घर के किसी मेंबर से और नहीं किसी मित्र या किसी अन्य पुलिस को, उसको लोकल पुलिस को बताने से मना ही किया गया होता है, क्योंकि ऐसा उनको बता दिया जाता है कि अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं या अपने पुलिस में बताते हैं तो आपके विरुद्ध बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ऐसा डर उनको दिखाया जाता है।
1: तो इस डर से वह व्यक्ति जब तक पैसा नहीं दे लेता है, पीड़ित
0: जी
1: व्यक्ति जब तक
0: जी
1: अपने को लूटने का या अपने साथ ठगी होने का जब तक उसको एहसास नहीं होता है, तब तक वह डिजिटली अरेस्ट माना जाता है।
0: बिल्कुल
1: तो डिजिटली अरेस्ट का यह अवधि जो है, यह 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन 10 दिन,
0: जी,
1: ये
0: मैं बता देना चाहता हूं कि अभी एक हमारे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन वाराणसी पे 3 करोड़ 55 लाख का मामला आया था। इसमें जो महिला के साथ धोखाधड़ी हुई थी उसे 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया था। 3 दिन के बाद ही उन्होंने हमारे पास आए और उनकी शिकायत दर्ज की गई।
1: तो 3 दिन तक वह महिला जो है वह डिजिटली अरेस्ट थी
0: जी
1: और इस बीच में उसने पैसे का ट्रांजेक्शन भी किया।
0: बिल्कुल
1: तो जो पैसे का ट्रांजेक्शन किया, वह पैसे का ट्रांजेक्शन पहली बार जैसे उसने किया,
0: जी
1: कुछ भी धनराशि हो, फिर दोबारा किया, फिर तिबारा किया, ऐसे कई बार किया, तो उसको यह कब महसूस हुआ कि उसके साथ साइबर फ्रॉड हो गया है?
0: जब उन्होंने उनका एचडीएफसी में खाता था,
1: जी
0: अब उन्होंने जब पैसे को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने के बाद जब उनको उनको लगा कि अब पैसे वापस नहीं आ रहे हैं हमारे, चूंकि साइबर फ्रॉड द्वारा यह बताया गया था कि अपने पैसे को आप आरबीआई द्वारा दिए गए खाते में ट्रांसफर करने के पश्चात जांच कर ली जाएगी, जांच के पश्चात आपको पुनः वापस पैसे कर दिए जाएंगे। जब उनके पैसे नहीं आए तो उनको लगा कि हमारे साथ साइबर फ्रॉड हो गया है।
1: वास्तव में जैसे किसी के पास मान लीजिए कि 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ की बात आप कर रहे हैं, तो 3 करोड़ रुपया सामान्य धनराशि नहीं होती है।
0: जी
1: 3 करोड़ की धनराशि को मोबाइल से या बैंक में जाके या अन्य तरीके से, किसी भी तरीके से उसको देना पड़ता है जिसने आपको डिजिटली अरेस्ट किया हुआ है,
0: जी
1: साइबर फ्रॉड करने वाले व्यक्ति ने।
0: जी
1: तो वह व्यक्ति जो है एक बार में जैसे कुछ धनराशि दिया, तो उस धनराशि को देने के बाद वो साइबर फ्रॉड जो कर रहा है वो कुछ कहेगा ना?
0: हाँ बिल्कुल। अब इसमें होता क्या है कि सामने वाले व्यक्ति द्वारा ही बताया जाता है कि मेरे खाते में इतना है, पैसे के खुद जो पीड़ित होता है वो बता देता है कि मेरे खाते में इतना पैसे हैं, और वो पार्ट बाय पार्ट मंगवाते हैं, विभिन्न खातों में मंगवाते हैं, तो इसमें एक टाइम शेड्यूल लगता है।
1: नहीं, जैसे ये

0: शेड्यूल की बात आपने बताई, तो पहली बार 25 लाख दिया, 50 लाख दिया, 1 करोड़ दिया, तो वह व्यक्ति जो पीड़ित व्यक्ति है जिसका पैसा जा रहा है उसको क्या कहा जाता है, क्यों वो पैसा बराबर देता रहता है?
1: उनके द्वारा ऐसा कन्विंस किया जाता है, ऐसा इनके माइंड सेट किया जाता है कि इतने ऐसे ऐसे पैसे इस टुकड़ों में या ऐसे देना है आपको।
0: अच्छा, इस देने के पश्चात वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा?
1: हाँ, नहीं,
0: जब ये जांच पूरी हो जाएगी तो वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा।
1: जी जी,
0: तो जब पैसा वापस मिल जाएगा उसके बाद आप, आपके खिलाफ कोई अपराध बनता नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, आप घर पे रहिए, कोई दिक्कत
1: उसमें
0: नहीं।
1: मनी लॉन्ड्रिंग का भी, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसका भी ये बताते हैं कि आप, आपके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, तो अगर जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं तो इस बात का भी कभी कभी डर लगता है कि ऐसा ना हो कि हम इस केस में, ऐसे केस में फंस जाएं, तो वो इस वजह से उनके दिमाग में सेट रहता है कि हमारी जांच हो जाए, मैं चूंकि ऐसा कुछ हमने अपराध नहीं किया है, तो वो एज ए विश्वास करके पैसे को ट्रांसफर करते हैं और दे देते हैं, क्योंकि वो अपराधी विक्टिम ऐसा कोई अपराध किया नहीं होता तो इस वजह से विश्वास कर लेता है।
0: नहीं, जैसे एक विषय ऐसा ध्यान में आता है कि मान लिया कि पैसा प्रथम दृष्टया आपने 10 लाख 5 लाख या जो भी धनराशि ली, धनराशि लेने के पश्चात किसी चीज का भय दिखाया जाता है।
1: जी,
0: जिस भय को आपको दिखाया जाता है उस भय का कुछ न कुछ तो कारण आपके इर्द गिर्द होगा ही।
1: जी,
0: पीड़ित व्यक्ति के इर्द गिर्द होगा ही कुछ भय का कारण, तो उसमें जो है पीड़ित व्यक्ति उस भय के कारण को कब उससे बाहर हो पाता है? जैसे जब पूरा पैसा उसका चला जाता है तब होता है?
1: जब पूरे पैसे उसके चले जाते हैं उसके बाद ही उसे एहसास होता है कि मेरे साथ साइबर धोखाधड़ी हो गई है।
0: अच्छा, यह जो कॉल आती है अमूमन व्हाट्सएप कॉल आती है कि कंप्यूटर और उसके,
1: हाँ, मैं कॉल इस तरह में तीन तरह से आती है, पहला
0: लैपटॉप या टैब वगैरह किसे कैसे?
1: हाँ, पहला तरह की कॉल जो होती है वो वॉइस कॉल होती है, फिर उसके बाद कभी कभी किसी केस में व्हाट्सएप कॉलिंग होती है, जो व्हाट्सएप बीपीएन नंबर यूज करके भी ऐसे कॉल आते हैं, तीसरा जो होती है वीडियो कॉलिंग सीधी भी आती है। तो कॉल्स सभी तरह के आते हैं, जो वॉइस कॉल भी कह सकते हैं या व्हाट्सएप कॉल कह सकते हैं आप, या फिर आईवीआर, जिसे आईवीआर कॉल को कंप्यूटर जनरेटेड कॉल्स कहते हैं, तो ये भी कॉल्स ऐसे भी आते हैं।
0: नहीं, जैसे ये कॉल आ गई तो हर बार जो पीड़ित व्यक्ति के पास अलग अलग नंबर से कॉल आएगी कि किसी एक नंबर से आएगी?
1: अलग, चूंकि ऑफिसर पहला जो कॉल करने वाला व्यक्ति होता है वो बताता है कि हमारे सीनियर ऑफिसर आपसे कांटेक्ट करेंगे
0: जी।
1: तो या तो कॉल को ट्रांसफर की जाती है या फिर नए नंबर से कॉल आता है ताकि उसे विश्वास हो जाए कि यह हमारे अब उच्च अधिकारी इनको अप्रोच कर रहे हैं।
0: तो वो एक कमरा बना होगा बढ़िया से और उस कमरे में अधिकारी की तरह कोई बैठा होगा, वह बात करेगा।
1: जी, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी जब वीडियो कॉल पे जब आ जाता है विक्टिम, तो पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल जैसा एक पुलिस ऑफिसर का रूम होता है वैसा ही बिल्कुल बैकग्राउंड होता है, सामने मेज होती है, मेज के ऊपर वर्दी पहन के सामने वाला व्यक्ति एक रूम बनाए रहता है पहले से।
0: अब श्याम लाल जी, अब जैसे मान लीजिए कि अब पीड़ित को पता चल गया कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड या मेरे पैसे का ले लिया गया है, साइबर अपराधियों द्वारा ले लिया गया है, विभिन्न खातों में मंगा के ले, तो उसको कहाँ अप्रोच करना चाहिए, इस विषय में जानकारी देनी चाहिए कि मेरे साथ हुआ है, तो सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, क्या करना
1: अगर
0: चाहिए?
1: अगर हमारे साथ ये मुझे पता चल गया,
0: दिमाग में यह प्रश्न हमेशा रहता है कि इस तरह की घटना मान लीजिए हो गई, हालांकि सबसे पहले तो सावधानी ही बचाव है इस तरह की घटनाओं में,
1: बिल्कुल
0: कतई किसी भी व्यक्ति को नहीं पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अमूमन चारों तरफ ये प्रयास भी हो रहा है सरकार के द्वारा भी और अन्य माध्यमों के द्वारा भी कि कोई व्यक्ति इस तरह की कॉल न रिसीव करे और न उसके झांसे में आवे।
2: एक प्रश्न मेरे मन में भी आ रहा है सर कि जैसा सर ने कहा कि इस तरह की कॉल रिसीव न करे तो हमें कैसे पता चलेगा, अमूमन महिलाएं घर में अकेले रहती हैं दोपहर के टाइम में या शाम के टाइम में, और अगर इस तरह की कोई बात अचानक से आती है, कोई कॉल रिसीव करने के बाद ऐसी सूचना हमें पता चलती है तो घबरा जाती हैं कि हाँ भाई पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हो गया, तो अगर ऐसा कुछ लगे तो हम कैसे पहचाने कि ये इस तरह की कॉल है और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
1: जी, आपके प्रश्न का ये उत्तर ये है मैम कि अगर हमारे पास कॉल्स आती है, कॉल्स में +91 भारत का इंडिया का कोड है, +91 से शुरू होकर कोई भी नंबर आते हैं तो उस नंबर को आप उठा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं।

0: सकते हैं, लेकिन प्लस 91 के अलावा प्लस 92 अथवा प्लस 1 करके 10 डिजिट ना होकर वो 5 डिजिट 6 डिजिट ऐसा हो तो उस कॉल को उठाने से परहेज करना चाहिए प्रथम। द्वितीय में ये है कि कोई कॉल्स आते हैं जब आपने आपके मोबाइल में वो रेड होते हैं, थोड़े रेड होते हैं, उसको स्पैम कॉल कहते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उस कॉल को भी आप नहीं उठाएं। तीसरा, अगर कोई अननोन नंबर से आपको वीडियो कॉल कर रहा है तो आप कभी भी नहीं उठाएं, नहीं तो आपके साथ अन्य भी साइबर अपराध जो इस समय चर्चा में सेकेंड चर्चा में है वो सेक्सटार्शन है, ऐसे अपराध आपके साथ हो सकते हैं। तो वीडियो कॉल अगर अननोन नंबर से आपके पास आ रहे हैं तो उसे कृपया आप नहीं उठाएं। अगर आपको लगता है कि कोई हमारे रिश्तेदार का है तो नंबर की जांच कर लें, उसके पश्चात पुनः आप अपने तरफ से लगाएं।
1: अच्छा, मान लीजिए कॉल उठा ही लिया और बात हो ही रही है, जैसा कि सर ने बताया कि इस तरह की चीजें होती हैं, तो अगर हमें ऐसे कोई कह रहा है तो हमारा दिमाग तो होता है लेकिन हो सकता है कि हम उनके उसमें आ जाएं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम उनकी बातों के बहुत प्रभाव में ना आए, क्या हम दिमाग लगा सकते हैं?
0: नहीं, पहला चीज आपको मैं बता दूं, श्रोताओं को भी बताना चाहता हूं कि कोई भी पुलिस हमारे खासतौर पे इंडिया में भारत में कोई भी पुलिस ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं करती है। तो आप पहली चीज तो यही हमें समझ लेना है कि कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिसमें सीबीआई है, रा है, इंटेलिजेंस है, और कोई भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं करती। अगर आपने किसी भी तरह की गलती करी है तो आपको प्रॉपर नोटिस सर्व की जाएगी, उसके पश्चात आपसे पूछताछ के लिए आपको तलब किया जाएगा, परंतु ऑनलाइन कोई भी आपसे वेरिफिकेशन कोई भी पुलिस नहीं कराती, पहला। दूसरा यह है कि कोई भी अगर पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग संबंधित केसेस हैं तो ऐसे केसेस में पैसे की ट्रांसफर कराना नहीं कोई पुलिस, नहीं कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कहती है और नहीं कोई गवर्नमेंट संस्था या उस संबंधित व्यक्ति कहता है कि आप पैसे को यहां ट्रांसफर करिए, कोई भी संस्था ऐसा कभी नहीं कहता है। तो इससे हमें बचना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो 100% वो फ्रॉड व्यक्ति है।
2: नहीं, एक विषय, जैसे किसी व्यक्ति को, अभी मैंने चर्चा किया कि किसी व्यक्ति को जिस समय पता चला कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है
0: जी,
2: उसको क्या करना चाहिए?
0: हाँ, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे सभी लोगों को जानना चाहिए। अगर आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड हो गया है तो सबसे पहले आप उसके ट्रांजैक्शन आईडी, यूटीआर नंबर या रेफरेंस नंबर, टाइम और डेट और कितना अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है उसे एक पेज पे लिख लें, और जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी उतना जल्दी 1930 पे आपको फोन करना चाहिए, फोन करके बताना चाहिए कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे साइबर फ्रॉड हो गया है।
2: 1930 नंबर अगर ना मिले तो?
0: अगर 1930 नंबर नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में हमें पुलिस डायल नंबर जिसे 112 कहते हैं 112 उसे डायल करें और बताएं कि सर मेरे साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, हमारी कॉल साइबर शाखा में ट्रांसफर करने की कृपा करें, और उसके बाद आपकी कॉल ट्रांसफर हो जाएगी, उसके बाद आप अपनी बात बता सकते हैं।
2: अगर किसी व्यक्ति के साथ साइबर फ्रॉड हो गया और उसने तत्काल सूचना दे दिया
0: जी
2: 1930
0: जी,
2: तो 1930 पे सूचना देने के पश्चात क्या इस बात की संभावना है कि उसका पैसा जो है सुरक्षित उसको वापस मिल जाएगा?
0: जी, मैं इस बारे में बता देना चाहता हूं कि अगर आपके साथ 1930 पे घटना के बाद तुरंत आपने किया तो ठीक वैसा ही है जैसे किसी व्यक्ति के दुर्घटना के जितना जल्दी बाद डॉक्टर के पास पहुंचाया जाए, वैसे ही अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो जाती है तो जितना जल्दी आप हमें बताएंगे, साइबर सेल को, साइबर थाना को बताएंगे या 1930 पे कॉल करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके पैसे रिटर्न होने के, सेव होने के चांसेस बचे रहते हैं।
2: तो अगर जल्दी से जल्दी हम उस सूचना को 1930 पे शेयर कर देते हैं तो निश्चित रूप से पूरी धनराशि आपको मिल सकती है।
0: जी, ऐसा ही एक प्रकरण हमारे साथ, हम लोगों के साथ है, लंका निवासी हैं, उनके साथ 10,71,000 का एक डिजिटल अरेस्ट का मामला आया था। उन्होंने हमें लगभग एक घंटे के अंदर ही अप्रोच किया था और बताने में खुशी है कि उनके पूरे पैसे 10,71,000 उनको वापस उनके खाते में लौटा दिया गया है। उसका बस यही था कि उन्होंने एक घंटे के अंदर ही हमें संपर्क किया और

0: हमने फिर होल्ड कराकर सभी एजेंसियों के माध्यम से वापस करा दिया।
1: अच्छा, अब इसका एक दूसरा पक्ष भी है, वह अपराधी जो इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहता है, वह अपराधी किस प्रकार से पकड़ा जाता है, कैसे सजा होती है, या इस तरह के अपराधियों के विषय में कैसी कार्रवाई होती है, इस विषय में भी थोड़ा आप चर्चा करें, ताकि विवेचना के उन पहलुओं को भी हम लोगों के सामने ला सकें और जो उनको सजा मिलती है उस बिंदु पे भी चर्चा कर सकें।
0: हाँ, हम लोगों द्वारा अभी तक लगभग 129 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। अब इसमें क्या होता है कि जिन लोगों द्वारा कॉल किया गया है, पैसे के ट्रांसफर किया गया है, जिस खातों में किया गया है, तो उसमें क्या होता है कि यूपीआई अथवा किसी इंटरनेट माध्यम से आईपी का यूज करते हैं। उस आईपी से हम लोग कहीं ना कहीं ट्रैक कर लेते हैं और ट्रैक करके उस संबंधित जो मुख्य अपराधी होते हैं उन तक हम लोग पहुंच जाते हैं और जो भी सुसंगत धाराओं में उनको हम लोग अरेस्ट करते हैं और फिर माननीय न्यायालय को प्रेषित करते हैं।
1: जैसा कि आईटी एक्ट 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत जो है 3 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है, भारतीय न्याय संहिता 2023 में ऐसे अपराधों के लिए आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान
0: जी
1: है,
0: जी
1: तो इस तरह से अपराधियों के सजा दिलाने के विषय में भी कुछ विषय आपके ध्यान में आ रहा है कि ऐसा अपराधियों को सजा मिली है या कुछ बातें पढ़ी
0: हाँ
1: हैं?
0: हाँ हमारे यहाँ एक मुकदमा अपराध संख्या 48/21 है, उस जिसमें दो अभियुक्तगण हैं। नाम लेने में चूंकि दो साबित हो चुके हैं, तो मंटू मंडल और प्रमोद मंडल, इन लोगों को 7 साल का सजा हुई है हमारे थाने के थ्रू, और अभी इन्होंने जेल में ही हैं। और इस तरह का हम लोग अंत मतलब सजा भी करवाने का काम करते हैं।
1: अच्छा, अब एक विषय, जैसे अभी साइबर क्राइम या साइबर अपराध का एक हिस्सा है डिजिटल अरेस्ट,
0: जी
1: उसके अलावा भी अन्य उसके उसकी शाखाएं हैं जो साइबर अपराध की कोटि में आती हैं,
0: जी
1: और उनके विषय में भी कुछ चर्चा हो जाए ताकि उस विषय पे भी थोड़ा सा ध्यान श्रोताओं का पड़ जाए।
0: मैं बता देना चाहता हूं कि इस समय का जो वाराणसी और वाराणसी के आसपास के जो शहर का एरिया है, एक सबसे मुख्य कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग साइबर अपराध, उसमें से क्या है कि यहाँ पे हमें एक फोन आता है और ये गार्जियंस के पास फोन आते हैं। फोन आने के बाद बताया जाता है कि आपका बेटा इस गलत कार्य में पड़ा फंस गया है और इसे आपको छुड़ाना होगा। चूंकि मैं दिल्ली से बोल रहा हूं और एसओजी से बोल रहा हूं, ऐसा डराया जाता
1: ये
0: है।
1: वीडियो कॉल आती है
0: नहीं,
1: कि सामान्य कॉल?
0: ये सामान्य कॉल होती है अथवा व्हाट्सएप कॉल। तो ऐसे में सामने वाला व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि आपका बेटा इस दिल्ली में रहता है, इस स्कूल में पढ़ता है, इतना तक उनके पास नॉलेज होता है। अब ऐसी कंडीशन में गार्जियन डर जाते हैं। कई बार क्या करते हैं, लड़के को अपने बच्चे या बच्चियों को कॉल मिलाते हैं तो कोचिंग में या स्कूल में या कहीं संस्था में रहने के कारण कॉल नहीं मिलता है और व्यक्ति डर जाता है। और डरने के बाद जैसा उस साइबर अपराधी द्वारा बताया जाता है कि जुर्माना के तौर पे आपको 1 लाख 2 लाख 50 हजार आपको इस खाते में देना है तो आपका बेटा या बेटी छूट जाएगा, तो डर से ऐसे व्यक्ति पैसे ट्रांसफर कर देता है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि कोई भी जुर्माना, ऐसा अगर किसी कॉल आती है, ऐसा आपको डराया जाता है, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही कॉल आते हैं उस कॉल को आप काट दें और अपने बच्चे या बच्ची से पहले बात कर लें, वार्ता कर लें, उसके पश्चात ही आप आगे की कोई भी स्टेप फॉलो करें। आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि कोई भी पुलिस ऑनलाइन जुर्माना कभी नहीं लेती है, अर्थात किसी खाते में कभी नहीं लेती है। अगर ऑनलाइन लेती है तो पुलिस के साइट पे जाकर वहां जो दिए गए लिंक है उस लिंक के माध्यम से ही जुर्माना दिया जा सकता है।
1: विवेचना के क्रम में कभी कभी हम लोगों ने ऐसा सुना है कि उस आवाज की क्लोनिंग,
0: जी
1: जैसे मेरे बच्चे की आवाज की जैसी ही आवाज मुझे सुनाई देगी, उसका रोता हुआ सुनाई देगा, उसकी रोती
0: जी
1: हुई आवाज
0: जी
1: सुनाई देगी,
0: जी
1: उसकी पापा मुझे बचाओ या इस तरह की आवाजें भी आ सकती हैं।
0: जी,
1: इस विषय में भी आप कुछ कहना चाहेंगे कैसे?
0: बिल्कुल बिल्कुल बताया देना चाहता हूँ। आजकल के बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, सभी सोशल मीडिया का यूज करते हैं। एआई सबसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके ऐप यूज कर देते हैं। उस एआई का यूज करके बच्चे की वॉइस कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से उठा के और

0: एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके वो बच्चों की आवाज में आपसे ऐसा आवाज निकाल के बताते हैं और ऐसा लगता है कि आपके बच्चे की ही आवाज है। तो इस पे भी जैसे जैसे तकनीकी बढ़ रही है हमें भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अच्छा, इसी क्रम में मैं सर एक और बता देना चाहता हूं कि अगर आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड हो जाता है, 1930 पे आप नहीं कॉल कर पाते हैं या 112 पे नहीं कॉल कर पाते हैं, तो सीधे हमारी जो साइबर क्राइम की वेबसाइट है वो वेबसाइट cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in, इस भी वी डॉट इन पे आप अपनी शिकायत सीधे हमें डिटेल में दे सकते हैं। इससे भी हमारा कंप्लेन आपका स्वीकार किया जा सकता।
1: अच्छा, वाराणसी में साइबर थाना भी है,
0: जी
1: तो वहां व्यक्तिगत रूप से भी पहुंच के तो शिकायत दी जा सकती है?
0: बिल्कुल दी जा सकती है। हमारा साइबर थाना, साइबर सेल दोनों वाराणसी के पुलिस लाइन में गेट नंबर 2 के पास है। कोई भी व्यक्ति के साथ अगर साइबर फ्रॉड हो जाती है तो आप वहां जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आकर शिकायत कर सकते हैं।
1: यह शिकायत लिख के दे सकते हैं और जो घटनाएं उसके साथ घटी है उसको बता सकता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो उसके जैसे ही वो बताएगा वैसे ही विवेचना शुरू हो जाएगी और संभवतः मुलजिम पकड़ भी लिया जाएगा, उसका पैसा भी। जो सबसे बड़ी बात यह रहती है कि व्यक्ति का पैसा, इसमें महत्वपूर्ण यह है कि उसके पैसे का आहरण कर लिया गया साइबर ठगों द्वारा, तो आहरण कर लिया गया और पैसे को विभिन्न खातों में इधर उधर भेज दिया गया, तो भेजने के पश्चात उसका पैसा खत्म हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं, व्यक्ति की कमाई है, उस पैसे को भी आप ट्रेस करके उसको वापस दिलवा सकते हैं।
0: बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि जिस जिन खातों में गया है उन खातों का होल्ड करने की कार्रवाई करते हैं। जैसे पैसा होल्ड किया जाता है माननीय न्यायालय के माध्यम से अथवा अन्य जो दिए गए नियम के सुसंगत नियम है उनके आधार पे हम वादी को वापस पैसा विक्टिम को दिलाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने लगभग लगभग पिछले वर्ष साइबर सेल थाना मिलाकर सभी लगभग 5.5 करोड़ रुपए वापस कराए हैं।
1: अच्छा, अमूमन जो है यह सुनने में आया है कि वाराणसी से बाहर के बहुत सारे अपराधी होते हैं जो कि डिजिटल अरेस्ट जैसी प्रक्रिया को करते हैं और अभियुक्त के रूप में वो पीड़ित को डिजिटली अरेस्ट कर लेते हैं और उनके साथ घटनाएं घटित होती हैं। तो इतनी दूर के अपराधी को कैसे आप ट्रेस कर लेते हैं और कैसे उसको पकड़ लेते हैं?
0: जहां तक दूर की बात है, लगभग 90% केसों में ऐसा होता है कि अपराधी काफी दूर के होते हैं और इस तरह से हम लोग विवेचना क्रम में उनका नाम लाकर और अपनी जो भी सर्विलांस के सिस्टम है उसके थ्रू उनको हम ट्रैक कर लेते हैं और फिर हम उस स्थान पे जाके विभिन्न जो भी प्रदेश हैं, पश्चिम बंगाल हो या पंजाब हो या राजस्थान है, वहां से हम फिर उनको नियमों के तहत अरेस्ट करके वाराणसी लाते हैं।
2: तो श्रोताओं, आपने सुना डिजिटल अरेस्ट के बारे में, हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत ढेर सारी जानकारी दी और सबसे जो दो महत्वपूर्ण बातें मुझे समझ में आई वो ये कि एक तो आप अननोन नंबर से कोई कॉल रिसीव ना करें और दूसरा ये कि भारतीय न्याय व्यवस्था में जो हमारी पुलिस है वो कभी भी ऑनलाइन कोई कंप्लेन के लिए आपको कॉल नहीं करती है या आपसे पैसे नहीं मांगती है, इस तरह की कोई चीज नहीं होती है। तो कम से कम ये दो सामान्य बातों का ध्यान जरूर रखें और अगर फिर भी आपके साथ ऐसी कोई घटना हो गई है तो जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया, आप उन नंबरों पर, उन वेबसाइट्स पर कंसल्ट कर सकते हैं और किसी अनहोनी से, किसी दुर्घटना से बच सकते हैं। प्रमथेश पांडे जी और श्यामलाल गुप्ता जी, आपने हमारे सुनने वालों को बहुत ही अच्छी जानकारी से अवगत कराया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद,
1: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानून और हम।

0: Akashwadi at 90.
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित रविंद्र नारायण गोस्वामी का सितार पर बजाया राग भूपेश्वरी। आपके साथ तबले पर संगत की है डॉक्टर आशीष कुमार मिश्र ने।

अभी आप सुन रहे थे पंडित रविंद्र नारायण गोस्वामी का सितार पर बजाया राग भूपेश्वरी। आपके साथ तबले पर संगत की डॉ. आशीष कुमार मिश्र ने। कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब समाप्त होता है।

0: Akashvani at 90.
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सैफ फिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएच, डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स, वेव्स ओटीटी और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10:20 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। कल प्रातः 5:53 पर हम अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।